0: मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिया पर तन रूप कन्नी सूतक कन पे लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला
1: सब सुख परम है दूजे लगी जाए जमन मरना हुक्म है पाने।

परवाह नहीं किसे केरी बाज सचना। दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता काय दीवाने को।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमति सुनो अगली अवजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गए तंदे पाए वजो गवाए अगला मोए मोह पाना खाए जिसका दिता खावना किस कहिए साबास नाल हुकम ना चले नाल कसम चले अरदास जिन अंतर

पाइए सतेरे आंदा जांदा तकदा रही दिल बहार दी आवाज हुण तुसी ए सुफियाना कलाम सुन रहे सी। मैं ता रखिया गुनाहां नूं लुका के कि लोकां भाणे कुंड कढ़िया आ हुण

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरे 9870 किलोवाट से तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। डिटेल्स कुझु हिन तरह थोरी देर में तव्हां हमेशा भगत कौरम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ऐं पोइ अॼु अदबी गुलशन प्रोग्राम तहत तव्हां सभ खां वलझ

कलाम साहब जंहिंजे मिठड़े आवाज़ में कलाम जी रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हिन पेश आहे तबसरो। स्ट्रेट अप हॉर्मस में ॿिन तजारती ॿेड़नि ते हमलनि खां पोइ ओलह एशिया में बदतर थींदड़ सामूंडी सुरक्षा जे मद्देनज़र बंदरगाह शिपिंग ऐं वाटरवेज जे भारतीय काबीना वज़ीर सर्वानंदा सोनोवाल हिक वसीअ सी फेयर फर्स्ट रदमल शुरू कयो आहे। तंहिंमें हिक अलॻि सरकार तरफ़ां कार्रवाई शुरू कई आहे, जंहिंमें हर भारतीय सी फेयर खे तकरारी इलाइक़े में कम कंदड़ सी फेयर खे हर तरह जी सुरक्षा मुयसर कराई वेंदी। 14 जुलाई 2026 ते हिक उच समझ जी इंटर मिनिस्ट्रल रिव्यू मीटिंग जी सरप्राई कंदे सोनोवाल फरमान ॾिनो त रियल टाइम बेसिस ते ॿेड़े दर ॿेड़े चकास कई वेंदी। इन ॾिस में जेके मुतासिर भारतीय सीफेयर आहिनि तंहिंजे लाइ ख़ासि डेडिकेटेड लाइसेंस ऑफिसर मुक़ररु कया वेंदा। इन खां अलावा बंदरगाह शिपिंग ऐं वाटरवेज जी वज़रात, परॾेही वज़रात सां गॾिजी करे, इन खां अलावा पेट्रोलियम ऐं कुदरती गैस वज़रात, केमिकल तेज़ाब ऐं भाण वारी वज़रात, भारतीय नेवी

जखम रसें ए भाई एम टी अलमैया बेड़े तो हा हूँ एम टी मुंबासा बेड़े ते नव भारतीय शहरी जख्मी थी पेन तेरे में ब बुरी तरह से जख्मी हैं। श्री सोनोवाल मीटिंग जी सरप्राइज कंदे जिनमें बंदरगाह शिपिंग जो सूबाई मरकजी वरिष्ठ शांतनु ठाकुर पर हो सरगढ़ बया मिनिस्ट्री जा अजमुदर अमलदार हा पड़ी वजरात भारतीय नेवी निजी शिपिंग ईरान ए ओमान जा एम्बेसी जा बया अजमुदर अमलदार पण शुमार हा तन उते मर्जेंद्र पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुस ए गल्फ ऑफ ओमान में मर्जेंद्र हालतन जो जायजो वरतो खास करे उते भारतीय सीफेर के पेश पवंदड़ ललकारन में ललकार में मद्देनजर खास ते तमाम ही अफसोस जाहिर कंदे श्री सर्वानंदा सोनोवाल चयो त भारत इन ॾिस में मजबूत जज़्बा रखे थो जिन तरीक़े सां बिना बचावरनि शहरी ॿेड़नि ते हमला कया विया आहिनि से ग़लति आहिनि ऐं जिन भारतीय सीफेयर्स जो मौत थियो आहे जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि तिन जे भले लाइ असीं कमु करे रहियूं छो जो इहे भारतीय वर्कर ग्लोबल सप्लाई चेन्स खे बरक़रार रखे रहिया आहिनि इन्हनि जे मथां गैर ज़िमेवाराना ऐं गैर घुर्बल हमला नाजाइज़ आहिनि मुतासिर परिवारनि खे श्रद्धांजलि ॾिनी पंहिंजो अफ़सोस ज़ाहिर कयो जेके पंहिंजी ज़िमेवारी निभाईंदे जान जी क़ुर्बानी ॾेई वेठा आहिनि सरकार जे वधायल रदअमल तौर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग तंहिंखे फरमान ॾिनो वियो आहे त ॿेड़े दर ॿेड़े ते कार्रवाई कई वञे ऐं हिकिड़ो डैशबोर्ड तयार कयो वञे जंहिंमें हर ॿेड़े में केतिरा भारतीय आहिनि तंहिंजी ॼाण ॾिनी वञे पोइ भले सदन फ्लैग कहिड़ो हुजे या पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ या वरी गल्फ ऑफ ओमान में कार्रवाई करे रहिया हुजनि डैशबोर्ड सां हक़ीक़ी ॼाण पवंदी रहंदी कि हिन वक़्तु ॿेड़ा किथे आहिनि कार्गो सदन की स्ट्रेंथ उते जेके ॿेड़े ते कमु करे रहिया आहिनि तंहिंजी खु़शहाली तिन खे ललकार पेश पवंदड़ नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल ऐं ॿियूं सभु ॼाण मिलंदी रहंदी मुतासिर थियल कुटुंबनि खे बिना रुकावट जे इमदाद ॾियण जे लाइ श्री सोनोवाल हिकु डेडिकेटेड लाइसन ऑफिसर हर भारतीय सी फेयर पुठियां मुक़ररु करण जो फरमान ॾिनो आहे हर को लाइसन ऑफिसर हर हिकु मुतासिर कुटुंब लाइ सिंगल पॉइंट थी करे कमु कंदो तंहिंमें सिहत अपडेट्स मैसर करेंगे इन खां अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन कुटुंब खे इमदाद सी फेयर वेलफेयर फंड सपोर्ट इन खां अलावा संदन बकाया पघारूं बि सभु मैसर कराईंदो वज़ीर फरमान ॾिनो आहे त ईरान ओमान ऐं यूएई में अमलदार भारतीय मिशन सां गॾिजी करे सहकार में कार्रवाई कनि मुतासिर थियल इलाइक़े में हर ॿेड़े जी जांच रखी वेंदी इन खां अलावा 24 कलाक ग्रीवेंस सपोर्ट सिस्टम पिण मुयसरु करायो आहे इन ॾिस में टोल फ्री नंबर तक ॾिना विया आहिनि ईमेल आई डी पिण ॾिनी वई आहे व्हाट्सएप मैसेज पिण बरपा कयो वियो आहे तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम अदबी गुलशन शुरुआत कर रही हूं हरीश वासवाणी जी कविता पाठ से।
2: चंद कविताओं पेशे नजर आए। पहली कविता जो उन्वान है एक कलाकार की वेदना। मूं वट लफ्ज़ आहिनि, लफ्ज़ ई लफ्ज़ आहिनि, रंग बिरंगा, हल्का, संजीदा, चंचल, आनंदमय। मूं वट लफ्ज़ आहिनि, लफ्ज़ ई लफ्ज़ आहिनि, रंग बिरंगा, हल्का, संजीदा, चंचल, आनंदमय। उन्हनि सां मां मुस्कुराहटूं

0: रंगे सका तो उदासू चिटे सका तो सुख की डोर के लंबो करे सका तो दुख की लंबाई के कपे सका तो शांति के माने सका तो मां लफ्जन सा शरारत के नमकीन बनाए सका तो पर कुछ थी कौन रहो आए पर कुछ थी कौन रहो आए ये लफ्ज बोला है गोया निर्जीव थी विया उनकी जिंदगी उनके चौराहे वरती है अभी खिलो था मुख्य अजब थो लगे अभी रो था तमाम बस डिसंदो तो रहा अभी खिलो था मुख्य अजब थो लगे अभी रो था मां बस डिसंदो तो रहा अवां जो खुशियों मां विराए न तो सका अवां जी चिंताओं जो बार मां पाण ते खड़ी न तो सका अवट लफ्ज कोन आहिन त छा थियो अवट लफ्ज कोन आहिन त छा थियो उन्हनि जी जिंदगी त अवां वटि आहे ऐं हेॾां मां लफ़्ज़नि जो सौदागर बेजान लफ़्ज़नि जा जिस्म ढोईंदो थो रहां ऐं हिकु प्रेत वांगुरु भटकंदो थो रहां मूंते तरस खाओ मूंखे लफ़्ज़नि में जीअण न ॾियो मुंहिंजे लफ़्ज़नि खे जीअण ॾियो मूंते तरस खाओ मूंखे लफ़्ज़नि में जीअण न ॾियो मुंहिंजे लफ़्ज़नि खे जीअण ॾियो अहीं मुंहिंजे लफ़्ज़नि जी ज़िंदगी मूंखे वापसि ॾियो इहे अहीं मुंहिंजे लफ़्ज़नि जी ज़िंदगी मूंखे वापसि ॾियो मां अव्हां खे अव्हां जी ज़िंदगी लाइ लफ़्ज़ ॾींदुसि इहा ॿी कविता आहे जंहिंजो उमान आहे इनकारी ज़िंदगी मौत इकरार आहे मजबूरीअ सां वरना ज़िंदगी त इनकारी थींदी आहे दुख जो न हुअणु को सुख कोन्हे पर सुख जो न हुअणु ॾुखी थींदो आहे दुख जो न हुअणु को सुख कोन्हे पर सुख जो न हुअणु ॾुखी थींदो आहे सच त केतिरनि हंधनि ते बिंदरो पइजी वेंदो आहे ऐं कूड़ पार करे वेंदो आहे सभु किनारा अंधकार जे दायरे अॻियां रोशनी हमेशा नंढी पइजी वेंदी आहे पाप न करणु को पुञ कोन्हे पाप न करणु को पुञ कोन्हे जीअं अंधकार खे ढकणु को प्रकाश कोन्हे पर बाज़ मौक़नि ते पुञ न करणु पाप थी वेंदो आहे पर बाज़ मौक़नि ते पुञ न करणु पाप थी वेंदो आहे जीअं रोशनीअ खे ढकण सां अंधकार फैलिजी वेंदो आहे मौत इकरार हूंदो आहे मजबूरीअ सां वन ज़िंदगी त ख़ुदि में इनकारी थींदी आहे हीअ कविता आहे जंहिंजो उनवान आहे पंहिंजे वजूद जो अहसास पंहिंजे वजूद जो अहसास गोया सुकल काठियुनि जो ढेर जेके पजराए दुनिया छॾे ॾिनो जेसि ताईं जलंदो रहियो सभिनी हथ सेकिया जली जॾहिं रख थी वियो कंहिं हथ बि न लाथो पंहिंजे हुजण जो अहसास ॼण सुकल काठियुनि जो ढेर जेके पजराए दुनिया छॾे ॾिनो जेसि ताईं जलंदो रहियो सभिनी हथ सेकिया जली जॾहिं रख थी वियो कंहिं हथ बि न लाथो जिन खे दुनिया दफ़नायो उन्हनि लाइ कंहिं मकबरा जोड़िया कंहिं गुल आंदा कंहिं दुआऊं घुरियूं पर जंहिं ख़ुदि खे दफ़नायो न कंहिं उन लाइ को मकबरो जोड़ियो न गुल न श्रद्धा न को विश्वास अणॾिठल अणॿुधल गुज़री वियो उहो इंसान गोया रेगिस्तान जी कंहिं कुंड में को बादल वसी मिटजी वियो हुजे अणॾिठल अणॿुधल गुज़री वियो इंसान गोया रेगिस्तान जी कंहिं कुंड में को बादल वसी मिटजी वियो हुजे रेत जा कणा चुपचाप चुही था वञनि उनजी सॼी तरलता ईअं ई जीअं का कविता अणलिखियल अणपढ़ियल सुम्ही पई हुजे कवि मन जे अतल गहराइनि में ऐं उन्हनि काठियुनि जी रख वांगुरु जंहिंखे कोर हथ बि नथो लाहे।
1: रेत जी कणा चुभी था वठन उन सजी तरल था गोया कई कविता अणलिखल अणपढ़ल सुतल रहजी वही हुए कवि मन की अतल गहराइन में जली वल काठिन के रख के जड़ कें हथ पर न लाथो। यह आखिरी कविता है, एक लंबी कविता है। चाहे वो रेगिस्तान मुझे ये समुद्र कहीं किनारे कहीं हद जो हथ अची वन ही करा है, जरा पानी जा हुजन या रेत जा जे लट जी लोथ थियणो आहे जा या लड़ी लाश थियणो आहे त कहीं अंत जी खोज लाए मीलन जे सफर जी कहिड़ी माना। उहा त सिर्फ हुण खे हो ऐं आहे में बदल जी हिकु ग्रामरी कसरत आहे जंहिंखे कंहिं बि ॿिए अंदाज़ में जी नथो सघे। उहा त सिर्फ़ हुअण खे हो या आहे जी बदलण वारी हिकु ग्रामरी कसरत आहे जंहिंखे ॿिए कंहिं अंदाज़ में जी नथो सघजे। रेगिस्तान में पंहिंजी हद खे सुञाण लाइ मूं समुंड खे ॿिनि हिसनि में फोल्ड करे हुनखे विच तां फाड़े छॾियो ऐं उतां ई धीरे धीरे हलण शुरू कयो। रस्तो अॻिते ऐं अॻिते वधंदो थे वियो। किथे को कटाव न थे आयो, न दोरा हो, न को तिरा हो, न चौरा हो, परे किथे सिज पंहिंजो माया जार फैलाए रखियो हो जो रेत ऐं पाणी जे फ़र्क़ खे ई खाई पूरो करे चुको हो। परे किथे सिज पंहिंजो माया जार फैलाए रखियो हो या रेत ऐं पाणी जे फ़र्क़ खे खाई पूरो करे छॾियो हो। सभु आवाज़ बे आवाज़ थी चुका हुआ एतिरे क़दुरु जो पसीने जी बूंद किनी बि कननि जे पर्दनि खे लोले थी वई। आकाश में कोई भटकियल बादल अहिड़ी रीत ॼण कोई सिरण लामारा हणंदी हुजे ऐं मां उन लामारा हणंदड़ सिरण जी छाण ॻोल्हींदो डोड़ंदो डुकंदो सहकंदो रहियो आहियां। तपंदड़ विपहरीअ में कान वांगुरु मुंहिंजी अख ॿाहिरि निकिरी आहे। तॾहिं हिकु संगे मरमर जो निशान थो नज़र अचे जिते लिखियलु हो अॻियां हिरण ॾांहुं पुठियां पाण ॾांहुं कदम दर कदम रण मूंखे वेंदो थे वियो। घबराहट में मूं पंहिंजो रुख ई बदिलाए छॾियो त जीअं कोई किनारो ॻोल्हे सघां समुंड जे लहरुनि ते पल लाइ वेही मां साह करणु लॻुसि ऐं उहो भटकियल बादल बि मुंहिंजे मथां अची साह खणणु लॻो।
2: हरीश वासवाणी खे नंढी कहाणी शेर शायरी ॿुधी रही। पेश आहे नंढी कहाणी, जरा बेसी मोटवाणी खां ॿुधूं।
3: करे सावरे घर में पेर पातो आहे तीअं हुननि जो घर विवाह चढ़ंदो। उन करे सभई रीस कंदी हुयूं त नुंहुं मिले त रेखा जहिड़ी मिले। शायदि इहा नज़र रेखा खे लॻी वई। जोसम से पिता ॿिनि महिननि जी मोकल रेखा जी वठणु आयो ऐं रेखा जे सहुरे खेसि मोकल ॾिनी। वञण वक़्तु रेखा रमेश खां वचन वरितो त इन्हीअ विच में हू लखनऊ दौड़ींदो ऐं ख़त बि लिखंदो रहंदो। उन खां पोइ हिकु ॿ ख़त रमेश जा पहुता। हुन बैदि ख़त बंदि थी विया। जेतोणीकि रेखा रमेश ऐं ससु सहुरे खे केतिरा ई ख़त लिखिया, मगर उन्हनि जो को बि जवाबु कोन ईंदो हो। उन करे रेखा खे चिंता रहण लॻी। उन तरह ॿिनि महिननि खां वधीक अर्सो गुज़री वियो, मगर न रमेश रेखा खे वठणु आयो, न वरी को संदसि ख़त ई आयो। उन करे हाणे रेखा जे माता पिता खे बि चिंता थियण लॻी। इहा हाल ॾिसी रेखा पंहिंजी सहेलीअ खे ख़त लिखी रमेश जो हाल अहिवालु घुरायो। संदसि सहेलीअ जो जेको जवाबु आयो सो पढ़ी उहो दंग रहिजी वई ऐं अखियुनि मां ॻोड़ा ॻड़ी आयसि। इहो ॾिसी मानस खां रहियो न थियो ऐं खेसि भाकुर में भरींदे पुछियई त कंहिंजी चिठी आहे ऐं तूं ॻोड़ा छो ॻाड़े रही आई। रेखा उहा चिठी पंहिंजे माउ खे ॾिनी ऐं खेसि चंबड़ी रोअण लॻी। दुख वीचां समुझ माउ जा बि आंसू वहण लॻा, मगर दिलि ॾाढी करे चयई पगली अजायो पई रोई, ईअं बि कॾहिं थियो आहे? तुंहिंजे

सहेली है तो उसका मजाक कहीं होती है। संदर सहेली के लिखो हो तो तुझे पति रमेश एक सरिता नाले छोकरी के पंजी पत्नी बनाए पंजे घर में हाने विहार्य आए। तुझे चिट्ठी अचने से रमेश के बचा दफा बाजार में दिठो ए सांस तुझे बारे में पुछो तो रेखा कदें इंदी तो सीधे मुँह असा जवाब को दिन फकत एतरो चयाई तो मुख्य खबर ना आए तो कदें इंदी उन मुख्य दिसी मुँह मोड़े हलो वो एक दिन घर में फोन कयोमांस तो एक औरत खो बुधाई तो मिस्टर रमेश घर में कोन आए। जैसे मुँह पुछोमांस तो वो केर आए चयाई तो मिसिस रमेश आया। जैसे चयोमांस तो मिसिस रमेश रेखा आए तो चयाई तो आए कान मगर हुई हाँ मां आया। विश्वास न पो अचे नेठ रूबरू सन घर वयस दिठम तो रमेश वेठो आए। उन भी उधा तो रेखा हाँ इन घर में कदें न ईन्दी ए सरिता ही हाँ मुझी पत्नी आए। यो बुधी मुख्य ताजुब लगो तो रमेश केतो स्वार्थी करल इंसान आए मगर गुस्सो उन औरत ते पायम जै बेघर औरत शादी कल मर्द जैसी औरत जीअरी वेठी आए उनके पैंजो पति बनाया आए। हुआ तो औरत जात ते कलंक है मर्द के कहड़ो दो दिजे जैसे औरत ही औरत ते जुल्म कर रही है। अजा हफ्तों खन गुजरो तो संद सहेली जो बो खत आयो तो एक दी रमेश मुख्य बाजार में गजो खेस रोके पुछुम तो रेखा कहड़ो दो कयो आए जो उनके छदे तो बीजा रखी आए। गुस्से में अची चयाई तो तू मुझे घर गृहस्थी में दखल देने वाले केर आई मुख्य हाँ रेखा नी वे सरिता उनका खूबसूरत जवान आए। लिखाई तो एक दी सरिता भी मुख्य बाजार में गजी वही बुधाई तो रमेश जो संबंध मूसा बिन साल का है असि फकन मौके जो इंतजार कर रहा सो जी ही रेखा पेके वही असा के मौको मिली वो मुंह अची घर में कब्जो किया है। बुधाई तो उन रमेश ना शादी कान कई है रमेश सरकारी ऑफिसर आए उन कर जीअर तो जीअरी शादी नो कर सके सो रमेश पैरें ही रेखा के तलाक दीद मां सन बाकायदे पत्नी मनी वेंदस। मूँ तो जी रमेश रेखा के धोखो दई तोखे हाँ विहार्य है तीय तोखे धोखो दई सके तो वो तो एक भोरे मुसल है जो एक गुल के रस चूसे वरी बे ते लामारो दी है तो तुझो छो चयाई तो अड़ी नौबत अचण के नींदस मां रेखा वागुर बाली बोली कान आया जो मुड़स के आजाद छदे दियां जो बे हंध वही लामारो हणे मां खेस किथे भी अकेलो छदींदस संद लगाम मुझे ही हथ में हूं। वधिक लिखाई तो मुझी सलाह है तो तू रमेश से कानूनी कार्रवाई कर हिन्द वा चिट्ठी भी पैंजे माँ के दिनी जै वा चिट्ठी पैंजे पुटन के सामू पैंजे पति के दिनी उन फैसलो किया वो तो रमेश से कानूनी कार्रवाई कजे जैसे संस नौकरी खत्म थी वी तो पाने ही उनको पाने ही अकुल ठिकाने इंदो। यो बुधी रेखा खेस मने कई तो अड़ो को भी कदम न खो वे जैमें मुझे पति की नौकरी खत्म थे या खेस कें भी किस्म जो नुकसान पहुंचे। आखिर रेखा जो पिता रेखा सुनसुटी निशा के पान सा गद वी रेखा के सहर में आयो रमेश सुनस माता पिता के आजमीजारू क्यों मगर हु रेखा सुनस पोटी निशा के पान वट वह तैयार न हा। आखिर बेन अजीजन के समझाण से उन रेखा निशा के पान रहा हुआ साल खन वटन रही मगर उन नौकरणी वाले सलूम किया वो हु जाल मुड़स सन माँ बागीचा वगैरह ला घुम वा हा। हुआ नौकरणी वागू रोटी वगैरह ठाए रखी हुई नड़ी निशा से भी नौकरणी वो ही सलूक किया वो हो गलती थे माँ धी के चंपल से मारियो कुटो वो हो मगर तदें भी प्रतियोगिता नारी के का शिकायत कान हुई। अध बुखी रही भी उन शेवा में खेस आनंद पेन्द हो हुआ सोचींदी हुई तो मोचड़न में ही सही मगर पैं पति जो हर रोज दर्शन तो पी कर उन हूंदे भी सरिता इन घर में उनके पैंजो कंडो समझण लगी। एक दिन उन माँ धी के धिके लतू हणी घर में कढ़ी छड़ियाऊं घणो ही उन्होंने पी बारा मगर कें भी खेन साथ न दिन रमेश या माता पिता भी उनसे मिली व्या उनके कढ़ी छड़ियाऊं हूं रोन धी पैं पेकन में लखनऊ पौती हाँ निशा भी स्कूल में पढ़ने लगी। कुछ साल बैद रमेश आयो रेखा के चयाई तो मुझी ऑफिस में खबर पैजी वही है तो मुख्य ब जालू आन उन करे मुझी नौकरी खतरे में है तू मेहरबानी करी तो मुझी नौकरी बची सके थी मां तोसा ये वायदो तो करें तो मां तो खर्च मोकिलो रहस निशा की पढ़ाई शादी जो खर्च मां तोखे दीदस। उनके इन तरह दुखी थन्द दिसी उन दिल पिघलजी वही उन कर तलाकनामे ते सही कर दिनी जेतोणीक माता पिता ए भावरन सही करण का मन कई हुई तो भले रमेश बर्बाद थे संस नौकरी खत्म थी वे अड़े बदमाश के या सजा मिलनी घुर्जे जद

0: हुन खे तोते क्यास न पियो त पोइ तूं मथे क्या छो थी करी, मगर हुन कंहिंजी बि न मञी। रमेश जो मतिलबु निकिरी वियो। वरी हुन किन निहारियो ऐं न वरी हुननि जी का सुधी लधाई। निशा जी मर्ज़ी हुई त मां डॉक्टरी में दाख़िला वठां, जेको PMT में पास थी हुई, मगर रमेश जे पैसनि जी मदद न करण ऐं नानाणे जे मने करण सबबि हुन पढ़ाई छॾे ॾिनी। निशा जे नानाणे हिकु सुठो छोकिरो सुठो घर ॾिसी निशा खे मङायो। इहा अहिड़ी सूचना ख़त रस्ते हिन रमेश खे ॾिनी ऐं खेसि वेनती कयऊं त हू मुंडीअ जी रस्म वक़्तु ज़रूरु अचे।
1: निसी मोटवाणी खां नंढी कहाणी ॿुधाई आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऐं इंप्रेशन ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। भारत ब्रितानिया वसीअ माली ऐं वापारी करार ऐं सां वाबस्ता सोशल सिक्योरिटी करार पूरी तरह सां अमल में अची चुको आहे। 140 मिलियन डॉलर जूं भारतीय शयूं पहिरें ॾींहं ते ब्रितानिया ॾांहुं रवानगी कई वियूं। भारत यूरोपियन वापार ऐं तकनीकी काउंसिल हिकमत अमली भाईवारी खे वधीक ऊनो बणाईंदा, इहा ॻाल्हि पढ़ी मामले जे वज़ीर डॉ एस जयशंकर चई। भारत ऐं बेल्जियम मञियो आहे त वापार ऐं सीरप ग्रीन तवानाई ट्रांज़ेक्शन इनोवेशन ऐं टेक्नोलॉजी में सहकार खे अञा वधीक पुख़्तो कयो वेंदो। ओडेशा में छिकदाण वधी वई आहे जो अमरीका ईरान मथां नेवल ब्लॉकेट ॿीहर खां थोपी आहे। जुमनि मुल्कनि मंझि वरी खां छिकताण शुरू थी वई ऐं हवाई हमला पिण हली रहिया आहिनि। जकार्ता में अंडर-19 ऐं अंडर-23 चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में टिनि भारतीय औरत बॉक्सर्स खे सोनिया बिल मिलिया आहिनि ऐं होॾां 10 ॿिया चांदी जा बिल हासिल कया विया आहिनि। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ब्रितानिया खे 2-1 मात ॾेई करे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुची वियो आहे। संदसि मुक़ाबिलो स्पेन सां थींदो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु परोसी रहियो आहे। वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 ते। तेसिताईं ॾींदा मोकल सदाईं घणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में शीतल चौहान के भजन। आपके साथ तबले पर थे पशुपतिनाथ मिश्रा, सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर थे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर थे नफीस खान। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम गीतों बड़ी। गुड मॉर्निंग।

श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी की इस बेहद खूबसूरत और ताजगी भरी सुबह में आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपकी दोस्त दुर्गेश और आज की हसीन सुबह की हम सफर सर्द नर्म हवा के झोंके, चूहों की चहचहाट और आपके हाथ में चाय का गरम गरम प्याला। वाकई जिंदगी हर सुबह हमें मुस्कुराने का एक नया बहाना देती है, तो चलिए अपने सुबह को और भी सुरीला और सकारात्मक बनाते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ। दिन की शुरुआत करते हैं कैसे गाने के साथ जो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, नया जोश भर दे।

वाकई सच बात है दोस्तों, जब जिंदगी हमें प्यार करना शुरू कर देती है तो जिंदगी भी हमें नए नए तोहफे देने लगती है। जैसे ये सुबह, सुबह का जो समय होता है सिर्फ जागने का नहीं होता बल्कि अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का होता है। कल क्या हुआ उसे भूलकर आज एक नई

0: लक्ष्य तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इसी मुस्कुराहट, ताजगी और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। मैं हूं आपकी तुर्केश और कार्यक्रम है कीतू भरी गुड मॉर्निंग। अगले आधे घंटे तक हम सुनने वाले हैं वही फिल्मी गीत जो आपकी सुबह को और भी खुशनुमा बना देंगे। चाहे आप चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हो, सैर पर हो या फिर अपने काम की शुरुआत करने जा रहे हो। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये सुरीले नगमे आपके अच्छे साथी बनेंगे। तो देर किस बात की, दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को एक और खूबसूरत गीत के साथ।
3: नूर नूर कहता हूँ,
4: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

दोस्तों, हर सुबह हमें याद दिलाती है कि बीता हुआ कल सिर्फ एक याद है और आने वाला कल अभी बाकी है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जब हम सिर्फ सुने, महसूस करें और बिना किसी जल्दबाजी के उन लम्हों को जी लें जो हमें बहुत पसंद हैं। दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारा आज का संगीत का सफर पसंद आ रहा होगा। इसी कड़ी में एक और बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं और आपके होठों पे मुस्कान ले आते हैं।

परसों कभी आपने गौर किया है कि सुबह का अपना एक अलग ही संसार होता है। पत्तों की सरसराहट होती है, पक्षियों की चहचहाट होती है, उगते सूरज की सुनहरी आभा, और मानो प्रकृति का हर दिन एक नई धुन रचता हो। और ऐसे में अगर कुछ प्यारे फिल्मी गीत साथ मिल जाए तो सुबह और भी यादगार बन जाती है। बस सुबह हमें सिर्फ एक नया दिन ना देकर के ये संगीत भी दी जाती है। और जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह को और भी हसीन बना दें, बिल्कुल इस गीत से।

तो दोस्तों इसी खूबसूरत संगीत यात्रा के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अपने दोस्त रेडियो होस्ट दुर्गेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: करें एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अम्बिका ने हुरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है।

0: पिलर वन है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा।

0: है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदी घोष, ताड़क ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
3: रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावित कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
4: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani News, Delhi.
1: And now moving on to the world of sports. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atalanta Stadium in USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalized in the 85th minute, and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. And in men's cricket, second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over U.S. sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as U.S. claims waves of strikes. As the world-famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hints to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर आईआरसीटीसी वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को एक के मुकाबले दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामनिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
0: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
3: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4 लाख करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
0: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
3: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगे, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं यौम आजादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। यौम आजादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनजर महकमा आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि यौम आजादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अल-अक़वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिदा अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरूने मुल्क से लाखों कीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के

0: महिलाओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने CCTV निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की पानिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाबता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती वरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निजाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाजत होगी ताकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरैन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमरीका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90 मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली मशरकी राजस्थान

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन, राग था भोपाल तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। ये हमारा अगला कार्यक्रम है उद्योग पत्रिका। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
3: श्रोता मित्रों नमस्कार। आज का व्यावसायिक परिवेश पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी हो गया है। तकनीकी आधारित तेजी से बदला है और ऐसे समय में किसी भी संस्था की सफलता केवल अच्छे उत्पाद या सेवाओं पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रभावी प्रबंधन यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रेरणादायी नेतृत्व और मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर भी समान रूप से आधारित होती है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुशांत दीक्षित को। सुशांत जी, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपको 2 दशकों का एक लंबा नेतृत्व का अनुभव है और आप व्यवसाय के मामले में, बिजनेस के मामले में साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।
3: सुशांत जी, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की?
4: 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स नए नए आए थे पूरे दुनिया में, तभी साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया मुझे और तभी स्लोनेस लाने के लिए सिस्टम में और ऑपरेशन रोकने के लिए साइबर अटैक्स, साइबर अटैकर्स करते थे
3: जी।
4: तो वो टाइम पे स्किल गैप मुझे बहुत दिखा, तो मैंने मेरा स्किल्स उस पर बढ़ाने का कोशिश किया, अलग अलग तकनीकें यूज की, डेवलपमेंट से लेके एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, फिर साइबर सिक्योरिटी में आया और उसके बाद मुझे मौका मिला एक टीम लीड करने का। तभी मैंने सोचा कि मुझे मैनेजमेंट तकनीक की आवश्यकता है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ और स्किल धारण कर लिया है मैंने, अभी मुझे मैनेजमेंट का स्किल धारण करना है। तो मैंने 2 साल का फुल टाइम MBA किया, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से किया। उसमें मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है और करना क्या चाहिए मैनेजमेंट के साथ और उसका महत्व क्या है, वो पूरा मैंने समझा।
3: सुशांत जी, तो आज के दौर में व्यवसाय में एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है?
4: ये बहुत ही आवश्यक चीजें है, सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं बट पूरे इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज में इंडियन CEOs की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से लेकर मैनेजमेंट सीखा है और अभी वो लीडरशिप में एक अव्वल स्थान पे है। तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत है, जो उत्पादन है
3: जी
4: उसको गुड क्वालिटी बनाने के लिए, उसको तकनीकी दौर से अच्छा बनाने के लिए और जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो करते हुए अपने लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा टूल है, मेरे ख्याल से सब लोग ने जिंदगी में सीखना चाहिए
3: जी। सुशांत जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि ग्लोबल लेवल पे इंडियंस जो है वो लीडरशिप दे रहे हैं और तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो स्किल्ड या फिर स्किल डेवलप्ड है या फिर मैनेजमेंट जो क्वालिटी है वो कहीं और जगह से बेहतर है?
4: मैनेजमेंट की एक खूबी है जो इंडिया में है और इंडिया में बहुत अच्छे क्वांटिटी में है, जो कि स्कार्सिटी हम लोग के कल्चरल वैल्यूज है और जो हम लोग अपने परिस्थितियों से हम लोग जूझते हुए आए हैं 20 इयर्स 30 इयर्स, वो हमें कहीं ना कहीं रेजिलिएंट बनाता है
3: जी।
4: और लीडरशिप में रेजिलिएंट रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी उनका शेयर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है।

0: बट रेजिलियंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडियन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है दुनिया में कोई भी कंपनी को।
1: तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज का दौर जो है वो चैलेंजिंग का दौर है, चुनौतियों का दौर है। चुनौतियों के साथ में जो आज जो परिवर्तन हो रहा है और वो भी डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, और इसमें डिजिटल परिवर्तन में ये देखा जा रहा है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि जो बिजनेस कॉम्पिटेटिवनेस है वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो आज की चुनौतियां क्या क्या है, क्या हो सकती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ है, जो है कि कस्टमर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना और उनको अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करना, इस्तेमाल करने के लिए जल्दी से जल्दी वो समय कम लगना चाहिए, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो चुकी है
1: जी।
0: तो जैसे बिजनेसेस के लिए कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो होता है वो डिजिटल माध्यमों के वजह से कम हो गया है
1: जी।
0: और जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा बैंकिंग में जो अकाउंट ओपन करने के लिए टाइम लगता था और अभी अकाउंट ओपन करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम है। पहले 3-4 दिन लगते थे, अभी वो 1 घंटे में या फिर ऑनलाइन आप within 5 minutes कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी ने हम लोग को दिया है वो बहुत ही ऊपर के दर्जा का है। और जो कंपनियां सेवाएं दे पाती है डिजिटल इकोनॉमी की वजह से, डिजिटल टूल्स की वजह से, वो कम्पिटेटिव हो गई है। सेवाओं की वजह से उनका एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है जो कॉम्पिटिशन में जिताता है
1: जी। सुशांत जी, अभी आपने कहा कि पहले जैसे बैंकिंग के आपने उदाहरण दिया और ये कहा कि पहले 3-4 दिन एक अकाउंट खोलने में लग जाता था, लेकिन अब जो है कुछ ही मिनटों में, 6 घंटों में ये सब सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आजकल जो सुविधा हो गई है, जो आसानी हो गई है, उसके बाद कुछ खतरा भी बढ़ गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के वजह से साइबर अटैक्स भी बढ़ गए हैं
1: जी।
0: तो जैसे मैंने लीडरशिप के बारे में बोला, वैसे ही मैं डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोलूंगा कि रेजिलियंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अटैक होने के बाद भी हम कितने टाइम में उभरते हैं वो अटैक से, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और उसमें हमने काम करना चाहिए। मैं बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ अक्रॉस द ग्लोब। उनको रेजिलियंट बनाने के लिए उनके प्रोसेसेस, उनके पॉलिसीज और उनके प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों में हम उनको हेल्प करते हैं ताकि वो रेजिलियंट रहे, रेजिलियंट बने और कोई भी खतरे से बाहर जल्दी से जल्दी आ जाए।
1: रेजिलियंट बनाने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, किन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस होता है?
0: इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कोई इंसिडेंट में पॉलिसीज कैसे लगाते हैं, डिसीजन कितना फास्टर लेते हैं
1: जी,
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है रेजिलियंट बनने के लिए। अगर आप एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट आपने डिसीजन लेने के लिए 4 घंटे लगा दिए तो तब तक पूरा प्रॉब्लम और बड़ा हो गया रहेगा
1: जी।
0: तो डिसीजन मेकिंग हैज टू बी फास्टर। और प्रोसेसेस जो हम लोग ने कंपनीज में लगा के रखी है, गवर्नमेंट में लगा के रखी है, वो कितनी अजाइल है ये भी हमको देखना चाहिए।
1: सुशांत जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल की भी जरूरत होती है, स्किल डेवलपमेंट में ये कम्युनिकेशन स्किल कितना मायने रखता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के बारे में आपको बताना है, प्रचार करना है?
0: ये बहुत गलतफहमी है कि कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब आप कितने कम से कम वर्ड्स यूज किए हुए आपका मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। कंपनी के बारे में जो कॉपी राइटिंग होता है वो आप कैसे करते हो, आपका एडवर्टाइजिंग कैसा होता है, क्या आपका सेल्स प्रोडक्ट और मार्केटिंग सेम लैंग्वेज बात कर रहा है कि नहीं, सेम मैसेज भेज रहा है कि नहीं, ये होता है कंपनी का कम्युनिकेशन। इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।
1: इसमें सिर्फ लैंग्वेज की ही बात नहीं होती, यानी कि हर मुद्दे पर, हर पहलू पर ध्यान देने की बात।
0: यस, सबसे बड़ा गैप मैं देख रहा हूँ आज की स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, या फिर कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज में भी उनका सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट तीनों अलग अलग चीजें बात करते हैं
1: जी।
0: तो एक सिंगल मैसेज कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता है।
1: देखिए सुशांत जी, मेरे ख्याल से जहां तक लगता है कि स्टार्टअप तो शुरू कर लेता है, उस स्टार्टअप के शुरुआत करने के बाद में जो प्रोडक्ट आते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए दिक्कत होती है, तो आप इसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं? इसमें भी क्या कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में, सेल्स करने में एक प्रोसेस और एक बहुत ही सीखा और स्किल डेवलप किया हुआ इंसान की आवश्यकता है। पूरे दुनिया में ही सेल्स या फिर जो बेचने वाला है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है कंपनी में, जो पूरे कंपनी का वजन अपने कंधों पे लेके घूमता है। उसके वजह से ही सैलरी एचआर को मिलती है, मार्केटिंग को मिलती है, सबको,
1: कंपनी उसी से चलती है,
0: कंपनी भी उसी से चलती है। तो उसके लिए एक स्किल होता है, एक तकनीक होता है, वो सीखने की आवश्यकता है, जो मेरे ख्याल से फाउंडर ने भी सीखने की आवश्यकता है।
1: आज का दौर जो है डिजिटल का दौर है, और डिजिटल में भी अब एआई की तकनीक आ गई है, और एआई तकनीक आने के बाद ये कितना सुरक्षित है, और क्या इसमें लीडरशिप की भी कितनी आवश्यकता होती है?
0: सो, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। कभी भी इंसान का जजमेंट जो है वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा,
1: लेकिन इम्पोर्टेंट तो है किसी बिजनेस के लिए आज के दौर में डिजिटलाइज्ड होना या फिर एआई को अपना लेना।
0: हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एआई को अपनाने के अलावा, क्योंकि जो जैसे मैंने बोला कस्टमर एक्विजिशन जो है या फिर कम्पिटेटिवनेस है, उसके लिए एआई का उपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और एआई कितना भी आगे चले जाए, अगर ये दो चीजें आपके पास है, जजमेंट और रिलेशनशिप, तो आपको एआई से कोई खतरा नहीं है, आप सुरक्षित है, आपका जॉब सुरक्षित है। ये दो स्किल आपने पास रखिएगा, जजमेंट और रिलेशनशिप।
1: जी, आज के दौर में चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जब तक आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप खुद को शो नहीं करते हैं, तब तक कुछ आगे बढ़ना मुश्किल सा लगता है, निर्भर हो गए सभी को इसमें। तो ऐसे में साइबर सुरक्षा, इसके कि आप एक्सपर्ट भी हैं, ये कितना जरूरी है और इसमें चैलेंज क्या है?
0: साइबर सुरक्षा इम्पोर्टेंट चीज है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। अगर भारत स्किल रिसोर्सेज साइबर सुरक्षा में दे पाए, कम से कम 5 मिलियन इम्प्लॉयज की जरूरत है, और पूरा दुनिया 1 मिलियन ही इम्प्लॉयज प्रोड्यूस कर पा रहा है, स्किल लेबर प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, बट देशों के लिए, राज्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।
1: जी,
0: और बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स आपने देखे रहेंगे, ये वोलाटाइल सिचुएशन में बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स भी होते हैं, और उसके वजह से ये इम्पोर्टेंट चीज हो गई है।
1: जी सुशांत जी, आजकल देखा जा रहा है कि कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, जिसमें कि जो होते हैं एमएसएमई, और उनके पास में सीमित संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस थोड़े कम होते हैं, और उसे आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में साइबर सुरक्षा के जरिए उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है?
0: एमएसएमई में मैनेजमेंट स्किल्स ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट स्किल्स एमएसएमई में आप उभारे, अच्छे मैनेजर को अच्छा अपॉर्चुनिटी दे, तो साइबर सुरक्षा के जरिए वो आरओआई आपको दे पाएगा, आपके उत्पादन मार्केट में जल्दी पहुंचा पाएगा, एक कैटेगरी क्रिएट कर पाएगा आपका खुद का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो साइबर सुरक्षा के जरिए किया जा सकता है।
1: जी, एक लीडर के लिए और लीडरशिप के लिए कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एक अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है?
0: विजन एंड कॉन्फिडेंस।
1: जी,
0: हर एक लीडर के पास एक विजन होना चाहिए जो इररिप्लेसेबल है, और कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको। जितना आगे का देख सकते हो और क्लियरली देख सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है विजन के साथ साथ।
1: इतने सारी क्वालिटीज होने के बाद में भी कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ कमजोर हो रहे हैं, बिजनेस में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मूवमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल या मैनेजमेंट या स्किल डेवलपमेंट, तीनों को मिलाकर के किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है?
0: मैं आपको एक बहुत अच्छी तकनीक बताता हूँ, जो अच्छी एक तकनीक बहुत ही उम्दा प्लेयर ने बनाई थी, उसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन मतलब जिधर 10 प्लेयर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे सारे लोग फोन बेच रहे हैं और मैंने आईपॉड बना दिया, तो ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी मतलब इनोवेशन है, जो आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है स्लो मार्केट में, कम्पिटिटिव मार्केट में, और जहां पे आपको ग्रो होना है और डिफरेंशिएट करना है, तो मैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगा।
1: सुशांत जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, पूरे देश का विजन है कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है, तो इसमें बिजनेस या स्टार्टअप की भूमिका क्या हो सकती है, किस प्रकार से इसे आगे लेकर जा सकते हैं?
0: हमें अवश्य अलग अलग जगह पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज हुई, सिर्फ आईटी सर्विसेज से जीडीपी ग्रो नहीं होगा, हमको हर एक अलग अलग माध्यम से अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जो लीडरशिप और जो मैनेजरियल स्किल्स और जो स्किल्स भारत में है, मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आ सकता है इसमें। हमारे युवा बहुत ही प्रिपेयर्ड है ये सिचुएशन के लिए और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो बहुत ही उम्दा है और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लीडर्स से। सो आई थिंक इट इज नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन डू इट।
1: जी, वैसे अभी अपने युवाओं का जिक्र किया और जो यूथ है हमारे देश में, यूथ की संख्या बहुत है, यानी कि काफी है पूरी दुनिया से, तो युवा उद्यमियों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए, आपका क्या संदेश है ताकि वो प्रबंधन में, नेतृत्व में कौशल विकास और साइबर सुरक्षा के बीच एक संतुलन स्थापित कर सके, एक बैलेंस बना सके?
0: मैं इतना ही कहना चाहूंगा

0: ज्यादा विचार विनिमय पे आपका समय मत डाले, जस्ट स्टार्ट.
1: ओके.
0: एंड वो एक प्रोसेस है, उसमें आप बहुत चीजें सीखेंगे. कोई भी आपको प्रिपेयर करके बिजनेस आप चालू नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ तो आप नया सीखेंगे बिजनेस चालू करने के बाद, कुछ ना कुछ तो नई सीख आपको हर एक दिन मिलती रहेगी.
1: यानी कि जो चैलेंजेस आते रहेंगे उससे भी आप सीखते रहेंगे.
0: तो जस्ट स्टार्ट, चालू करिए और सब चीजें होती रहेंगी.
1: जी सुशांत जी, आपने लीडरशिप के विषय में और मैनेजमेंट के विषय में, स्किल डेवलपमेंट के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी. उससे आपसे हम तो चाह रहे थे कि और भी कुछ बातें करें, लेकिन हमारे पास वक्त की बड़ी कमी होती है, इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे. तो साथियों, आपने व्यवसाय में प्रभावी प्रबंधन, निरंतर कौशल विकास, सशक्त नेतृत्व और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अत्यंत उपयोगी जानकारी आपने सुशांत जी साझा की. हमें विश्वास है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं और उद्यमों के लिए प्रेरणादायक और एक मार्गदर्शक साबित होंगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
0: थैंक यू.
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है. वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा.
3: उद्योग पत्रिका.
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक. तो प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक.

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में सुनिए हरिओम शरण से भजन।

0: हफ्ते प्रोग्राम सुबगाही के तहत भजन यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: जी मौसम के बाद अब इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और आज बहुत ही खास दिन है जो जिसकी तैयारी हम लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं और इस पर कई सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है लोगों को जागरूकता लाने के लिए।
2: सो टुडे एक्चुअली लेट्स ब्रेक द सीक्रेट बिग न्यूज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अप्रिसिएशन डे इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टुडे दिस डे It, of course, it celebrates country's growing role in the global AI landscape and from tech hubs like Bengaluru and Hyderabad to rural areas, artificial intelligence, it is transforming healthcare, education, agriculture, governance and industry in the country.
1: बिल्कुल AI के क्षेत्र में भारत की तरक्की सालों की योजना और सहयोग का नतीजा है। सरकार के AI for all vision और AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मकसद AI का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि लोगों का जीवन और बेहतर बनाने, सबको साथ लेकर चलने और समान को बढ़ावा देने के लिए भी करना है।
2: True Farhat and India's AI journey began in 1960s with early computer science research. A major step came back in 1986 with the knowledge-based computer systems project. So in 1990s, organizations like CDAC, Advanced Supercomputing and early AI work.
1: बिल्कुल शगुन और आज भारत AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन रहा है। यहाँ का सॉफ्टवेयर टैलेंट और बड़े डेटा स्टेटस तक पहुँच चुका है। असरदार AI समाधान बनाने में मदद करते हैं। भारत की अलग अलग जरूरतें AI की असल दुनिया में टेस्टिंग के लिए भी मौके देती है। खेती की बात हो या फिर हेल्थ केयर से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल के पब्लिक सर्विसेज सब जगह AI मौजूद है।
2: सो टू सपोर्ट दिस ग्रोथ द गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक द स्किल इंडिया AI पोर्टल नेशनल AI स्किलिंग प्रोग्राम एंड AI यूथ बूट कैंप सो दीज इनिशिएटिव्स ऑफर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स टू स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स।
1: जी और एक बहुत ही अच्छी खबर सरकार फंडिंग प्रोग्राम और ऐसे नए सेंटर्स के जरिए AI रिसर्च में भी निवेश कर रही है जो शिक्षा और इंडस्ट्री को जोड़ते हैं। गूगल माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से भारत को ग्लोबल डेवलपमेंट से जुड़े रहने में मदद मिल रही है।
2: एंड वी कैन से दैट इंडियाज AI जर्नी इज अबाउट मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजी इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ।
1: बिल्कुल रोजगार के नए अवसर सृजित होने वाले हैं तो यंग जनरेशन तैयार हो जाए AI का इस्तेमाल करने के लिए। और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं सुनाता बल्कि ये भी बताता है कि इंसान की सोच साहस और संकल्प किस तरह समय की दिशा बदल सकते हैं।
2: We should dwell on that thought actually. In the year 1661, the first banknotes in Europe were issued by Stockholm Banko in Sweden.
1: 16 जुलाई 1790 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने रेजिडेंस एक्ट पारित कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया। वहीं 1856 में सामाजिक सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सतत प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक को भारतीय विधान परिषद ने पारित किया जिससे हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस विधेयक को 26 जुलाई 1856 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली और ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बन गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भारतीय समाज सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है।
2: In 1929, the Indian Council of Agricultural Research was established. In 1935, the world's first parking meters were installed in Oklahoma City.
1: और 1969 में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को लेकर अपोलो 11 मिशन का प्रक्षेपण फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया।
2: In 1990, यूक्रेन अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट सॉवरेंटी, अ मेजर स्टेप टुवर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन।
1: और अब श्रोताओं आइए याद करते हैं हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरुणा आसिफ अली की। 16 जुलाई 1909 को पंजाब के एक ब्राह्मण परिवार में अरुणा का जन्म हुआ और इनका पूरा नाम था अरुणा गांगुली।
2: वेल यस अरुणा आसिफ अली प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर द एजुकेटर शी प्लेड अ की रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 एंड इज रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालिया टैंक मैदान इन बॉम्बे इन मुंबई।
1: जी बिल्कुल शगुन और अरुणा आसिफ अली के योगदान के लिए 1975 में लेनिन शांति पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी मिला। 29 जुलाई 1996 को अरुणा आसिफ अली का निधन हो गया और निधन के बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
2: So yes, here's to the man, the tornado of Indian hockey, Dhanraj Pillai. Well, he redefined the sport with his lightning speed and unmatched skills. Well, the retired field hockey player and former captain of the Indian national team. Today it's his birthday. He's a member of the ad hoc committee of

0: Indian Hockey Federation formed after the suspension of somebody, Kanwarpal Singh Gill. As a player, he's regarded as one of India's best ever. He's the one only player to have played in four Olympics as well, four World Cups and four Champions Trophies. Well, we have a dialogue, especially a monologue, we can say, where he tells us about his inspiring journey.
1: Discipline, dedication and determination. Every athlete should have these three things. I was not in India when Rajiv Gandhi Khel Ratna Award announced. I was playing in Germany. I was the luckiest person. I was the happiest to see that my mother was going to Delhi and receiving the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. I am the only player in this country, played for 15 years on AstroTurf and received whatever I dreamed. If you want to achieve all that, you need to dream also. Without dream or without hard work, you will not reach there where you want. Till the last breath or till the last minute of the mission, I used to fight. Anything can happen. So don't give up, because till last minute or last 10 seconds also, table can change.
0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे. ये आकाशवाणी है. मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं. अब खबरें नशर होंगी.
2: ये आकाशवाणी है. अब आप करीम अहमद से खबरें सुनिए. मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है. रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है. भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है. अमरीका ने कहा है कि उसने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं. फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा. और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा. अब खबरें तफसील से. मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगे. इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी. मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमिकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है. जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है. वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमिकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है. जनाब वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे. रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने के खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने

0: इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए चार अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं यौम आजादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। यौम आजादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनजर महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक अहम हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक आला अहलकार ने कहा कि यौम आजादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाकवामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉ मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिदा अरब अमारात की राजधानी अबूजाबी के लिए पहली बराह रास्त प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरूनी मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ हो रही है। गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे, एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदे की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निजाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाजत होगी, ताकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़भाड़ न हो सके। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कभी कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। अमरीका ने कहा है कि उसने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लोटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 17 जमीन से ऊपर 2 सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन की टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश है अखबार ज़रिए का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू है नेक आमाल।
2: अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इंसान की तख्लीक करके उसको अक्ल शऊर और नेकी और बदी का एहसास अता फरमाया है। नेकी और बदी का एहसास ही इंसान को एक खुदा परस्ताना और माकूल और बेहतर जिंदगी जीने की तरफ मायल करता है। नेक आमाल करके इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की फिक्र करता है और बुरे आमाल से इज्तनाब करके अपने रब की नाराजगी से बचता है। इसी रविश को तकवा कहा जाता है और ऐसी ही सिफत के हामिल अफराद का कुरान ने कामयाब लोगों में शुमार किया है। कुरान के मुताबिक नेक आमाल पहम और मुसलसल किए जाएं और नुमाइश और दिखावे से बचते हुए महज अल्लाह की खुशनूदी के लिए अंजाम दिए जाएं। दुनियावी इज्जत शोहरत नामो नमूद और माली मफादात के हुसूल के लिए किए जाने वाले अच्छे आमाल का बदला इंसान अच्छी शक्लों में दुनिया में हासिल कर ही लेता है, इसलिए आखिरत में उनके अजर का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। नेक आमाल के सिलसिले में गुरु नानक जी ने बड़ा ही प्यारा कौल इरशाद फरमाया है। वो कहते हैं कि नेक आमाल ही तेरे काम आएंगे जिसके लिए फिर इस दुनिया में मौका न मिलेगा। यानी जो लम्हा भी इंसान को दुनिया में मयसर आता है उसको गनीमत जानना चाहिए और उसको अच्छे और बेहतर अमल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नेक अमल के सिलसिले में ये बात अहम है कि इंसान बहुत ज्यादा या बड़ी मकदार में नेकियों पर दस्तरस न भी रखता हो तो उसे छोटी नेकियों को कभी हकीकत में जानना चाहिए। कभी कभी बाहिर छोटी नेकियां तारीख इंसानी में सुनहरे हरफों में अपना मकाम बना लेती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा की एक साहिल की जरूरत की तकमील के लिए अपनी चादर फरोख्त कर देने का वाकया एक ऐसा ही ताबनाक और दिलनशीन वाकया है। नेक आमाल के सिलसिले में ये बात भी बहुत अहम है कि नेक आमाल करने वाले लोगों को इससे बेनियाज रहना चाहिए कि इससे इन्हें दुनियावी फैज हासिल हो। हजरत इमाम हुसैन का कौल मुबारक है, अमल साले खुद बखुद इंसान को काबिल तारीफ बना देता है और नेक अंजाम अज खुद साथ साथ चलता है। बाज लोगों को यह ख्याल हो सकता है कि वो क्या नेक अमल करें और कौन सा अच्छा अमल करने के लिए कहां जाएं, जबकि हकीकत यह है कि इसका मौका हर इंसान को हर लम्हा हासिल होता है। आप गौर फरमाइए कि जब आपके पड़ोस की बेवा के घर में गुर्बत के सबब रात का चूल्हा नहीं जलता है तो क्या आपको इसका मौका नहीं होता है कि उसके घर खामोशी से खाने पीने की कुछ अशिया भेजकर उसको रूहानी सुकून पहुंचाने का सामान करें। جب محلے کا کوئی بچہ یا بچی اپنے گھر کے کمزور مالی حالات کے بنا پر اپنے اسکول کی معمولی فیس بھی ادا نہ کر پانے کے سبب اسکول میں فقط چہرے اور شرمندہ شرمندہ کیفیت کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتا یا ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس کا موقع ہوتا ہے کہ خاموشی سے اس کی اور اس جیسے کچھ اور غریب بچوں کی فیس ادا کر کے ان کے تعلیمی سفر کو آسان کریں۔ جب لوگ دریا میں آئے اچانک سیلاب میں اپنا سب

0: गवा चुके हों या जब गद्दसाली में कतरे कतरे पानी को तरस रहे हों, तो आगे बढ़कर उनके साथ नेक अमाल के आपके पास बहुत मौके होते हैं। जब परेशान हाल मुहाजिर और जंगो फसाद ज़दा लोग मदद के लिए फरियाद कर रहे हों, तब भी हमारे पास नेक अमल का वक्त होता है। और नेक अमल की मेराज तो ये है कि दूसरों को नेक अमल की तरगीब देना भी अल्लाह को बेहद महबूब है। आइए हम अहद करें कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा नेक अमल से मुजयन रहेगा और हम इंसानों की बस्ती बस्ती नेक अमाल की खुशबू बिखेरते रहेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे अखवाले जरीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू था नेक अमाल। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज के प्रोग्राम में पहले सुनिए इकबाल अहमद सिद्दीकी से डॉ बशीर बद्र और जिगर मुरादाबादी का कलाम। बादजा इरा निगम से आप सुनेंगे अख्तर शिरानी और फिरा गोरखपुरी का कलाम।

0: किया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है, हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलकर आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जरा इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है।
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो सेटा जो की जो टर्म्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स है। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो है भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या कॉर्न ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ट एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, तो उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इम्पोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ था प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के 0 हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें 0 हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें 0 हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% 0 हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें 0 हो जाएगा और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी 0 हो जाएगा और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी 0 हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इम्पोर्ट में 1% है वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में भी देखें तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारी चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स,

0: साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी लेवल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्रीमेंट से वहां की भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है। उसके साथ साथ जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स में जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं, इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उन्हें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स करते हैं, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहां पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूं कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो कंट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारे मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है एक कोटा के थ्रू। जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारे मार्केट में बढ़े। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा न्यूजर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारे इनोवेशन के ऊपर, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स है, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। हम देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है हमारी मार्केट को फ्लड कर दे और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो ग्रेजुअल प्रोसेसेस है जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस लेगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
0: जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की, उसमें एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरलीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जनवरी से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन

0: 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो एफटीएस जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूं ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारे भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
0: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी। दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारे आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारे मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारे एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। अब देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ। तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं समझता हूं कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
0: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारी जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है, वहां पे जो फ्री ट्रेड जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफी धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है, उसमें एक काफी धक्का मिला है उसको। और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि जो EU को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, EU को मिला के मैं कह रहा हूं, एफ्टा, नॉर्वे, एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसमें सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स

0: के साथ हम तुम्हें ठोने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमें इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंदर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो है जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है उसमें इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उनको बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम रहेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट एडेप्टेशन की जो कॉस्ट जो होती है जो 15 से 20% की एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 40% है, दोनों की प्रोविजंस की गई है। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको बढ़ा सकें, तो हम ये भी आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है रफ्तार जो है वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही है और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवेयर है, मरीन प्रोडक्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही है। तो अब ज्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं जो अभी सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं खास करके ये जो अभी हमारे इम्प्लीमेंट हो गया है तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लोअर लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीजों में सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो है उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारे युवा पीढ़ी के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से एम्प्लॉय होती है उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विथ सीटा के साथ जो हुआ है उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो है जो नौकरी जो पेशाजीवी जो है उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी नेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के

0: लड़कियां निकलती हैं बाहर ग्रेजुएट करती हैं उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये सब हर जगह मैं समझता हूं कि जो नौकरी की जो अवसर होती है वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज है और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपने टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है एमएसएमई को सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इम्प्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में इस समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
0: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारा जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है। जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सबके लिए दस्तयाब हैं। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

सुखविंदर सिंह और साथियों को आपने सुना फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। प्रोग्राम की अगली पेशकश अरमान मलिक को सुनिए, फिल्म है सनम रे।

अमान मलिक के साथ ये थी पलक मुच्छल फिल्म थी सनम रे। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जब वी मेट फिल्म से है, आवाज है मोहित चौहान की।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए जनाब अजीज इंदौरी का तहरीर करदा ड्रामा। उन्वान है ये हमारा टीवी।

0: नाम क्या है बेगम?
1: जी वो बात यह है कि परवीन आई है।
0: परवीन?
2: कौन परवीन?
1: ये मेरी नई सहेली है, एक दिन बस स्टॉप पर मुलाकात हो गई थी उनसे।
0: खूब बात खूब। आपकी ये मिलनसारी भी एक आफत है, आफत। मैं तो तंग आ गया हूँ नई नई सहेलियाँ बनाने के आपके शौक से।
1: जी हाँ जी हाँ, आपको तो एक नजर नहीं भाती मेरी आदतें। अरे मैं कहती हूँ आखिर आप तो दिन भर अपने दफ्तर में दिल लगाए रहते हैं।
0: क्या
1: शाम को अक्सर दोस्तों की सजी सजाई महफिल मिल जाती है और मैं मतलब मैं क्या करूं, आखिर कहाँ जाऊं?
0: अच्छा तो मैं दफ्तर में दिल लगाने जाता हूँ। खूब बहुत खूब।
1: मेरा मतलब है आप तो अपना वक्त किसी न किसी तरह गुजार ही लेते हैं। अब बताइए ना, हम औरतें क्या करें?
0: क्या करें? तो इसीलिए आप लोगों को वक्त गुजारने के लिए हर रोज नई नई सहेलियां चाहिए। मगर मैं कहता हूँ क्या ये भी जरूरी है कि आप हर रोज एक नई आफत मेरे सर पर ला दें?
1: क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं ये आप मत क्या जाने। आप लोगों ने तो हमें बस खाना पकाने वाली मुलाजिमा ही समझ रखा है और फिर घर की चार दीवारी में आखिर हम कब तक बंद रहे?
0: हाँ नहीं तो ओहो, तो आप सबक दे रही हैं। साफ साफ बताइए क्या कहना चाहती हैं आप?
1: बस सिर्फ यही कि वो परवीन एक खास मकसद के लिए आई हैं हमारे घर।
0: क्या मकसद है उनका?
1: वो बात ये है कि वो आज टीवी पर प्रोग्राम देखना चाहती हैं।
0: टीवी पर प्रोग्राम?
1: हाँ।
0: कौन सा खास प्रोग्राम आ रहा है आज टीवी पर?
1: वो तो मुझे भी नहीं मालूम।
0: तो फिर वो तुम्हारी नई सहेली यहाँ क्यों आ गई?
1: वो तो बस यही मिलने आई थी।
0: तो बस मिल लीजिए उनसे, इधर उधर की बातें कीजिए और रवाना कर दीजिए जल्दी से उन्हें। टीवी का जिक्र क्यों कर रही हैं?
1: वो तो खुद उन्होंने ही टीवी देख लिया और फरमाइश कर बैठे, ए बहन जरा हमें भी तो दिखाओ अपना टीवी। आप भला बताइए मैं किस तरह इनकार करती?
0: और आप चली आई मेरे पास ये कहने के लिए कि मैं जरा दूसरे कमरे में चले जाऊं?
1: हाय, जरा सी तकलीफ भी नहीं उठा सकते आप मेरी खातिर। और एक मैं हूँ कि आपकी आंख के इशारे पर?
0: हाँ हाँ, मैं भी आपकी आंख के इशारे पर।
1: आप तो खामखा ताने देने लगे हैं।
0: ताने? कैसे ताने? ये सच्चाई है, मैं थका

0: रहा हूँ। जरा कमर सीधी करने को लेटा ही था कि आठ टपकी आती है सहेली, और और, और, और सहेली भी वो जिन्हें आप ठीक तरह से जानती भी नहीं। मैं तो,
1: अरे तो क्या हो गया, मैं भी तो आपके कितने काम ऐसे ही कर देती हूँ। जब
0: बार बार किस लिए मुझे जताए जा रही हैं कि आप मेरी खातिर ये करती हैं, मेरी खातिर वो करती हैं, और मैं भी आपकी खातिर ये करूँ वो करूँ।
1: अब जरा प्लीज, परवीन बरामदे ही में खड़े हैं, प्लीज मेरी बात रख लीजिए ना।
0: मैं तो तंग आ गया हूँ। अच्छी बात है, मैं कैफी साहब के घर जा रहा हूँ। आपकी सहेली जब चली जाए तो बुलवा लीजिएगा मुझे वहाँ।
1: जी जी, बहुत अच्छा, खुदा हाफिज़।

0: अरे जहीर मियां, मैंने कहा जहीर मियां जरा बाहर तो देखो कौन है। और हाँ सुनो, अगर कोई ऐसा वैसा हो तो उसे वहीं से टाल देना, मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूँ।
1: जी अब्बू, अभी देखता हूँ।
0: और हाँ सुनो, वो अख्तर साहब हो तो उनको साफ इनकार कर देना, उनके आ गया होगा कोई टीवी देखने और वो चले आए होंगे यहाँ अपना वक्त काटने। आखिर एक दिन की बात हो तो कोई बर्दाश्त भी करे।
1: जी बहुत अच्छा। अख्तर अंकल आदाब अर्ज़।
2: जीते रहो बेटे, जीते रहो। कहाँ है भाई कैफी साहब?
1: जी जी वो जी वो तो
2: क्या घर में नहीं है वो हजरत?
1: जी जी वो नहीं।
2: यानी घर में है?
1: जी नहीं, वो तो
2: कहाँ गए हैं बेटे?
1: जी ये तो पता नहीं, शायद किसी जरूरी काम से गए हैं।
2: कहाँ गए ये कैफी भाई?
1: पानी वगैरह कुछ लीजिएगा अंकल।
2: हाँ नहीं बेटे नहीं, रहने दो, बस मैं तो यूं ही चला आया था।
1: कोई काम हो तो आप बता दीजिए, मैं अबू से कह दूंगा।
2: नहीं नहीं कोई खास काम नहीं, कुछ नहीं, बस कह देना मैं आया था।
1: जी जी बहुत अच्छा, आदाब।
2: जी दे रहा हूँ बेटा।

0: कौन है भाई? जरा ठहरिए, मैं आ रहा हूं।
1: आही अथरुनिया, खैरियत तो है इस वक्त?
2: बहुत बेमौके आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस जी चाहा कि आज तुमसे मिले हूँ।
1: माँ यार, क्यों छुपा रहे हो, बात तो कुछ और ही नजर आ रही है।
2: यानी यानी क्या बात हो सकती है?
1: भोले ना बनो और साफ साफ कह दो।
2: तुम कुछ गलत समझ रहे हो।
1: मैं अकेला ही गलत नहीं समझता भाई, सच पूछो तो सारे दोस्त ही ऐसा समझते हैं कि तुम रात में जब किसी के घर जाते हो तो उस वक्त खुद तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी यानी हमारी भाभी की कोई नई या पुरानी सहेली टीवी देखने आती।
2: बहुत खूब बहुत खूब, यानी तुम भी समझ गए कि मैं इस वक्त क्यों आया हूँ। मुझे तुमसे क्या छुपाऊं, मैं तो बेगम की मिलनसारी से तंग आ गया। जब देखो उनकी कोई ना कोई सहेली घर पर आ धमकती है। खैर सहेलियां शौक से आए, मिले, बातें करें, मुझे क्या एतराज होगा। मगर घर आने वाली सहेली बातें बाद में करती है, टीवी देखने की फरमाइश पहले।
1: तो फिर आज भी कोई सहेली आ गई हमारी भाभी की?
2: अरे हाँ भाई, क्या बताऊँ, कोई परवीन है, सर से पैर तक बुरके में लिपटी हुई है। मालूम होता है बहुत सख्त पर्दा करती है।
1: लेकिन है कौन?
2: ये तो मैं भी नहीं जानता।
1: तो वो भाभी तो उनसे तो पूछा होता।
2: अरे भाई यही तो मुसीबत है, तुम्हारी भाभी खुद अच्छी तरह उन्हें नहीं जानती। बस स्टॉप पर उनसे अचानक मुलाकात हो गई थी हमारी बेगम की, बस खट से उन्हें घर आने की दावत दे दी। और वो भी है कि माँ बच्चों की फौज के आजम की। और अब आपका ये बुजदिल दोस्त उस फौज और बेगम की उन बुरका पोश सहेली से डरकर आपके घर में पनाह लेने चला है।

0: देख नहीं रहे हैं आप कितनी गर्मी हो रही है? उस कमरे में पंखा भी तो नहीं है। ओफो, मैं तो भून जाऊंगी मामा।
1: अरे भाई ये लो, ये रहा हाथ का पंखा, बस थोड़ी सी देर की बात तो है।
0: जी हाँ, आपके लिए जरूर थोड़ी सी देर की बात होगी, मगर मैं कहती हूँ आखिर अख्तर भाई अपनी बेगम को सख्ती से रोकते क्यों नहीं?
1: अच्छा अच्छा, मैं उन तक आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। इस वक्त जरा आप मेहरबानी करके।
0: ओफो, क्या मुसीबत है? आखिर ये दूसरों के किए की सजा हमें क्यों मिल रही है?
1: अब जो होना है वो तो है। जरा भाई जल्दी करो।
0: ठीक है, बुला लीजिए अपने चहेते दोस्त को।
2: आइए आइए अख्तर साहब, आइए तशरीफ लाइए। अरे भाई अंदर आ जाइए।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वो भाभी से मेरा आदाब तो कह दो, बहुत बेमौके तकलीफ दी उनसे, माफी चाहता हूँ।
2: और मुझसे?
3: अरे भाई आपसे भी, आप सबसे, क्या बताऊँ कितने शर्मिंदा।
2: यार छोड़ो यार ये शर्मिंदगी वर्मिंदगी, और ये बताओ कुछ पियोगे?
3: अरे नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तकलीफ मैं चाय पीकर आ रहा हूँ।
2: अच्छा तो ठीक है। हाँ तो सुनाओ, आजकल शायरी वगैरह भी हो रही है
3: क्या? सर करूँ शायरी? अब देखे ना, दफ्तर से आकर बैठा था, सोच रहा था बहुत दिनों से कुछ कहा नहीं है, लो आज चंद शायरी कह लूँ। के वो हमारी बेगम की वो सहेली।
1: हाँ भाई अख्तर, जरा इस सिलसिले में अब तुम कुछ संजीदा हो जाओ।
3: वो तो मैंने कई बार कोशिश की, मगर हमारी बेगम, आखिर उनसे पीछा तो नहीं छुड़ाया जा सकता, जिंदगी भर का साथ है।
1: अरे ये मैंने कब कहा कि तुम उनसे पीछा छुड़ा लो, मगर उनकी सहेलियों के बारे में तो तुम उनसे कह सकते हो।
2: मैं तो वाकई तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम जैसे आदमी।
3: हाँ सच कह रहे हैं आप, मैं तो समझ में नहीं आता आखिर क्या करूँ। हजार बार सोचा कि आइंदा कोई भी टीवी देखने के नाम पर मेरे घर आएगा तो उसे सख्ती से मना कर दूंगा, लेकिन
1: मैं पूछ सकता हूँ जनाब कि आखिर आपने ये टीवी किस खुशी में खरीद लिया?
3: क्या बताऊँ, वो मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं ना, उनकी जिद थी।
1: उनकी जिद? ये टीवी के लिए?
3: हाँ, जहाँ शाम के 6 बजे तो वो आस पास के किसी मकान में घुस जाए या किसी की दुकान के आगे जाकर खड़े हो जाए, उन्हें ढूंढने का काम मुझे ही करना पड़ता था, रोज रोज की मुसीबत थी। इसलिए मैंने सोचा कि घर में टीवी होगा तो उनकी आदत छूट जाएगी, इसीलिए आसान किस्तों पर खरीद लाया ये बला।
2: वो तो सही है, मगर ये भाभी।
3: अरे भाई वैसे उन्हें टीवी वीवी से कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बस कभी कभी कोई फिल्म वगैरह जरूर देख लेती हैं। मगर उनकी ये सहेलियाँ अल्लाह महफूज रखे, जहाँ शाम के 6 बजे के किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो हैं कि फौरन ही दरवाजा खोलकर आने वाली हर सहेली का इस्तकबाल इस तरह करती हैं जैसे वो बहुत दूर से बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आई हो। और फिर वैसे भी है कि वो उन्हें सीधा उसी कमरे में ले आती हैं जहाँ टीवी रखा है। आप बताइए मैं क्या करूँ, मैं मजबूर होकर।
2: जी हाँ जी हाँ, आप मजबूर होकर किसी दोस्त के घर चले आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं हुजूर कि अब लोग आपकी आवाज से भी घबराने लगे हैं, और खास तौर से शाम के वक्त।
3: खालिद मियां, मुझे इसका खुद भी एहसास है, मगर क्या करूँ, आखिर कहाँ जाऊँ? घर से निकलकर आप जैसे बामुरव्वत दो चार दोस्त ही तो हैं जिनके पास बैठकर वक्त गुजार सकता हूँ।
1: वो तो ठीक है, मगर
3: बस आप ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए, मैं आया था थोड़ी सी बातें करने। अरे हाँ, आपने कुछ ताजा शेर कहे हो तो सुनाइए ना।
2: अरे हाँ अख्तर, मैं खूब याद आया, तुम इस बार बस्बे अदब के मुशायरे से क्यों गायब रहे?
3: कैसे आता वहाँ, आप देखते ही हैं कितना मसरूफ रहता हूँ, बावजूद कोशिश के भी।
2: भाई बहुत कामयाब मुशायरा हुआ, सच बात तो यह है कि एक से एक आला गजल पढ़ी गई।
3: अच्छा बहुत खूब बहुत खूब, कौन कौन आया था उस मुशायरे में?
2: अजी ये पूछिए कि आपके सिवा कौन नहीं था वहाँ।
3: ओह, यानी मुझसे बड़ी भूल हो गई।
2: यकीनन।
3: आइंदा वो मुशायरा कब होगा?
2: शायद अगले माह।
4: जरा सुनिए, एक मिनट के लिए यहाँ तो आइए।
2: जी अभी आया। हाँ तो अख्तर मियाँ
3: जी,
2: अगले मुशायरे में
4: कहा, जरा इधर तो आइए।
2: ओहो अरे भाई आ रहा हूँ, बस जरा एक मिनट।
4: जी नहीं, बहुत जरूरी काम है, पहले सुन लीजिए यहाँ आकर।
2: अच्छा।

0: अक्सर मिया बस अभी आ।
1: जी जरूर जरूर, सुन लीजिए पहले भाभी की बात। मैं तो बैठा ही हूँ।
0: क्या बात है बेगम?
2: हद हो गई, आप खत्म भी कीजिए और अपने दोस्त को रवाना कीजिए। उफ़, मेरी तो जान निकली जा रही है गर्मी के मारे, और आप हैं कि जरा भी।
0: बस बेगम, वो तो यूं ही कुछ बातें निकल आई थी, इसलिए।
2: आखिर बातों का कुछ सर पैर तो हो, अख्तर भाई को तो वक्त गुजारना है, और आप हैं कि कुछ नहीं मिला तो मुशायरे की बातें ले बैठे। ठीक है, ये मुशायरे वगैरह की बातें मुशायरों में क्या कीजिए, अब खुदा के लिए हमें सोने दीजिए। मैं कहती हूँ बस बहुत हो चुकी है मुरव्वत और मिलन सारी, रुख्सत कीजिए अपने दोस्त को जल्दी से। हाँ
0: अच्छा अच्छा, देखता हूँ। अरे भाई अख्तर भैया, क्या बात है, क्या आज रात यहीं आराम करने का इरादा है?
1: माफ कीजिएगा खालिद भाई, बस जरा सी आंख झपक गई थी, दिन भर काम काज की वजह से थक जाता हूँ। अच्छा भाई, तो अब चलता हूँ, जरा देखूँ अपने घर में क्या हो रहा है। बेगम की वो सहेली परवीन जी और उनकी वो फौज अब तो यकीनन जा चुके होंगे। मैं तुमसे दोस्त बहुत शर्मिंदा।
0: अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अच्छा खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
2: अरे भाई कमाल कर रही हैं आप भी, ये ले लीजिए ना, ये लीजिए केला। अरे अरे इन बच्चों को भी तो दो ना, ले लो बेटा, लो लो, शर्माओ नहीं, ले लो ले लो, तुम भी लो, हाँ तुम भी लो, ये लो ये लो।
3: अरे रहने दीजिए बहन, ये बच्चे तो खाते ही रहते हैं माशाल्लाह।
2: हाँ वो तो मुझे मालूम है, ये मैं कब कह रही हूँ कि ये पहली बार खा रहे हैं।
3: मेरा मतलब ये नहीं था बहन।
2: खैर आप उन्हें दीजिए ना ये केले, मैं अभी चाय देख लेती हूँ,
4: अब तो तैयार हो गई हूँ।
3: अरे बहन इसकी क्या जरूरत थी?
4: वाह ये भी कोई बात है, पहली बार तो आई हैं आप हमारे यहाँ, भला खातिर नहीं करेंगे तो आप भी क्या सोच रहे?
3: नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी काफी रात हो गई है, काफी दूर जाना है, और फिर भाई साहब भी तो
4: अरे वो तो चले गए होंगे किसी दोस्त के घर, बहुत दोस्त हैं उनके यहाँ, उठने ही नहीं दे रहे होंगे उन्हें, तो उनकी फिक्र
3: है। वो तो ठीक है, मगर बात दरअसल ये है कि मैं बहुत दूर रहती हूँ, अब यहाँ से कोई सवारी भी शायद इस तरफ ना मिले, और फिर इतनी सुनसान रात में यहाँ से अकेले जाने में डर भी तो लगता है।
4: यानी आप बताइए इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ?
3: अगर कोई मुजायका ना हो तो भाई साहब से जरा कह दीजिए वो हमें घर तक पहुँचा दे,
4: मगर वो तो अभी तक आई नहीं। अच्छा देखा जाएगा, पहले आप लोग चाय तो पी लीजिए।
3: अरे ये मुन्ने मियाँ तो सो भी गए,
4: उन्हें भी उठा दीजिए ना, चाय पी लेंगे, इनकी नींद भी भाग जाएगी।
3: जी नहीं जी नहीं, ये जो चाय नहीं पीता आप रहने दीजिए, इसका दूध घर पर रखा है वहीं पिला दूंगी।
4: वाह भाई वाह,
3: ये कैसे होगा? आप इसे उठाएं तो सही, दूध मैं लेके अभी आती हूँ।
4: अरे साहब आप तो बेहद तकलीफ कर रही हैं।
3: नहीं बस अभी ये लो, बस 10 मिनट में आई।
5: अरे भाई बेगम सुनिए जरा,
3: अभी आई।
1: गई है आपकी वो सहेली मोहतरमा परवीन साहिबा?
2: ओ, वो तो अभी बैठी है, जरा टीवी देखने में देर हो गई ना, बस उन्हें चाय पिला दूं फिर वो जा रही है। प्लीज थोड़ी देर आप जरा और दूसरे कमरे में बैठ जाइए ना, प्लीज थोड़ी देर आप।
1: बेगम आखिर ये सब कुछ
2: जी, वो बस मैं अभी आई उन्हें चाय देकर, आप पीजिएगा चाय?
1: नहीं दीजिए चाय भाई, और खुदा के लिए अपनी सहेली को जरा जल्द रवाना कर दीजिए।
2: बस आप चलिए तो सही ना दूसरे कमरे में, मैं उन्हें रुख्सत करके अभी आई।
1: या अल्लाह क्या मुसीबत है, पहले तो ये हमारी बेगम मिलन सारी के रिकॉर्ड तोड़ रही थी, और दूसरे ये कमबख्त हमारा टीवी। उफ, टीवी कहीं हमारे लिए टीवी का सबब न बन जाए।
3: अरे अरे ये लीजिए परवीन बहन चाय, और ये रहा मुन्ने के लिए दूध।
2: अरे ये दूसरे हजरत भी सो गए क्या?
3: जी जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? ये दूसरे हजरत ये तो बस अभी उठ बैठेंगे।
2: कोई बात नहीं, आप लोग शुरू तो कीजिए।
3: जी हाँ जी हाँ, लीजिए आप भी तो चाय लीजिए। और वो भाई साहब शायद आ गए, वो भी उन्हें भी तो चाय पहुँचा दें।
2: हाँ, वो भी चाय ले लेंगे। हेलो आप लोग तो पीजिए।
3: हेलो भाई, ये लो सर, जल्दी से पी लो चाय, फिर घर चलना है, तुम्हारे पापा भी इंतजार कर रहे होंगे।
2: बहुत देर हो गई आज तो बहन, अभी जाकर खाना वगैरह भी पकाना
3: है। आई लू, आपने भी तकल्लुफ की हद ही कर दी।
2: अरे भाई बताया क्यों नहीं कि आप लोग खाना खा खा कर नहीं आए हैं? लो अभी फटाफट तैयार किए देती हूँ मैं खाना। आप भला बताओ ये बच्चे भूख के मारे उनकी क्या हालत हो रही होगी, इन्हें थोड़े फ्रूट्स वगैरह तो और दे दीजिए।
3: नहीं नहीं बहन रहने दीजिए, माशाल्लाह अब तो ये लोग घर पहुँच कर खाना खाएंगे ही।
2: चाचू है यानी अब आप घर जाकर सबके लिए खाना भी तैयार करेंगी? और वो भाई साहब
3: उन्होंने तो कुछ ले लिया होगा ऑफिस से आने के बाद। मैं पड़ोस में कह आई थी कि शायद आपके यहाँ देर हो जाए। ओफो वाकई आज तो बहुत देर हो गई। अब अगर कोई तकलीफ ना हो तो वो जरा भाई साहब से कह दीजिए, यानी मेरी तरफ से अर्ज कर दीजिए, वो जरा हम सबको घर तक छोड़ा है तो बहुत बेतुकी बात, मगर ये रात का सन्नाटा और फिर बच्चों के साथ मैं अकेली।
2: हाँ आप लोग ठहरिए, मैं अभी उनसे कह देती हूँ। वो मेरी बात नहीं डालेंगे, बस मैं अभी आई।
3: मैंने कहा क्या आंख लग गई है आपकी?
1: क्या है, कोई ताजा हुक्म है क्या
2: जी? वो मैं ये कह रही थी कि रात बहुत ज्यादा हो गई है।
1: वो तो मैं भी देख रहा हूँ।
2: तो वो जरा परवीन को खड़े खड़े उनके घर तक छोड़ आई है ना, बेचारिया के लिए है।
1: खड़े खड़े उनको घर तक छोड़े हूँ और आप बैठे बैठे यहाँ मुझसे चलाए, ये भी खूबी है।
2: ये तो क्या हुआ, जरा सी तो बात है।
1: जरा सी बात होगी तुम्हारे लिए बेगम, तुम्हें आखिर कब एहसास होगा कि मैं दिन भर का थका हारा घर आता हूँ? शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो तो तुम्हारी कोई सहेली यहाँ मौजूद ना। आखिर कब तक मैं दोस्तों को तुम्हारी खातर बोर करता रहूं, कब तक उनमें रुसवा होता रहूं? मैं नहीं जाने वाला, साफ साफ कह रहा हूँ।
2: तो फिर ठीक है, मत जाइए आप परवीन को छोड़ने। मैं उन्हें इतनी दूर इतनी सुनसान रात में बच्चों के साथ अकेले नहीं भेज सकती।
1: तो फिर इंतजार कीजिए अपनी चहेती सहेली के चहेते शौहर का, वो खुद फिक्र होगी, वो इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और ले जाएंगे अपनी बीवी को अपने साथ। मैं नहीं जाने वाला। हाँ
2: आप भी कमाल करते हैं, अरे वो कैसे आ जाएंगे?
1: क्यों नहीं आ जाएंगे, वो आखिर उन्हें भी तो अपने बीवी बच्चों की फिक्र होगी।
2: ये मैं कब कहती हूँ कि उन्हें फिक्र नहीं है अपने बीवी बच्चों की, मगर वो उन्होंने हमारा मकान ही कब देखा है? और फिर उन्हें ये भी तो पता नहीं है कि परवीन हमारे घर आई है।
1: तो फिर मैं क्या करूं, मैं बहुत थक रहा हूँ इस वक्त, खुदा के लिए मुझे माफ करो। हाँ
2: तो ठीक है, मैं परवीन से कह देती हूँ कि वो आज रात नहीं आ रहा।
1: अरे ये क्या गजब कर रही हो बेगम, खुदा के लिए होश की बातें कीजिए। परवीन के शौहर कितने परेशान होंगे, और फिर हमारे यहाँ इतनी गुंजाइश भी कहाँ है कि आपकी सहेली को उनकी फौज के साथ यहाँ सुलाया जाए।
2: इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि उस बड़ी तकलीफ से बचने के लिए ये छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लीजिए और छोड़ आइए ना, मेरी सहेली को छोड़ आइए ना उनके घर तक।
1: मगर एक शर्त के साथ।
2: बताओ क्या?
1: ये वादा करो कि आइंदा कभी किसी सहेली को घर का रास्ता ना दिखाओ और ना उसे टीवी देखने पर मजबूर करे।
2: अच्छा,
1: वरना यकीन करो मैं आइंदा अपने कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, चाहे तुम कितनी खुशामद करो।
2: जी, जी, मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है आपकी शर्त, मगर इस वक्त तो खुदा के लिए मेरी बात मान लीजिए ना। देखो ना रात ढलती जा रही है, मुझे खुद फिक्र सी हो रही है परवीन के खानिंद क्या सोच रहे होंगे। और
1: क्या क्या कोई नई बात जहन में आ गई?
2: जी नहीं, मैं तो कह रही थी कि और वो परवीन के शौहर हमारे बारे में क्या सोचेंगे?
1: सोचेंगे क्या, बस यही कहेंगे।
2: बस रहने दीजिए, आप तो जरा भी मुरव्वत नहीं रखते, जरा भी मिलनसारी से काम नहीं लेते।
1: ओफो बेगम, ये आपकी मुरव्वत, ये आपकी मिलनसारी, ओफो क्या होगा इस घर का खुदा के लिए?
2: ओफो फिर वही खुदा के वास्ते देना शुरू कर दिया आपने फिर वही। मैं कहती हूँ आप मौके की नजाकत को क्यों नहीं समझते? हो गया जो होना था, अब निभा तो करना ही पड़ेगा। यानी मेरा मतलब है प्लीज जरा जरा जल्दी से तैयार हो जाइए ना। और वो परवीन को देखिए ना, देखिए ना उसके बच्चे बेचारे एक एक करके सोए जा रहे हैं।
1: क्या कहा क्या कहा क्या कहा,
2: बच्चे सोए जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, इतनी रात तक नन्ने नन्ने बच्चे क्या जागते रहेंगे?
6: तो जाइए आप अपनी सहेली को तैयार कीजिए और उनके सोए हुए शेरों को जगा दीजिए। बस मैं अभी आ रहा हूँ तैयार।
2: जी बहुत अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप भी जरा जल्दी से आइएगा। देखिए रात गुजरती जा रही है, फिर आपको भी तो इतनी दूर से वापस आना है, खुदा के लिए जरा जल्दी कीजिएगा।
6: बस आया, आप चलिए।
2: अंदर आ जाइए
6: बेगम। मैं अंदर आकर क्या करूँगा, आप उन्हें बाहर ही भेज दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
2: जी नहीं, ये परवीन आपको आदाब कह रही है और ये खुद आपको अंदर बुला रही है।
6: जी मेरा भी आदाब कह दीजिए उनसे और जल्द ही उन्हें भेज दीजिए बाहर।
2: अरे साहब आप भी हद कर रहे हैं, परवीन कह रही है आपसे क्या पर्दा करें, आप तो उनके भाई जैसे हैं।
6: मेरे अल्लाह, अगर ये मोहतरमा मुझसे पर्दा करना नहीं चाहती थी तो इन्होंने शुरू ही में क्यों नहीं बता दिया, परेशानी से तो बन जाता और इसी कमरे में किसी जगह मुंह छुपाया पड़ा रहता। अच्छी औरत है ये भी।
2: आदाब अर्ज़े भाई साहब।
6: आदाब अर्ज़े जी, वो आप बैठे ना,
2: अब बैठना क्या, बहुत रात हो गई है, आप लोगों को बड़ी जहमत दी मैंने यहाँ आकर, माफी चाहती हूँ।
6: माफी? माफी किस बात की? अरे साहब आप हमारी बेगम की सहेली हैं और ये हमारी बेगम अपनी सहेलियों के खातिर सब कुछ कर गुजरती हैं। बड़ी मिलनसार हैं।
2: जी हाँ जी हाँ, सही फरमा रहे हैं आप, सच कहती हूँ आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी मिलनसार।
6: जी जी वो हाँ, ऐसी मिलनसार बीवी मिली है, यही ना?
2: बिल्कुल यही, सच है यार सच।
4: बस बस बस बस, आप लोग मेरी तारीफ के पुल मत बांधिए वरना मैं पुल कर।
6: आप पहले इसे माशाल्लाह
2: माशाल्लाह, भाईजान आप भी काफी दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं। सच मुझे तो बड़ा अफसोस है कि आपसे चलते चलते मुलाकात हुई, आप दो तीन घंटे यहाँ रहते तो बड़ा मजा आता, आप तो हंसा हंसा कर मुझे भी
6: आपकी भाभी की तरह बना देते।
4: अच्छा तो अब वो देखिए 11 बज रहे हैं, बातें करते रहेंगे तो वक्त का पता भी नहीं चलेगा। ये परवीन अब कोई गैर तो रही नहीं, हर दूसरे चौथे रोज आ जाया करेंगी आपकी इन मजेदार बातों को सुनने और कहे लगाने। क्यों भाई आओगी ना परवीन?
6: क्या क्या क्या क्या कहा आपने बेगम?
2: क्यों भाई जान क्या हुआ, क्या हम लोग इतने बुरे हैं?
6: ये आपने कैसे समझ लिया? मैं तो बेगम से कह रहा था कि आप परवीन को हर दूसरे चौथे दिन आने के लिए क्यों कह रही हैं? अरे भाई इन्हें तो रोज रोज आने के लिए कही है।
2: सच भाई जान सच। आप फरमाए तो मैं रोज आ जाया करूंगी, इन बच्चों को टीवी देखने का इस कदर शौक है कि बस मैं खुद इन्हें अड़ोस पड़ोस में जाने नहीं देती, बड़े खराब लोग हैं वो, नाक भवे चढ़ाने लगते हैं, अब तो बस आपका घर
6: है। चलिए अच्छा तो अब तो चलिए।
2: जी बहुत अच्छा। अरे भाई मुन्ने मियाँ अब उठो, अरे तुम भी उठो दूसरे हजरत, ओफो मालूम होता है बड़ी गहरी नींद में है दोनों। वो भाईजान जरा जहमत तो होगी, जरा ये मुन्ने मियाँ को आप उठा लीजिए ना गोद में।
6: जी क्या कहा
4: मैं कहूँ हर्ज भी क्या है, जरा कंधे से लगा लीजिए ना, बेचारा कितना मासूम बच्चा है।
6: बहुत अच्छा, आओ मेरे भांजे आओ मेरे कंधे पर सवार।
2: अच्छा बहन चलती हूँ, जब भी जी घबराया करेगा ना आ जाया करूँगी।
4: जरूर
2: तो माशाल्लाह भाई साहब ने भी दावत दे दी है, कहा किस तरह टाला जा सकता है। क्यों भाई जान?
6: जी हाँ जी बेशक बेशक बेशक रोज आ जाया कीजिए हमारी बेगम की मिलन साड़ी को आजमाने।
2: और वो टीवी देखने?
6: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो भी देखा कीजिएगा शुरू से आखिर तक।
2: अच्छा खुदा हाफिज।
4: अच्छा बहन
2: खुदा हाफिज।
4: अरे सुनते हैं आप जरा जल्दी वापस आ जाइएगा।
6: जी बहुत अच्छा, खुदा हाफिज।

0: पेशकश थी अनवर खान की और मुआविन थे प्रेम वोहरा। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। तजारत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक भारत यूरोपीय यूनियन काउंसिल सिक्योरिटी और दिफाई साझेदारी नीज मोबिलिटी फ्रेमवर्क में इश्तराक को आगे बढ़ाएगी। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता यात्रा आज ओडिशा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरेन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। वजीर खारजा डॉ एजी शंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक भारत यूरोपीय यूनियन काउंसिल की मीटिंग से उस साझेदारी को तेज रफ्तार के साथ आगे ले जाया जा सकेगा जो भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते एफटीए, सिक्योरिटी और दिफाई साझेदारी नीज मोबिलिटी फ्रेमवर्क के तनाजुर में कायम हुई है। वजीर खारजा ने कल ब्रसेल्स में तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन काउंसिल की मीटिंग के बाद ये अखबारी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन की एक फितरी वाबस्तगी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भी भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते को मुनसिफाना, मुसावियाना और मुतवाजन करार दिया है, जो दोनों मुल्कों में हर शोबे के लिए मुफीद साबित होगा। ओडिशा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरूने मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ हो रही है। गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे, एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत

रफी के साथ ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी तुमसे अच्छा कौन है। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में है, फिल्म है बुढ़ा मिल गया।

0: हसीना कल मैंने देखी अजब हसीना प्यार में उसके घर के मेरा दिल जलता है सीना तो आई बड़ी अदा से बोली क्यों पापा पापा से
1: मर जाऊं
0: हम

तुम्हारी कसम फिल्म का नगमा आपने मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में सुना। अब सुनिए मन्ना डे के साथ आशा भोसले को, फिल्म का नाम है रेशमी रुमाल।

0: जवानी दीवानी फिल्म का नगमा भी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सुना। इससे पहले हमने आपको सुनवाया मस्ताना फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है माई साहिबा।
1: मुकाल माते फलातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। और ये अजीम हकीकत है कि औरत के वजूद से ही इस कायनात में रंगबू है। तमाम फिलासफा उदबा शोरा अवलिया और सूफिया ने औरत की गोद में ही होश संभाला और अपनी बात कहने का सलीका सीखा। अलामा इकबाल ने इस बात को बहुत ही खूबसूरत असलूब में इस तरह बयान किया है। जब तेरे दामन में पलती थी वो जाने नातवां, बात से अच्छी तरह महरम न थी जिसकी जुबान, और अब चर्चे हैं जिसकी शोखिये गुफ्तार के, बेबहा मोती हैं जिसकी चश्मे गौहर बार के। ऐसी ही अजीम खवातीन में एक बुलंद मर्तबा खातून हजरत माई साहिबा भी थी, जिनकी आगोश तरबियत से हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसी अजीम हस्ती पैदा हुई। हजरत माई साहिबा का नाम बीबी जुलेखा था और वो बदायूं की रहने वाली थी। एन जवानी में बेवा हो गई। दो कमसिन बच्चों की परवरिश का बोझ उनके कंधों पर आन पड़ा। घर में गुर्बत की वजह से हालात बहुत खराब थे। उसके बावजूद उन्होंने तंगदस्ती और नादारी में अपने बच्चों की तालीम तरबियत का ख्याल रखा। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए बाहर जाना जरूरी था। माई साहिबा ने भी अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन बदायूं में इनका खुद भी कोई और सहारा

बारिश। उदित नारायण के साथ आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। प्रोग्राम की अगली पेशकश के और शिल्पा राव की आवाजों में है, फिल्म है बचना ऐ हसीनों।

गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लोतारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में

में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीजन में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। तजारत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक भारत यूरोपीय यूनियन काउंसिल सिक्योरिटी और दिफा साझेदारी नीस मोबिलिटी फ्रेमवर्क में इश्तराक को आगे बढ़ाएगी।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। अमरीका ने कहा है कि उसने अपनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक भारत यूरोपीय यूनियन काउंसिल सिक्योरिटी और दिफाई साझेदारी नीज मोबिलिटी फ्रेमवर्क में इश्तराक को आगे बढ़ाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दहशतगर्दी के लिए रकम फराहम करने के सिलसिले में 13 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे हमारी दूसरी मजलिस का आगाज होगा। दीगर प्रोग्रामों के अलावा 3:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक मुबैसा अंदाजे नजर प्रोग्राम के तहत। फिलहाल आज की इस मजलिस से हमें दीजिए इजाजत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 1997 में रिलीज हुई फिल्म दिल तो पागल है, इसे राहुल, पूजा और निशा के बीच लव ट्रायंगल को खूबसूरती और शानदार गानों के साथ दिखाया गया है। फिल्म का कुल बजट 9 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 71.86 करोड़ की कमाई की और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें निर्देशक, कहानी, पटकथा, संगीत, छायांकन और अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को मिला, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यश चोपड़ा को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार माधुरी दीक्षित को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार करिश्मा कपूर को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार उत्तम सिंह को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार आदित्य चोपड़ा को प्राप्त हुए। साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन श्यामक डावर को प्राप्त हुए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है में कुल 10 गीत हैं। संगीतकार उत्तम सिंह उस वक्त तक कई वर्षों से सक्रिय थे, लेकिन सफलता उन्हें इस फिल्म से मिली। उन्होंने लगभग 100 धुनें तैयार की थीं, जिनमें 9 धुनों को चुना गया। बोल आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। जारी होने पर गीत बहुत लोकप्रिय हुए और ये साल 1997 की सर्वाधिक बिकने वाली एल्बम रही। फिल्म की सफलता के लिए इसके संगीत को प्रचुर श्रेय दिया जाता है। उत्तम सिंह की धुन और आनंद बख्शी के साधारण भाषा में रचे गए बोल का युवाओं से जुड़ना इसकी सफलता के मुख्य कारण रहे।

श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है में निशा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद करिश्मा कपूर नहीं थी। जी हां, इनसे पहले जूही चावला, मनीषा कोइराला, उर्मिला और काजोल को रोल ऑफर किए गए थे। इन सब ने उस रोल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी ऑपोजिट माधुरी दीक्षित थी जो ऑलरेडी एक स्टार थी, साथ ही बेहतरीन डांसर भी। तब ये रोल करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ जिन्होंने किरदार को बखूबी निभाया। नतीजा ये निकला कि उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार मिला, साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है का गीत ले गई में बतौर बैकग्राउंड डांसर शाहिद कपूर नजर आए थे। उस वक्त शाहिद कपूर इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। करिश्मा कपूर के साथ डांस स्टेप मैच वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर को गाना शूट करने के लिए करीब 15 रीटेक लेने पड़े।

दिल तो पागल है एक ऐसी फिल्म रही जिसने ना केवल हमारे दिलों को छुआ बल्कि बॉलीवुड में रोमांस और डांस की परिभाषा ही बदल दी। श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन।

0: की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5 चीन की खिलाड़ी हान युई को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आलमी जुग्राफियाई सियासी तनाजियात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसला कुन कार्रवाई करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की 5वीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब डोभाल ने कहा कि दुनिया को तनाजियात और जुग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और मुल्कों को सलामती के मुख्तलिफ खतरात भी दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के रुकन ममालिक ने दहशतगर्दी, सरहद पार से किए जाने वाले मुनज्जम जराइम, साइबर खतरात और बहरी सलामती के चैलेंजों से निमटने में इश्तराक को खातिर खा मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिम्स्टेक ममालिक नए और उभरते हुए खतरात से एक साथ मिलकर निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन में रखना समेत इख्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक रुकन ममालिक के दरमियान करीबी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। जनाब डोभाल ने इस बात को भी उजागर किया कि बिम्स्टेक बुहराए हिंद के इंतहाई अहम और फाल खित्तों को जोड़ती है, जिसकी मजमूई GDP तकरीबन 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि सरकार की कोशिश एक ऐसे भारत की तामीर की है जहां सरहदें न सिर्फ महफूज हों बल्कि इंतहाई मजबूत भी हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सरहदी सड़क तंजीम BRO टेक सिम्पोजियम से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले किसी भी शहरी को ये महसूस न हो कि वो असल धारे से अलग है। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल और सेला टनल जैसे अहम प्रोजेक्ट BRO की सलाहियतों का मजहर हैं। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के सिलसिले में BRO की सताइश की।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज CBSE निसाब के तहत नवीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत आलिया ने तजवीज किया है कि उसे 5वीं या 6ठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे वाकिफ हो सकें। जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज से जबानी तौर पर कहा है कि वह नवी जमात की सतह पर तीसरी जबान मुतारिफ न कराए। यह रायजनी मद्रास हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की दरखास्त पर समाअत के दौरान की गई जिसमें रियासत के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के कयाम में सहूलत की बात कही गई थी। तमिलनाडु हुकूमत स्कूलों की जानिब से तीसरी जबान से मुतालिक पॉलिसी के निसाब के ताल्लुक से तशवीश के मामले पर मुसलसल जवाहर नवोदय विद्यालयों के कयाम की मुखालिफत करती रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर कल मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी और ये हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो रेल को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील करती है। इस अमल से सिर्फ भाप निकलती है जिससे कार्बन का बिल्कुल भी इखराज नहीं होता। भारत में ही डिजाइनकर्ता और तैयार की गई इस रेलगाड़ी में मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब मुंतकली के सिलसिले में एक अहम संगे मील है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे जो अब तक तैयार की गई

0: हाइड्रोजन पर मबनी मुसाफिर रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। इस रेलगाड़ी में 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्शन सिस्टम है जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। यह रेलगाड़ी जींद सोनीपत सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जीरो जमीन ईंधन पर मबनी थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली पर इन्हिसार भी कम होगा, जिससे पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भारत की मुंतकली में मदद फराहम होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ भारत जर्मनी जापान चीन और अमरीका जैसे उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो माहौल के लिए साजगार रेल खदमात के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के इम्कान तलाश रहे हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मरकजी हुकूमत ने ईंधन की बरामद से मुतालिक टैक्सों के अपने 15 रोजा हालिया जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में नजरसानी की है। नजरसानी शुदा शरहों के तहत डीजल पर बरामदाती महसूल बढ़ाकर 15.50 रूपये फी लीटर कर दिया गया है, जबकि एटीएफ बरामद पर ड्यूटी बढ़कर 14.50 रूपये फी लीटर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जिंदगी कीमती है। जनाब वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक बेंच ने जोर देकर कहा कि जनाब वांगचुक की अदालत की हालत सरकारी डॉक्टरों से रोजाना चेक कराई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो मरकज और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए कहा कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और जनाब वांगचुक की रोजाना तिब्बी जांच कराने पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीत चुकी भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी चीन की हान युई को सीधे सेटों में हराया और वो जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पीवी सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को महज 35 मिनट में 21-16 21-14 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतजादी चैलेंजों से निपटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को तजवीज किया है कि वो 5वीं या 6वीं जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on the same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stunned.

0: हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस नेशन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% of the world population.
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों

0: में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: शुगर का जरूर कराना चाहिए
1: जी। और इसके बारे में बहुत सी चीजें मिथ भी हो सकती हैं, बहुत से साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे आमतौर से ये समझा जाता है कि जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उन्हें शुगर होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका खाने से फिलवक्त कोई ताल्लुक नहीं होता, आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में?
0: देखिए, पहले तो हम समझे कि डायबिटीज क्या होता है। देखिए, डायबिटीज दो किस्म का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज होता है और एक टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है। टाइप 1 डायबिटीज है वो बेसिकली यंग लोगों में, बच्चों में देखा जाता है, जिसमें एक सेल्स होते हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वो काम करना बंद हो जाते हैं। उनकी वजूहत क्या होती है अलग चीज है, बट वो शुरू से ही पेशेंट इंसुलिन पे रहते हैं और उनको हमें इंसुलिन स्टार्टिंग से ही देना पड़ता है। और अक्सर ये यंग पेशेंट्स में, बच्चों में, यंग एडल्ट्स में ये बीमारी देखी जाती है। बट जो कॉमन बीमारी है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, वो कॉमनली हम एडल्ट्स में देखते हैं, वो उसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ज्यादा है। बेसिकली ये आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो पैनक्रियाज रिलीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होता है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। और उसका सबसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होने का रिस्क होता है। ये एक फैक्टर नहीं है कि जो ज्यादा मीठा खाए उसको डायबिटीज होगा, सिर्फ एक रिस्क फैक्टर नहीं है, ये पॉलीजेनिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पॉलीजेनिक रीजंस हैं इसके, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक तो जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को डायबिटीज है, एक को है तो रिस्क रहता है, दोनों को है तो रिस्क बढ़ता है। तो एक हेरिडिटरी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका एक रिस्क हमेशा बना रहेगा कि आपको भी डायबिटीज हो सकता है।
1: यानी वालदैन को या वालदैन में से किसी एक को भी है तो चांसेस
0: है कि आपका डायबिटीज होने का रिस्क है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो आजकल देखा जाता है वो है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा, जब इंसान का वजन बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जो बॉडी में इंसुलिन काम करना चाहिए वो प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर हमारा बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ने के रीजन सिर्फ एक नहीं है। मोटापे होने का रीजन सबसे बड़ा हमारा हाई कैलोरी इंटेक, जब हम खुराक ज्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे हमारा आजकल लाइफस्टाइल। इसलिए डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि जब हमारी कैलोरी इंटेक हो ज्यादा होती है और आउटपुट कम होता है तो हमारा वजन बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा, पेट के आसपास जो जिसको सेंट्रल ओबेसिटी हम बोलते हैं वो बढ़ता है, तो उससे डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ना सिर्फ हाई शुगर से नहीं होता, मोटापा आप अगर ज्यादा खाना खाएंगे, वो नॉन जो स्वीटेंड फूड है वो भी अगर आप ज्यादा खाएंगे, कैलोरी इंटेक ज्यादा करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है और आउटपुट कम होगा जी, तो फिर आपका मोटापा होगा, वजन बढ़ेगा, तो वजन बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिससे डायबिटीज का चांस ज्यादा है। ओवरऑल भी अगर खुराक ज्यादा खाएं जिसमें आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है तो आपको शुगर होने का चांसेस ज्यादा है
1: जी। आपकी बातों में ये भी एक पोशीदा इशारा था कि ज्यादा खाना भी उतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके जिस्म को उस खाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती
0: जी,
1: है।
0: जी बेशक।
1: इसलिए आमतौर से जो जिम जाने वाले बच्चे होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं जो कसरत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनकी डाइट अच्छी खासी होती है लेकिन देखने में भी फिट होते हैं और फिट अदरवाइज भी फिट होते हैं, तो ये इसके पीछे का सबब गालिबन यही होगा जो आप कह रहे हैं।
0: देखिए, अगर आप खुराक ज्यादा ले रहे हैं और उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। तो वो बॉडी में आपका लीवर में, जो लीवर हमारा जो स्टोरेज ऑर्गन होता है बेसिकली, वो लीवर में फैट की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फैटी लीवर भी एक शुरुआती, मतलब जिसको शुगर बेशक उसका नॉर्मल आ रहा है, बट अगर फैटी लीवर है तो एक चांस होता है कि लॉन्ग टर्म में इस मरीज को डायबिटीज होने का रिस्क है, क्योंकि एक्स्ट्रा खुराक ही आपके लीवर पे जाके फैट एक्यूमुलेट करके फैटी लीवर कर देती है। तो बेसिकली अगर आपकी खुराक ज्यादा है, आउटपुट कम है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस हो जाता है कि बॉडी से जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिससे शुगर जो मसल्स में जाना चाहिए, आपके टिश्यूज में जाना चाहिए, वो सिर्फ आपके ब्लड में रहता है। तो जब ब्लड में रहता है तो फिर शुगर हाई हो जाता है और उसी से कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है।
1: शुगर अपने आप में सेहत के लिए एक मसला तो है ही, और कई बार इसकी हदें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दूसरे कई मरज को पैदा कर देता है।

0: शुगर को एक नॉर्मल रेंज में इसलिए रखें ताकि जो इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाली हैं वो उनसे हम रोकें। तो सबसे कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट ऑर्गन्स का होता है वो है सबसे पहले तो आईज, आपकी आईज को बहुत डैमेज करता है, जो हमारे रेटिना होता है, जो पर्दा होता है आंख का पर्दा, वो सबसे पहले और कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो जब भी अगर आपका आंखों में कोई नजर कमजोर हो रही है या चश्मा फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं आपका, तो हमेशा अपना शुगर जरूर चेकअप कराएं। और कई मरीज तो हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए, उनको तो पता भी नहीं था कि शुगर है, जब आई डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि इनके तो पर्दे पे शुगर की वजह से काफी असर आया है, तो फिर वो हमारे फिजिशियन के पास भेजते हैं कि आप शुगर चेकअप करा लीजिए और अपना इलाज कराइए। तो आईज का इन्वॉल्वमेंट कॉमनली होता है। सेकेंड है नर्व्स का, नसें जो नर्व्स जो हमारी होती हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो पेशेंट को नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, सुनपन, बेसिकली ये सब सिम्टम होते हैं। तो नर्व्स का डैमेज होता है, ये भी हाई शुगर से होता है। और दो कॉमनली सिम्टम जो ड्रेडिड, जिसको हम खतरनाक सिम्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से मरीज की एक डेथ का रीजन भी बनता है, वो है किडनी का और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट जो हार्ट अटैक का एक रीजन, जो डेथ का रीजन बन जाता है। तो हमें जो पेशेंट को बेसिकली प्रिवेंट करना है वो इन चार मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज की, ये मरीज को ये चार कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बट जो चार जो कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, इससे प्रिवेंट करना है। तो वो कैसे प्रिवेंट होगा, जब हम अर्ली डायग्नोस करें, कि पहले ही पता चले कि इस पेशेंट को, इस इंसान को शुगर इसका हाई जा रहा है और इसको हम अभी से कंट्रोल करें। अगर एक इंसान जिसका शुगर पता चला है और उसने लाइफ में कभी शुगर उसके बाद बढ़ने नहीं दिया, नॉर्मल रखा, उसको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम शुगर अभी से कंट्रोल करें ताकि मरीज इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास ना आए। अगर कोई मरीज जिसका शुगर अनकंट्रोल है और उसने दवाई नहीं ली, कोई अपना ध्यान नहीं रखा, तो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लिकेशंस लेके पेशेंट हमारे पास आएगा ही आएगा। और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करके आता है, मतलब बेसिकली पेशेंट को कई बार शुगर का पता भी नहीं होता है, वो पता चले कि उसका किडनी भी खराब हो गया है, उसके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसकी आंखों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हैरानगी की बात यह होती है कि मरीज को ये तक नहीं पता है कि उसका शुगर हाई था
1: जी।
0: तो इसीलिए डायबिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमें एक रूटीन चेकअप करना जरूरी है। इसलिए पहले गाइडलाइंस होते थे कि बियॉन्ड 40 इयर्स ऑफ एज आप अपना शुगर चेकअप जरूर कराएं, लेकिन अब जो देखा गया है यंगर एज में भी डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। तो हम कब चेकअप कराएं, पहले तो अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको पेरेंट्स में एक को या दोनों को है, तो आप यंगर एज ग्रुप में, मैं तो ये कहूंगा 20 साल के बियॉन्ड ही एक रूटीन चेकअप जरूर करा लिया करें, शुगर का चेकअप जरूर करा करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपका वजन बढ़ रहा है, तो शुगर का चेकअप जरूर कराएं। और अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो बियॉन्ड 30 और 40 तो आप एक रूटीन डायबिटीज का चेकअप जरूर कराएं, ताकि हमें इसको जल्दी कंट्रोल कर सकें और जो इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें।
1: जी उम्दा बातें, खासतौर से जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, नौजवान हैं, आमतौर से उन्हें लगता है कि अभी तो हमारी उम्र ही उछलने कूदने की है, भागने दौड़ने की है, तो उनके जहन में कभी ये बात आती ही नहीं गुमान में कि उन्हें भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे आमतौर से पढ़ने वाले हैं, हॉस्टल में हैं, कहीं बाहर हैं, तो उनको खाने पीने की न तो वक्त की पाबंदी होती है, न वो क्या खा रहे हैं उन्हें इसका पता होता है, बाहर से वो जो मंगा रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, वो उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है उसका पता नहीं होता। कई बार बच्चों की फिजिकल इनएक्टिविटी का एक जस्टिफिकेशन उनके पास ये था कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें स्टडी करना है, अभी हमारे पास उछलने कूदने के लिए, बाहर खेलने भागने दौड़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उनका वेट बढ़ता जाता है, उन्हें पता नहीं होता। ये अब आपकी बातें सुनकर ये लगता है कि ऐसे बच्चों को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
0: मैं वही बताना चाह रहा था, क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनली एक 40s बियॉन्ड हम बोलते थे, बट आजकल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा यंग लोगों में, आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टाइप 1 डायबिटीज यंग में देखा जाता है, बट अब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, जो इन मोटापे से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, वो यंग लोगों में देखा जा रहा है। और यंग लोगों से मेरा मतलब 16, 17, 18 एज ग्रुप, क्योंकि उनमें मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी, कैलोरीज इनटेक का ज्यादा है और फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, जिससे वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का इंसिडेंस देखा जा रहा है,
1: खासतौर से बड़ों में तो नहीं लेकिन बच्चों में ये बात

0: आम होती है कि वो बहुत सी चीजें जैसे फल, साग, सब्जी, ये तमाम चीजें उन्हें आम तौर से खाने में बहुत पसंद नहीं आती, तो क्या इनका न लेना भी एक सबब होता है उनके जिस्म को उस तरह बिहेव करने का?
1: जी, हम जो भी खाने को दो हिस्सों में तोलते हैं कि इसका कैलोरी इंटेक कितना है, जब आप कुछ चीज खाते हैं तो वो कितनी कैलोरी आपको देती है। आजकल ज्यादातर तो जो फूड यूज होता है, जैसे मैदे की चीजें,
0: जी
1: फास्ट फूड, ये टेस्ट के हिसाब से बच्चों को यंग एज में बहुत पसंद आता है, लेकिन ये साथ साथ आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा दे देता है। जैसे अगर आप एक बर्गर खाएं या एक पिज्जा खाएं, आपको कॉमनली आजकल आप जाएंगे कहीं पे
0: जी
1: भी,
0: जी
1: ज्यादातर
0: जी
1: यही चीजें यूज होती हैं, तो ये इनका कैलोरीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ना और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जितने भी हाई फाइबर डाइट होती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या सैलेड्स हैं, इससे पेट भरता है लेकिन ये कैलोरी कम देता है। तो हाई कैलोरी और लो कैलोरी, जैसे जितने भी सब्जियां, फल फ्रूट हैं,
0: जी
1: इनसे आपकी कैलोरी बहुत कम मिलती है एज कंपेरिजन टू फास्ट फूड और बाकी मैदे की चीजें जो
0: जी
1: कॉमनली यूज होती हैं, या फास्ट फूड, उनसे कैलोरी ज्यादा मिलती है। तो चूंकि आजकल इनसे फल फ्रूट और फाइबर का इंटेक कम हो गया
0: कम
1: है,
0: हो गया
1: फास्ट
0: बहुत।
1: फूड इंटेक बढ़ गया है, क्विक शुगर इंटेक, इनफैक्ट जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके बॉडी में कैलोरी देंगी, आपकी बॉडी में वजन बढ़ाने में हेल्प करेंगी, और जिससे डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ जाएगा।
0: जी ये तो हमने आमतौर से बातें जो अभी की उसमें एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मरतकिज था। हम एक खास एज को जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल से दोचार होना पड़ता है जिसके बारे में हम आमतौर से नहीं सोचते, और अपने प्राइम में या 40s 50s तक हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन उसके बाद उसको हमें संजीदगी से लेना होता है। आपने खुद बताया कि वो टेस्ट कराते रहना चाहिए, ये एक रूटीन टेस्ट जरूर कराना चाहिए खास एज के बाद, और खाने पीने में आपने बताया कि जो लो कैलोरी है वो लेना चाहिए अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं कर रहे हैं।
1: जी
0: तो अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में शामिल होना चाहिए ताकि एटलीस्ट इंसुलिन के जो मसाइल पैदा हो रहे
1: जी
0: हैं उसकी वजह से वो ना पैदा हो। तो आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और जो यंग हैं दोनों में क्या फर्क होता है दोनों के डायबिटीज में? वो आपने बताया भी है पहले, दोनों को खाने पीने में अपने मामूलात में किस तरह का फर्क करना चाहिए?
1: देखिए, जहां तक जो डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो शुगर वैल्यू से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से पड़ता है। जितना लंबा शुगर की बीमारी है, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब कोई पेशेंट सबसे पहले जब हमारे पास आता है, हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि आपको शुगर कितने सालों से है। जितना लंबा डायबिटीज, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। यंग लोगों में अगर डायबिटीज हो रहा है, तो इतना हमें पता है कि इसको हमें अभी कंट्रोल
0: चेक किया
1: करना
0: जा
1: बहुत
0: सकता है।
1: जरूरी है, ताकि जब ये पेशेंट बियॉन्ड 40s, बियॉन्ड 50 और बियॉन्ड 60s हमारे पास आए, तो इसके जो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। तो इसलिए अर्ली टारगेट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उसको कॉम्प्लिकेशंस से रोकें। जो एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अक्सर अमूमन ये देखा गया, वो ज्यादातर इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा शुगर का। तो ये लोग ज्यादातर हमारे पास आईज, नर्व्स, किडनी या हार्ट का डैमेज लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में और भी बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी हो चुकी होती है, तो उनमें हमें फिर उसके अकॉर्डिंग डायबिटीज से रिलेटेड हमें एडवाइस देनी पड़ती है। पहले तो जो कॉमन एडवाइस है वो सबके लिए सेम रहती है, कि आपको कैलोरीज को ध्यान देना है, कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करें आप, कैलोरीज को बढ़ने ना दें, और फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि एल्डरली में फिजिकल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू यंग थोड़ा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उस एज में फिर आपके घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, तो हम वो वाली फिजिकल एक्टिविटीज उनको एडवाइस नहीं कर सकते जो यंग को कर सकते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि आप जो रोजमर्रा आपकी जिंदगी है, उसी में आप फिजिकल एक्टिविटी ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि आपको, ज्यादातर आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है अलग से।
0: जी
1: तो जो मैं एडवाइस करता हूँ एज ए डॉक्टर, हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने रूटीन में वो चीजें लाएं जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मरीज ये बोलते हैं कि एक दिन आएगा जहां मैं जब मैं जिम जाऊंगा, एक दिन जब आएगा जब मैं वॉक करने जाऊंगा, बट वो दिन कभी नहीं आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी रूटीन में वो चीजें लाएं
0: जी
1: जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे कॉमन चीजें क्या कर सकते हैं हम, एक तो जैसे आप लिफ्ट अगर यूज करते हैं

0: तो लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी से हर कोई जाता है, तो आप पार्किंग थोड़ा दूर करें ताकि आप थोड़ा चल के अपने ऑफिस तक जाएं, और अगर हो सके तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। जब आप मेट्रो से जाते हैं तो आप चल के जाते हैं मेट्रो तक, रिक्शा का यूज कम से कम करें। तो अगर, और खासकर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग रहता है, तो उनको हमेशा बोलते हैं कि आप प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लें। जैसे आप एक घंटे बैठे हैं तो थोड़ा टहल के आइए आप। तो ये चीजें और इनकॉर्पोरेट कीजिए जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटी डेली एक रूटीन बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आधा पौना घंटा डेली ब्रिस्क वॉक करें, जो अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि एक इंसान को 30 to 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी 5 दिन हफ्ते में काफी होता है एक फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। तो अगर यही चीज हमने कर ली तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है अलग से कि आप एक दिन मैं जिम जाऊंगा, वो एक जो हमेशा माइंड में रहता है कि, तो आप जस्ट एक इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ही वो चीजें इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आप फॉलो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डायबिटीज लॉन्ग टर्म बीमारी है। ये एकदम ऐसे नहीं होगा कि आपने 10 दिन किया फिर 20 दिन नहीं किया, तो एक इसको रूटीन बनाना पड़ता है जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए आजकल हर एक के पास स्मार्ट वॉचेज होते हैं, तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ पेशेंट्स को कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स आप जरूर एक डे में करिए। 10,000 नहीं भी हो सकता है तो 5 to 10,000 के बीच में स्टेप्स आप जरूर करिए, उससे आपका डायबिटीज का इंसिडेंस कम होता है और इनफैक्ट शुगर भी कंट्रोल होता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं तो।
1: जी, अभी आपने बहुत उम्दा मशवरे दिए जो यकीनन बहुत सूदमंद हैं, हर कोई जानता है ये, और बात के उस पर अमल न कर पाए। जैसा कि आपने कहा, हम सोचते हैं हम अब ये करेंगे, अब ऐसे रहेंगे, अब जिम जाएंगे वगैरह वगैरह। समाज का एक तबका हमारे ऐसा भी है जो हमें सेहतमंद रखने के लिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे खुद अपना ख्याल नहीं रहता, और वो तबका है औरतों का।
0: जी,
1: वो सबकी सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है तो उनके पास वक्त नहीं होता। कई बार वो दूसरों के पीछे इतनी दीवानी रहती हैं, उनका जो मकसद होता है, जो टारगेट होता है उसके पीछे, बच्चों को स्कूल जाना है सुबह में, हस्बैंड को दफ्तर जाना है, फिर उनको बच्चों को ट्यूशन जाना है, वो उन्हीं में लगी रहती हैं। तो आमतौर से उनमें भी अब इस तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती। तो औरतों के लिए क्या कुछ अलग तरह से कोई हिदायतें हैं, या उनके सिम्टम्स हैं, या उनको कैसे इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जो सेहत है खास तौर से डायबिटीज के लिए बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डायबिटीज का इंसिडेंस मेल्स और फीमेल्स में अगर देखा जाए तो फीमेल्स में ज्यादा देखा जा रहा है। की वजह यह है कि जो मेल्स हैं चूंकि घरों के बाहर जाते हैं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज्यादा रहती है, और फीमेल्स चूंकि घर पे रहती हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो उसकी वजह से मोटापा फीमेल्स में ज्यादा देखा है, और उसी वजह से डायबिटीज का इंसिडेंस भी फीमेल्स में ज्यादा देखा जा रहा है। तो उसमें भी यही जरूरी है कि वो अपनी सेहत पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, एक वक्त अपने लिए जरूर निकालें जहां वो वॉक जरूर करें, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसे मैंने भी कहा कि जिम जाएं। आप घर पे भी, अगर आपका फ्लैट है या घर है, और गर्मी में चूंकि अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं। और अगर वॉक ना भी करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे योगा है, वो भी आपका हेल्प करता है वेट लॉस में, आपकी डायबिटीज को इंसिडेंस को कम करने में। तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस घर पे भी कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपको पार्क में ही जाना है, आपको धूप में जाना है। आप एक अपने कमरे में भी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जिससे आपका वेट कम होगा और आपका डायबिटीज का इंसिडेंस कम होगा। दूसरा खुराक है, खुराक पे सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने कैलोरीज को हमेशा देखिए, चेक कर लीजिए कि वैसी चीजें ना खाएं जिससे आपका वजन बढ़े, क्योंकि जब वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज का इंसिडेंस जरूर बढ़ता है, और एक यही एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है अल्टीमेटली जो आपका किडनी और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है।
1: जी, आपने बड़े अच्छे मशवरे दिए, कई लोगों को बहुत सूट करता है। मैं तो बहुत खुश हुआ कि मैं भी घर में टहल लेता हूँ कभी कभी, अपनी काहली को छुपाने के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ मैं टहल रहा हूँ। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, 4-5 दोस्त होते हैं, वो बातें करते हुए बहुत लंबा चक्कर लगा के लौटते हैं, लेकिन कई माहिरीन का ये कहना है कि ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, आपको ब्रिस्क वॉक करनी है कि आपको पसीना आए, आप चलने में आपकी सांस तेज हो, आपके लंग्स की कुव्वत पता चले।
0: देखिए
1: आप क्या कहना चाहेंगे?
0: एक तो होता है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है।
1: जी,
0: एक तो डेफिनेटली ब्रिस्क वॉक

0: सबसे हेल्पफुल रहता है कि ब्रिस्क वॉक करना है और आपको थकान हो, हल्का हल्का सांस फूले, पसीना आए, तो वो आइडियल होता है। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि मैं ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहा हूं और मैं सिर्फ बेड पे बैठूं, चेयर पे बैठूं, तो उससे बेहतर सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि आप टहले, क्योंकि चाहे वो 5000 स्टेप्स है उसका भी फायदा होता है, चाहे 10000 स्टेप्स है उसका भी, तो आप फिजिकली एक्टिव रहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है आजकल, इतना वो हमारी प्रेफरेंसेस बहुत बदल जाती हैं, जॉब, घर का काम, उसमें आपको टाइम अलग से अपने लिए, चाहे कुछ भी वॉक करें वो भी कर सकते हैं। मैं तो ये तो एडवाइस करता हूँ पेशेंट को, जैसे अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म के लिए किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हैं, स्टेशन पे हैं, तो चेयर पे मत बैठें, आप टहलिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको अलग से एक प्लान वर्क करके रहना, आप कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप टहल टहल के इंतजार करिए, तो एक बेसिक चीज है। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप फोन पे बात बैठ के ना करके आप वॉक करके बात करिए, क्योंकि आज इंसान एक एक घंटा फोन पे बिजी होता है, और ये बेस्ट टाइम होता है कि आप टहल टहल के बात करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वॉक कर रहे हैं।
1: बहुत उम्दा जी, क्या क्या क्या गुर आपने बता दिए। और ऐसे मौके कम आते हैं कि लोग बहुत संजीदगी से अपनी सेहत के बारे में सोचें और उन्हें ये भी पता हो कि उनकी सेहत के किस मसले का हल क्या है। आपने बहुत कम वक्त में, आपने बहुत मुख्तसर और थोड़े वक्त में बहुत काम की बातें बताई, और मेरी दुआ है कि हमारे जितने सामईन हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो आपके मशवरों पर अमल करें और सेहतमंद रहें, अपने फैमिली, अपने बच्चों को सेहतमंद रहने की सलाह दें, उन्हें तरीके बताएं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, नवाजिश
0: जी, शुक्रिया। बस लास्ट पे एक चीज बोलूंगा, जैसे हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शुगर से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना वेट मेंटेन रखें, डाइट पे फोकस करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर ये चीजों पे फोकस करेंगे तो शायद आपको डायबिटीज नहीं होगा और ना ही डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होंगी।
1: बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप डॉक्टर शेख यासिर खान से ये सैर हासिल गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे जनाब नौमान शौ। तो सामईन, हमें यकीन है कि हम सब के लिए ये गुफ्तगू और डॉक्टर साहब का मशवरा बहुत मुफीद साबित होगा। सामईन, हम ऐसे ही मेहमानों को आपकी बज्म में शामिल करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

सामीन अदावर्स, ये आकाशवाणी है। सपहर के 3:02 हुए हैं। आकाशवाणी की आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के नशियात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस के नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1000 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। सप्ताह के 3:05 हुआ जाते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। भारत ने जोग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निपटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। भारत में हाइड्रोजन पर मबनी पहली ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5 चीन की खिलाड़ी हान यू को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बेमकामी मैच खेला जाएगा। खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आलमी जोग्राफियाई सियासी तनाजात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसलाकुन कार्रवाई करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की 5वीं मीटिंग में इजहार ख्याल

0: क्रांति भी है, उससे पहले भी है, 1857 तक मुझे लगता है कि 1822 में पहला अखबार शुरू हुआ, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, आजादी के बाद भी अगर आप देखें हिंदुस्तान में और खासतौर से पिछले 25 वर्षों में, कहीं ना कहीं जहनों में इसको रखने की जरूरत है, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि जो बात 47 से पहले थी वो 47 के बाद क्यों नहीं रही। और आज ये आलम है कि सबसे पहली बात यह होती है कि एक्सेप्टेंस ही क्या है समाज में, सिस्टम आपकी सहाफत को कैसे देख रहा है। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर बहुत ज्यादा वैल्यू आज की डेट में मोटे तौर पर नहीं रही। कुछ स्टेट्स की बात अगर हम छोड़ दें, मगर नेशनल लेवल पर वो बात नहीं है जो आजादी से पहले थी।
1: मरूफ साहब, जैसा कि अभी खुर्शीद रब्बानी साहब ने बताया कि आजादी के बाद उर्दू के साथ कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी भी उर्दू पढ़ने में पढ़ाने में अपने बच्चों को काफी कम हो गई, तो अगर हम आजादी के बाद के कई मरहलों को देखें, भाई शुरुआत के अगर हम 15-20 साल की बात करें तो उस वक्त उर्दू के कई बड़े अखबार निकलते थे, अंजनियत था, प्रताप था, मिलाप था, उसके लंबे समय तक मोहन चरागी रहे, तो वो जो एक सिलसिला था। तो क्या हम ये माने कि भाई उर्दू के प्रति जो लोगों की दिलचस्पी उसमें कम हो गई, आजादी के बाद से उर्दू सहाफत पर एक तरह से जवाल आया, तो क्या वजह हो सकती है इसकी कि क्यों उर्दू पढ़ने में और अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई? उसी वजह से ये रहा कि भाई हम खुद देखते हैं कि हमने खुद बचपन में उर्दू भी पढ़ी और नर्सरी स्कूल में भी हम लोग पढ़े, लेकिन हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए घर अलग से उस्ताद नहीं है, तो ये क्या वजह इसकी हो सकती है?
2: घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, ये एहसास से कमतरी और कुछ भी नहीं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन कहेगा? सरसैयद खान हमेशा कहते थे कि जो कौम खुद को बदलना नहीं चाहती उसे कोई बदल नहीं सकता। ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है, पड़ोस ने अनाउंस की, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप अपनी जबान को गिरवी रख दें, बेच दें, बोलना छोड़ दें, लिखना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें या सुनना छोड़ दें। अगर हम इस बात को करें तो आज हमारे इस खूबसूरत मुल्क में बहुत सारी जुबानें हैं। कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले दो कोस पर बानी, तो आप देखें क्या हम कहेंगे कि बंगाली जो है वो बंगाली छोड़ दी उसने, या जो तमिल में बात करता है उसने तमिल छोड़ दी, या जो कन्नड़ है वो बात नहीं करता, या पंजाबी फख्र से अपनी पंजाबियत का इजहार नहीं करता। यह एहसास से कमतरी हमारे अपने अंदर है जिससे हमें बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। हम खुद देख लें, कॉन्वेंट के इस जमाने में हमने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर दिया, मशरूफ कर दिया कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लें उस पर बाजूर है। कितना खूबसूरत तरीके से हमारा बच्चा स्पीच बोल रहे अंग्रेजी में वो बहुत फख्र से बोलते, लेकिन कितनी अच्छी वो उर्दू बोल ले इसकी फिक्र हमारे अंदर से निकल गई। मैं ये कहूं कि आज के इस माशरे में अगर हम मुहासबा करें तो हमारे अपने घरों में उर्दू अखबार की रसाई नहीं है, हम खरीदते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है। हम बात करें तो जंगे आजादी की, जंगे आजादी में एक से एक कारनामे थे, वो अखबार नहीं थे, वो मुजाहिदे थे जिनके असरात आज है कि हम आजाद फजा में इस आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। वो टूल्स थे, वो टूल्स थे उस बरतानवी सरकार के खिलाफ, वो प्रोफेशन नहीं था, वो पेशेंस थे, जज्बात थे जिनको उकेरा जाता था। अक्सर वहां पर एक वैकेंसीज निकलती थी जिसमें लिखा जाता था कि एक एडिटर चाहिए, उसकी तनख्वाह क्या होगी कि एक कटोरा पानी और काले पानी की सजा। और आप यकीन मानिए कि कितने लोग उसमें बाकायदा ज्वाइन करते थे, एडिटोरियल लिखते थे और एडिटोरियल लिखते ही उनको काले पानी की सजाएं हो जाती थी। वो जज्बा इस हिंद की मिट्टी ने दिया था। आप देखिए गोपीचंद नारंग, आप आज भी देखिए, आज के जमाने में भी जितने भी मैं कहूं कि बुलंद मर्तबा जो उर्दू के तहफुज करने वाले लोग हैं उनमें हमारे दूसरे हजरात भी हैं, तो उनको यह एहसास कमतरी नहीं होता, हमें ही होता है। जरूरत यह है कि ठीक है, जैसे खुर्शीद रब्बानी साहब ने कहा और बड़ी अच्छी मिसालें दी, और यही गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की मिसाल है कि हम जब ईटीवी में थे, ईटीवी उर्दू शुरू करने वाले, तेलुगु चलाने वाले, काम करने वाले सारे उर्दू, हम आप, लेकिन ये शुरुआत हमारी तंजीमों ने क्यों नहीं की? आपके पास जराए हैं, आपके पास अशासे हैं, आपके पास माल भी है, आपके पास कुवत भी है, लेकिन वो सोच क्यों डेवलप नहीं होती? या तो हम उसको जानबूझ के नहीं करना चाहते, या सिर्फ हम बार बार रोना रोना चाहते हैं। बच्चे को दूध भी मां तभी दूध पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। तो पहले हमें अपने अंदर से उस एहसास से कमतरी को निकालना होगा, जिसे कहते हैं कि अभी एक शख्स निकला है, एक खुशबू सी आई है, लगता है शायद वो उर्दू बोलता है। तो वाकई उर्दू वो मीठी वो सीधी जबान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती है। जब तहजीब और तमद्दुन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है जब उर्दू वाला बोलता है तो कान खड़े होते हैं और धड़कनें तेज हो जाती है कि हाँ वाकई कोई बोल रहा है, चलो उसको सुना जाए। तो इस एहसास कमतरी के औरा से हमें बाहर निकलना होगा। सहाफत आज भी जिंदा है, लिखने वाले आप जैसे, हम जैसे, खुर्शीद रब्बानी जैसे, डॉक्टर फरियाज साहब जैसे।

0: और बहुत सारे हैं जो मौजूद हैं, तो हमें इस अंडर एस्टिमेट जो एरा है उससे निकल के बाहर आना है ताकि उर्दू को उस उरूज को वापस जिंदा किया जा सके।
1: रजा साहब ने बहुत ही अहम बातें बताई हैं और उनका जो जोर है कि भाई उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की दिलचस्पी खुद ही कम हो गई है। और तो उसमें मैंने देखा कि साहब जो बड़े इदारे चल रहे थे, जैसे एक बड़ा अखबार बॉम्बे से निकलता था, बाद में उसे उन्होंने बेच दिया। अब क्यों बेचा, क्या हुआ, वो भी बता रही हो।
0: यूसुफ मैं कथा कहला थी, यहाँ पर खुर्शीद साहब, फरियाद साहब, आपसे तवज्जो चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास पंजाबी अकेडमी है, वो हमसे कम तादाद में है, वो तो रोना ही रोते। तमिल है, बाकी मराठी, सब जाए जितनी भी लैंग्वेजेस को देख लें, क्या कभी उनका रोना सुना हमने कभी?
1: जी बिल्कुल।
0: क्या उनकी तंजीमों में कमी आई, उनके अखबारात या जो चैनल्स हैं उनमें कमी आई, उनके स्टैंडर्ड में कमी आई? नहीं। तो हमारे क्यों कमी आई?
1: नहीं, बहुत अहम बात उन्होंने उठाई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उर्दू सहाफत के सामने खासकर आजादी के बाद क्या चैलेंजेस रहे? जैसे एक तो हमारी समझ में आता कि जब हम छोटे थे हम देखते थे उर्दू अखबार निकलता था तो वहां पर वो हाथ से लिखा जाता था, कुछ टाइप मशीन शायद नहीं थी। लेकिन आज जो क्रांति हुई है इलेक्ट्रॉनिक आईटी में, उसमें फोनेटिक आ गया है, यूनिकोड आ गया है, यूनिकोड में तमाम भाषाएं हैं, उसमें उर्दू भी है। कि एक चीज मैं ये देख पा रहा हूं कि कुछ साल में, पिछले कुछ साल में, वो हालांकि एक अलग डिबेट है कि सर उर्दू को पर्शियन लिपि में लिखा जाए कि देवनागरी में लिखा जाए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो आप इस मुद्दे पे जरा रोशनी डालिए कि आजादी के बाद से उर्दू सहाफत को जिंदा रखने के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे और आज के दौर में वो चैलेंजेस बढ़े हैं या कम हुए हैं।
2: देखिए, जैसा कि अभी मालूक साहब ने पहले ही बताया कि जंगे आजादी मुकम्मल हो गई, आजादी हासिल हो गई, उस वक्त तक वो मिशन था, प्रोफेशन नहीं था, हर किसी का बस एक ही मकसद था कि हमारा मुल्क आजाद हो, हिंदुस्तान आजाद हो और हम सब खुली फजा में सांस ले सकें। ठीक है, 1947 में हमें वो अचीव हो गया, हमें हासिल हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद उर्दू सहाफत के सामने एक बड़ा मसला था कि अब हम आजाद तो हो गए, अब क्या करें। जाहिर सी बात है उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत बदली, नई नई चीजें आई। उर्दू सहाफत का जो एक अलमिया है कि मैं इस बात को मानता हूं कि हम उर्दू वाले शायद एहसास कम तरीके शिकार रहे, हमने जो वक्त के बदलते हालात थे उसको देर से समझा, हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा देर से अपनाया, हमने अपनाया लेकिन थोड़ा देर से, ताखीर की, शायद यही वजह है कि हम दूसरों से थोड़े पीछे रह गए। आज भी जैसे आप सब वाकिफ हैं कि आज तमाम उर्दू के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जितने बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में वो टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा आम फहम नहीं है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, उर्दू अखबारों के सामने एक जो बड़ा मसला था वो मसला ये था कि उर्दू सहाफत किसी वजह से वो रेवेन्यू हासिल नहीं कर पा रही थी, वो कमाई उर्दू सहाफत के सामने नहीं थी जो दिगर जमानों के सामने थी। था और ये वही वक्त था जब अंग्रेजी फरोग पा रही थी हिंदुस्तान में और कहीं न कहीं सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की थोड़ी फौकियत थी, पूरी दुनिया में अंग्रेजी फैल रही थी तो हिंदुस्तान में भी उसका असर दिख रहा था। शायद यही वजह है कि उस वक्त तक उर्दू थोड़ा एक पसमानदा जबान समझी जा रही थी और इसका असर हमारे अखबार या जो भी दूसरे बाद में जो टीवी चैनल्स वगैरह आए उसमें भी देखने को मिलता था कि जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो उतना अपडेटेड नहीं था जितना अंग्रेजी चैनल्स में या अखबारात में था। और बाद में हिंदी ने भी बहुत अच्छी तरक्की की और एक मुहिम मैं देखता हूं आजादी के 20-25 बरस बाद हिंदी को लेकर जो जज्बा पैदा हुआ और उसकी वजह यह रही कि और हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी हमें आजादी हासिल होने के बाद। इसकी वजह से अखबारात तो बहुत बढ़े, तादाद में काफी इजाफा हुआ लेकिन उर्दू अखबार थोड़ा पीछे रह गए। आपने जैसे जिक्र किया अभी कि वो हाथ से जो उनकी हुआ करते थे तब तक कंप्यूटर नहीं आया था और जब कंप्यूटर भी आ गया तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, शायद ये वजह रही, हमने इसको अपनाया थोड़ी देर से। दूसरी एक बात जो अहम दिखती है, मतलब मेरा अपना ये मानना है, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि हम सब उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम हिंदी से भी मोहब्बत करते हैं लेकिन उसी वक्त हमें अंग्रेजी सीखना भी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मेरा ताल्लुक खुद बनारस से है और पिछले 18-20 सालों से हैदराबाद में हूं, मैं खुद तेलुगु सीख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितनी ज्यादा जबानें सीखेंगे हम उतना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे सहाफत में। उर्दू वालों के साथ एक अलमिया ये रहा कि वो सिर्फ उर्दू तक महदूद रहना चाहते थे, शायद इसकी वजह से भी उर्दू महदूद होती चली जा रही है। अगर उर्दू वाले उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखें, दूसरी हिंदुस्तान की जो दीगर जबानें हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है,

0: वो भी सीखते हैं, बैरूनी मुल्क की जबान फ्रेंच, रशियन, इटालियन भी सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका मुस्तकबिल ज्यादा ताबनाक होगा, ज्यादा रोशन होगा, वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, उर्दू के साथ एक और अच्छी बात यह है कि उर्दू लश्करी जबान है, तमाम जबानों से मिलकर बनी हुई है, दूसरे जबानों के असरात इसमें मुरतब होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस बात पर कराहियत नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजी की हैं उसको हम कबूल करें, हिंदी के बहुत सारे जो जुमले हैं, अल्फाज हैं, जो वो है वो भी हम कबूल करें और उर्दू को हम आगे बढ़ाएं। आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उर्दू सहाफत में। आज देखिए, आज डिजिटल मीडिया पे उर्दू की अच्छी मौजूदगी है, लेकिन अभी भी कहीं जो मवाद है वो थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं है जितना अपडेटेड अंग्रेजी के कंटेंट मिले। और आज हमें लगता है कि हम बड़े फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हिंदी सहाफत भी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब अंग्रेजी से बहुत कमतर नहीं रहेगी, अंग्रेजी के बराबर है और कहीं कहीं मुझे लगता है उनसे ज्यादा अपडेटेड है। तो हमें लगता है उर्दू के साथ भी हमें कुछ इसी तरह का सलूक करना चाहिए। हम थोड़े रिसर्च बेस्ड काम नहीं हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एतबार से। उर्दू के जो सॉफ्टवेयर आए, जो उनका इस्तेमाल मीडिया में होता रहा, वो काफी ताखीर से आए। अगर हम बात करें कि टाइपिंग की भी बात करें, ठीक है आज गूगल वर्ड्स पे भी आप टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आज हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मैं कभी मना नहीं करता, बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उर्दू भी उनको पढ़ाइए। मैं तो कहता हूं कि हिन्दुस्तान की हर शख्स को हिन्दुस्तान का जो तीन जबानों का जो फॉर्मूला तो उसे अपनाना चाहिए कि अगर हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो एक साउथ की जबान भी पढ़ाएं, अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो एक जबान और सीखें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा उर्दू सहाफत को उसका जो मकसद है उसे हासिल करने में।
1: डॉक्टर फरिया साहब, आपने बहुत ही अहम बातें बताई और कई जो चैलेंजेस थे उनको, एक मुझे लगता है क्योंकि मैं भी सहाफत में करीब करीब 30 साल हो गए हैं, मैंने जो बात नोट की है और बाकी हमारे साथी खुर्शीद रब्बानी साहब, मारूफ रजा साहब, उस पर रोशनी डालेंगे, मुझे लगता है कंटेंट की जो आपने बात कही, उर्दू में अक्सर ये देखा गया है कि ओरिजिनल कंटेंट की कमी उर्दू सहाफत में शुरू से रही है। उन पर तो उर्दू में बड़ा ओरिजिनल कंटेंट मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीजें हैं, मेन स्ट्रीम है, वहां ओरिजिनल कंटेंट नहीं आता, वो अंग्रेजी से शुरू होता है, अंग्रेजी से ट्रांसलेट होकर हिंदी में भी आता है, फिर वो उर्दू में भी आता है। आज भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ओरिजिनली तो अंग्रेजी में लिखते हैं, बाद में उसका तर्जुमा वो। रब्बानी साहब, आप चूंकि अखबार में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है और डिजिटल में भी आपने काम किया है, तो इस मुद्दे पर आप किस तरह से सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उर्दू जर्नलिज्म में ओरिजिनल कंटेंट की कमी रही है और डिजिटल के दौर में क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर गौर फिक्र करना बहुत जरूरी है। जैसे शुरू में बात हुई कि मिशन से कब प्रोफेशन में बदल गई कोई एक चीज, और शायद ये बड़ी वजह है कि फिर उसके साथ चुकी हुई एक चीज के लिए रेवेन्यू की जरूरत है, ये भी सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि तहकीकी जो खबरें हैं वो उर्दू सहाफत में कम मिलती हैं। अक्सर जब हम उर्दूदा तबके के बीच बैठते हैं, खासतौर से उर्दू सहाफियों के बीच बैठते हैं, तो वहां पर इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जिक्र होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेस नोट आ गया तो उसमें उस प्रेस नोट को एज इट इज पब्लिश कर देंगे, अगर किसी की मौत की भी खबर आ गई तो ये तहकीक किए या एक फोन घुमाए बगैर ही उसको छाप दिया जाएगा, भले ही कोई आपका टेस्ट ले रहा हो। तो ये एक बड़ा मसला है। ये भी सच्चाई है कि आप कम से कम, मैं 15 से 20 साल का ये एग्जाम्पल दे सकता हूं कि आप अखबारात उर्दू के उठा करके देख लीजिए, फिर अंग्रेजी और हिंदी के अखबार उठा करके देख लीजिए कि कितनी उर्दू की खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें, ओरिजिनल कंटेंट जो उर्दू का था वो अंग्रेजी या हिंदी ने लिया है। फिर ये देखिए कि अंग्रेजी का और हिंदी का कितना कंटेंट उर्दू वालों ने लिया है, तो इसी से तय हो जाएगा कि उर्दू सहाफियों ने, उसमें मैं भी शामिल हूं, मतलब अगर हम आईना देख रहे हैं और उसमें कुछ हमें हमारी कमियां नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एहसास कमतरी नहीं है बल्कि अपनी कमियों को, खामियों को देख करके उसे दुरुस्त करने का एक बेहतर वक्त हो सकता है। मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको दूंगा कि कैसे हम तकनीक अपनाने में उर्दू का तबका थोड़ा सा पीछे रहता है। देखिए, आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने छपाई की मशीन को अपनाने में कितना वक्त लगा दिया, बाकी चीजों को हो सकता है तकनीकी चीजें हों जो है वो आपके साथ तकनीक उतनी ज्यादा मेल जोड़ना खाती हो, तो उसमें भी हम पीछे रहे हैं। तो मैं दो तीन एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, न्यूज 18 उर्दू 15 अगस्त 2001 में स्टार्ट हुआ, उसका यूट्यूब चैनल यानी डिजिटल पर वो कब आया, 2010 में, तकरीबन 10 साल बाद। ठीक, क्या वजह है? जी सलाम, 2010 में शुरू हुआ और 2017 में वो यूट्यूब पर आया, फेसबुक पर भी आया होगा, ट्विटर पे अभी है, मतलब पिछले 5-7 साल से एक्स जिसको बना दिया गया है। ठीक है, आलमी सहारा 2010 में आया और 2010 के बाद यूट्यूब पे 13 आया, 3-4 साल के बाद आ गया। डीडी उर्दू 2006 में शुरू हुआ और 2013 में वो यूट्यूब पर आया। तो अब यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि टेलीविजन जो है वो सिर्फ अब टेलीविजन नहीं रह गया, बल्कि उसके बहुत सारी शक्ल सूरत होगी, बहुत सारे रास्ते होंगे देखने के। FB भी है, उसमें X भी है।

0: उसमें यूट्यूब भी है, उसमें जो है इंस्टा भी है, उसमें दीगर और बहुत सारे जराए हैं, ओटीटीज भी हैं। तो वहां वक्त के साथ बदलाव क्यों नहीं आया? तो फिर अगेन बात यही होगी, क्या सोचो फिक्र की कमी है, क्या विजन की कमी है, या फिर वसाइल का इशू है? और वसाइल का इशू अगेन रेवेन्यू से कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारे बड़े घराने हैं, मीडिया घराने, जिन्होंने उर्दू चैनल शुरू किए और उर्दू चैनल के साथ अच्छा सलूक किया, ये भी सच्चाई है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां रही हैं, तो उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये खुद उर्दू साहबियों की जिम्मेदारी है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि हम कैसे कम से कम वसाइल में, कम से कम सुख सुविधाओं में हम बेहतर करने की कोशिश करें। सच्चाई है ये कि बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर उन परेशानियों से निकलने के रास्ते भी हमें कहीं ना कहीं तलाश करने होंगे और आगे बढ़ने के लिए भी जद्दोजहद हमें ही करनी होगी।
1: मालूम फैजा साहब, जो खुर्शीद रब्बानी साहब ने एक बुनियादी सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि हम कंटेंट के मामले में पिछड़े रहे हैं, मुकाबला नहीं कर पाते हैं अंग्रेजी का या हिंदी वालों का, तो इसके पीछे क्या वजह देते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं और हमारा पेशा भी पढ़ने लिखने का है। जब हम पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो जाहिर सी बात है तस्दीक का, तहकीक का मादा अपने आप आ जाएगा और चीजें आती है। इनोवेशन घर बैठे नहीं आते, आपको उस पर तदब्बुर करना पड़ता है, सोच लगानी पड़ती है, तब जाके आता है। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी उर्दू जो साफियों की जो खबरें हैं वो पीक पे रही हैं, उन पर खबरें बनी हैं, सुर्खियां बनी हैं, तब्दीलियां हुई, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। दिक्कत ये कि हम दो चीजें ले रहे हैं, कंटेंट और टेक्नोलॉजी। कंटेंट पे पैसा खर्च नहीं होता, कंटेंट आप भी बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, जो एक रिक्शा चलाने वाला उर्दू दा है वो भी अच्छा लिख सकता है, वो आपकी कलम कितनी अच्छी है, सोच कितनी अच्छी आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात है, पहले बड़ी महंगी थी, अब इतनी आसान हो गई, आप मोबाइल लीजिए और कुछ नहीं कर लीजिए। खुर्शीद रब्बानी साहब ने इसका जिक्र किया, सोशल मीडिया। तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको 50-100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, अच्छा कंटेंट है, अच्छी शक्ल और सूरत है, आप कर दिए। अगर आप 30 सेकंड में भी अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, यू कैन डू ब्लंडर, और नहीं तो आप यू कैन डू ब्लंडर। तो इसलिए लैंग्वेज पहली बात तो मजहब के दायरे में कैद नहीं है, ये जुबान है, ये जुबान हिन्दुस्तान की जुबान है। तो इसमें जिस तरीके से सरकारें आगे आ रही हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन दिए हैं उर्दू को लेकर के, लगातार गुज़श्ता 10 सालों की बात करूं तो वाकई वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि उर्दू वाकई अपने उरूज पर होगी और फिर दोबारा से आफ्ताब की तरह रोशन होगी।
1: मनोहर रजा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि और इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म की कि उर्दू एक बार फिर उर्दू पर होगी और उर्दू जर्नलिज्म का यानी उर्दू सहाफत का फिर एक बार जलवा कायम होगा, और जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो इसी के साथ हम इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्शीद रब्बानी साहब आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर फरियाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, मौजू था उर्दू सहाफत में बदलता चेहरा, रिवायत से डिजिटल तक, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब यूसुफ अंसारी।

अब आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे नजर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए चंद फिल्मी नगमे, आगाज जब जब फूल खिले फिल्म के नगमे से, आवाज मोहम्मद रफी और नंदा की। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का दो गाना सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। नगमा निगार से जयपुरी मौसीकी शंकर जयकिशन।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश आए दिन बाहर के फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और ये प्रोग्राम के आखिर में सुनिए झुक गया आसमान फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

किया कि जदीद बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्त तहजीब की एक अहम पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले किसी भी शहरी को ये महसूस न हो कि वो असलधारी से अलग है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचा तैयार करना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जनाब सिंह ने सनतों, तालीमी इदारों, इंजीनियरों और एडमिनिस्ट्रेटर्स पर जोर दिया कि वो एक साथ मिलकर इको निजाम तैयार करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर कल मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी और हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो रेल को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील करती है। इस अमल से सिर्फ भाप निकलती है, जिससे कार्बन का बिल्कुल भी इखराज नहीं होता। भारत में ही डिजाइन करता और तैयार की गई इस रेलगाड़ी में मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेलवे इंजीनियरिंग की जदीद कारी में मुल्क की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है। मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब मुंतकली के सिलसिले में एक अहम संगी मील है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे, जो अब तक तैयार की गई हाइड्रोजन पर मबनी मुसाफिर रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। इस रेलगाड़ी में 3,200 हॉर्स पावर प्रोपल्शन सिस्टम है, जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये रेलगाड़ी चीन सोनीपत सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जेर जमीन ईंधन पर मबनी थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली पर इन्हिसार भी कम होगा, जिससे पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भारत की मुंतकली में मदद फराहम होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका जैसे उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो माहौल के लिए साजगार रेल खिदमात के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के इम्कानात तलाश करते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बेल्जियम ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने से इत्तेफाक किया है। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की समत मुंतकली, इख्तिरा, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, दिफा, सिक्योरिटी, इलाकाई और आलमी उमूर के साथ साथ अवाम से अवाम के रवाबित शामिल हैं। कल ब्रसल्स में भारत बेल्जियम कलीदी मुजाकरात की पहली मीटिंग हुई, जो एक ज्यादा मुनज्जम और जामे साझेदारी के जरिए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की समत एक अहम कदम है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना अमरीका के अटलांटा स्टेडियम में इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब इतवार की रात को फाइनल मैच में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ओलंपिक में 2 तमगा जीत चुकी भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी चीन की हान युई को सीधे सेटों में हराया और वो जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पीवी सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को महज 35 मिनट में 21-16, 21-14 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ सिंधु ने हान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 1-8 किया। पीवी सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा।
भारत को इस सीरीज में एक सिफर की सबकत हासिल।

0: है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मुल्क के नए वजीर आजम के तौर पर तवानाई से मुतालिक सरकारी कंपनी नेफ्टोगैस के सरबरा सरगेई कोरेट्सकी के नाम की हिमायत की है। सदर जेलेंस्की ने इस हफ्ते वजीर आजम यूलिया को उनके ओहदे से हटा दिया था। उनकी मुद्दत कार 1 साल रही। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने मंगल के रोज उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5, चीन के खिलाड़ी हान यूई को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पसीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मजलिस की नशरियात के साथ इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी एक पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे ने और साड़ी दूजी सभा शुरू होती है। सभा का आगाज कर रहे हैं शेरी जबान सराइकी दे प्रोग्राम जोक माहिद नाल।

0: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम राम। तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के, और अपने इस कार्यक्रम में आज हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं भाई बहुत सारी जानकारी, और भाई उन्हें साझा भी करेंगे। लेकिन हमारे ग्राम संसार कार्यक्रम में हमारे कुछ श्रोताओं के SMS रह गए थे, जिनमें हमें यह SMS जो है नीलम चौधरी के लिए मिला था, रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले थे अखिलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया, सूरतगढ़ राजस्थान से भेजने वाले थे भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से SMS मिला था विक्रम कटवासा और उनके पूरे परिवार का। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश भेज रहे सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। गांव चौधरीवास हरियाणा से फरमाइश भेज रहे थे मांगेराम सतौड़ इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था कनेरा मोहल्ला पटियाला से भेजने वाले थे मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था पाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजने वाले थे अनिल मोहन उनका पूरा परिवार। पटेल नगर मेलोड से भी हमारे पास में SMS आया था, भेजने वाले थे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और इनका पूरा परिवार। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी और सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी का भी हमें SMS मिला था। और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से भेजने वाले थे निसार सलमानी और उनका पूरा परिवार। और यह समय समय मिला था गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से भेजने वाले थे कंची शर्मा सतपाल शर्मा मास्टर बनी सिंह देवेंद्र सिंह सर्विस गिरी महाराज कुमारी तनु और पवन शर्मा का।
1: अतुल भाई, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्रोता हैं हमें SMS भेजते हैं तो सबको हम शामिल कर सकें। और देखिए, हमारा आज का जो कृषि जगत कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आज हम एक रेडियो रिपोर्ट अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाएंगे, जो कि है ICAR का 98वां स्थापना दिवस। और इसमें स्वर जो है वो कमल किशोर का है, सहयोग दिनेश कुमार और संयोजक जो हैं वो हैं शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
0: तो लेते हैं ये जानकारी।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना 98वां स्थापना दिवस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर NASC में उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ और किसान मौजूद रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस समारोह में सबसे पहले ICAR में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा,
3: नमस्कार। आज जब हम यहाँ पर ICAR के 98वें स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए हैं तो इस गौरवशाली अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों, वैज्ञानिक साथियों और देश के अन्नदाता किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि यह उस यात्रा का उत्सव है जिसमें भूख की समस्या से जूझते भारत को अन्न निर्यातक भारत बनाने का एक

0: लंबी कहानी जो है बनी हुई है और यह उत्सव उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। हरित क्रांति के जनकों से लेकर आज की प्रयोगशालाओं तक आईसीएआर के हर वैज्ञानिक ने इस देश की मिट्टी में सपनों की फसल बोई है। 2029 में आईसीएआर अपना जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगा। 100 साल की तपस्या और यह अवसर एक बड़े राष्ट्रीय संकल्प से भी हमें जोड़ता है जो कि है विकसित भारत 2047। और जब देश 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब एक आशा रखी गई है कि कृषि और प्राथमिक क्षेत्र $6 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में देगा। इस आंकड़े को अगर हमें पाना है तो उसके लिए जो भारत का सपना है कि किसान को समृद्ध होना होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, कृषि सिर्फ जीविका नहीं बल्कि समृद्धि का इंजन बनेगी। आईसीआर का शताब्दी वर्ष और भारत विकसित भारत का लक्ष्य दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। जब हमारा संस्थान आत्मनिर्भर होगा तभी हमारा किसान समृद्ध होगा और जब किसान समृद्ध होगा तभी 2047 का $6 ट्रिलियन का स्वप्न साकार होगा।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट ने परिषद की 98 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि
2: 97 साल की जर्नी काफी अद्भुत है। यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं जिसमें कृषि का बहुत बड़ा अहम योगदान, $6 ट्रिलियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें जाने के लिए पहले हमने चिंतन मनन करना होगा कि हमारी समस्याएं क्या है, हमारे चैलेंजेज क्या है, और उन्हीं चैलेंजेज को ध्यान में रखते हुए हमारा सारा अनुसंधान का कार्य होना चाहिए और उसके लिए डिमांड ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन, दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन करें, ग्रोथ हो हमारी लेकिन सस्टेनेबल हो, और एक पॉलिसी एंड मार्केट का जो इश्यू है उसको हम एड्रेस करें। यदि इन सब चीजों को लेकर चलेंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश ने कितनी प्रगति की है, साइंस ड्रिवन इंक्रीमेंटल रेजिलियंस, और मैं सेक्टर वाइज बताना चाहता हूं, यदि क्रॉप सेक्टर को देखते हैं तो 2001-02 से 2014-15 जहां पे 40 मिलियन टन का उन 12 साल में इजाफा हुआ था जो 19% है, 14-15 से लेके 25-26 मतलब अब तक का वो 49% जिसका बेस भी हाई था वो 124 मिलियन टन है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा पिछले 12 साल में अचीव किया है देश ने, और ये इसमें विज्ञान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पिछले एक साल की हम बात करते हैं तो 19 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है जिसकी वैल्यू 60,000 करोड़ है। दूसरा हॉर्टिकल्चर का सेक्टर, पिछले 12 साल में लगभग 97 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ा है और पिछले एक साल की बात करें तो 7 मिलियन टन जिसका वैल्यू 20,000 करोड़ है। तीसरा हम डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर की हम बात करें तो चाहे मिल्क का प्रोडक्शन हो, मीट का प्रोडक्शन हो, एग का प्रोडक्शन हो, काफी तेजी से बढ़ा है और पिछले एक साल का यदि इकोनॉमिक टर्म में कंट्रीब्यूशन देखें इस सेक्टर का तो 50,000 करोड़ है। फिशरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, 2014 से यदि हम कंपेयर करें तो डबल से भी ज्यादा हो गया, और यदि पिछले एक साल का प्रोडक्शन इंक्रीज की इकोनॉमिक वैल्यू देखें तो 40,000 करोड़ है। तो इन 4 सेक्टर का सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज का जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं देश में तो 1,70,000 करोड़ है, बाकी कंट्रीब्यूशन अलग है। पिछले एक साल में हम यदि क्रॉप सेक्टर में बात करें तो 44 क्रॉप की 386 वेराइटीज ये हमने डेवलप की है जिसमें लगभग 94% क्लाइमेट रेजिलियंट है, 29 वेराइटीज हमारी बायोफोर्टिफाइड है, नया साइंस करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए 111 जेनेटिक स्टॉक रजिस्टर किए हैं, जितना ब्रीडर सीड की डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा ब्रीडर सीड प्रोडक्शन किया है हमने। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो 117 वेराइटीज 57 हॉर्टिकल्चर क्रॉप की हमने रिलीज की है, उसका प्लांटिंग मटेरियल, उसका सीड, सारी चीजों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। यदि एनिमल सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, एनिमल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है और पशुपालन मंत्रालय के साथ में आईसीआर का एनिमल साइंस डिवीजन साथ मिलकर ये काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को किसान तक ले जाना, एक्सटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 1 जून से 30 जून जो खेत बचाओ अभियान चला उस अभियान के दौरान 1657 टीम 728 जिलों में 1,31,000 से ज्यादा कार्यक्रम करके 90,000 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके और 5 करोड़ किसानों तक सीधा पहुंचना मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 38 नई फसल किस्में और बागवानी क्षेत्र की 5 नई किस्में जारी की गयी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा,
3: मेरा अपना सौभाग्य कि देश की प्रतिष्ठित संस्था आईसीएआर के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री भारत विकसित राष्ट्र जो 2047 का संकल्प लिया है वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य माध्यमों के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता है। और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की आय दुगना करने का संकल्प लिया है वो पुरानी परंपरागत तरीके से यदि खेती से आय दुगनी हो रही होती तो ये अरबपतियों का देश होता, हम वर्षों से खेती ही कर रहे हैं। खेती के ऊपर संकट कितने होते हैं, हम उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुगर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके लागत भी कम कर सकते हैं और इसके पीछे अनुसंधान का बड़ा महत्व है।
1: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने कृषि विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा,
4: सबसे पहले मैं 98 स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से कृषि विभाग के सभी वैज्ञानिक भाइयों को, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को लाख लाख बधाई देता हूं। दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूं जो हताश हो गए थे वो कर्मचारी भाई जिसको आज नियुक्ति पत्र मिलने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि अंतिम समय में उन्होंने इस पर ध्यान दिया, उसको निराश से की तरफ से खुशहाली का पत्र दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कृषि विभाग में और यहाँ के वैज्ञानिकों ने और किसानों ने जो मिलके उन्नति और प्रगति का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अन्न के बिना भी लोग सहते थे, ये मुसीबत था, लेकिन मैं यह कह सकता हूं इसके लिए भारत के 145 करोड़ लोगों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लाख बधाई देना। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे दिल में न सही तेरे दिल में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 1947 में, इसको आगे बढ़कर इनके हिम्मत को आगे बढ़ाने का काम करे।
1: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण और संतुलित पोषण प्रबंधन के महत्व पर अपने उद्बोधन में कहा,
5: आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 98वां ये स्थापना दिवस है, परंतु आज के दिन मैं हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं जिनकी ताकत के पीछे आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हो गए हैं, परंतु अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। आज जलवायु परिवर्तन की बात हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें सोइल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोइल हेल्थ कार्ड चालू किया था, परंतु आज भी हमारे किसान भाई और बहन सोइल हेल्थ कार्ड पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज 98 इस स्थापना दिवस पर हम सबको प्रण करना है कि हम सोइल हेल्थ कार्ड के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। अभी खेत बचाओ अभियान चल रहा है वही पूरे देश भर में, क्योंकि किसान की कृषि और पशुधन ये दो ही उसके आधार हैं। इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि पहले जय जवान का नारा लगा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पहले जय जवान का, फिर जय किसान का नारा लगा, फिर अटल जी ने जय विज्ञान का नारा लगाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये चार हमारे स्तंभ है, यदि ये मजबूत होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और ये हमारा देश विकसित राष्ट्र भी बनेगा।
1: केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के योगदान की सराहना करते हुए कहा,
2: आज हमारा देश दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, मछली के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये टेक्नोलॉजी का और जो आपकी भागीदारी है उसका ये परिणाम है। ICAR और NFDB हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो दोनों मिलके कई काम कर रहे हैं और उन कामों में साइंटिफिक एक्वाकल्चर, फिश हेल्थ मैनेजमेंट, सीवीड प्रोडक्शन, मैरी कल्चर, ऑर्नामेंटल फिश, ये सारे चीज कर रहे हैं। अब स्किल का डेवलपमेंट किया जाना, लॉजिस्टिक में सुधार के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट का एक पॉलिसी बना रहे हैं, फिशरी डिपार्टमेंट पूरे एक्सपोर्ट आधारित PMMSY 2 का जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है वो पूरा एक्सपोर्ट आधारित है। हमारा आज एक्सपोर्ट 62,000 करोड़ रुपए का, 2024-25 में हमने 62,408 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। पशुपालन के क्षेत्र में आज अपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आपने वैक्सीन लॉन्च किया यहां से। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, अब अगर हम लोग इसका उपयोग करेंगे तो हम काफी करेंगे। आपके 18 पशु केंद्र हैं, आपके विश्वविद्यालय हैं, उसके करीब करीब 84 पशु चिकित्सा कॉलेज है उसके अधीन, इन सबों को इसमें लगाने की जरूरत है। इनको टेक्निकल डाइवर्सिफिकेशन, शिक्षा से पशु स्वास्थ्य के नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो इसलिए इसको ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, इसको एडुकेट करने के लिए जरूरत है। और इसलिए कि आज का इस MOU और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पशुपालन, मत्स्य पालन और ICAR मिलके इस देश की उन्नति में, इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान करने का अगर समन्वय के साथ काम किया जाए तो इस आर्थिक प्रगति में हम देश को उन्नत बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
1: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विभिन्न संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण MOU समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर 150 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले 98 वर्षों में भारतीय कृषि को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई, इस पर अपने विचार रखते हुए कहा,
6: 98 वर्षों में ICAR के वो वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय कृषि को असाधारण ऊंचाई दी है। सारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, उनका अभिनंदन। आज 98 स्थापना दिवस पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे किसानों की मेहनत, किसान अगर कृषि की आत्मा है तो वैज्ञानिक मस्तिष्क है, इनके प्रयत्नों के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल देश में 376 मिलियन टन खाद्यान्न और 377 मिलियन टन बागवानी और 19 मिलियन टन मछली में भी उत्पादन दर्ज किया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस एक साल में ICAR ने जो काम किया है, 44 फसलों की 386 नई किस्में विकसित की है, और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि इनमें से 94% जलवायु अनुकूल है, क्लाइमेट रिजिलेंट है। किसान के साथ हमारे वैज्ञानिक अब खेत में भी जाते हैं, पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस साल खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत इस साल हमारे 1657 वैज्ञानिक टीमों ने 728 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर लगभग 1 करोड़ किसानों से संवाद किया, जिन जिलों में अलनीनो का संभावित प्रभाव है भावी किसानों से चर्चा की। आज हमने 43 उन्नत किस्में, 17 नई टेक्नोलॉजी और उत्पाद और 14 अलग अलग तरह के प्रकाशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि निर्यात गुणवत्ता वाले आम की तकनीकी, सुअरों के लिए स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का टीका जो अभी तक हमारे पास नहीं था, आज वो भी समर्पित किया है राष्ट्र को। भारत का डिजिटल सॉयल मानचित्र मैप और छोटे किसानों के लिए किफायती कपास हार्वेस्टर भी शामिल है। आज कई MOUs भी साइन हुए हैं ताकि जो नई तकनीकियां हैं उनका कमर्शलाइजेशन होकर जल्दी किसानों तक पहुंच सके। और 100वें स्थापना वर्ष को ध्यान में रखते हुए 2 साल बाद है मिशन ICR 100 के अंतर्गत हम 100 राष्ट्रीय संकल्पों पर काम करेंगे जो हम तय करेंगे। 100 यंग साइंटिस्ट ग्रांट चैलेंज भी हम प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारे युवा वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जीन एडिटिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम 100 जलवायु स्मार्ट विलेज भी विकसित करेंगे जो क्लाइमेट रिजिलिएंट, टिकाऊ और आधुनिक कृषि के आदर्श मॉडल बनेंगे। हम ICR के 100वें स्थापना वर्ष तक 10 करोड़ किसानों तक हमारी वैज्ञानिक तकनीकें पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है विकसित भारत 2047, उसके लिए जो लक्ष्य तय किए हैं कृषि उत्पादन 2.1 बिलियन टन, बागवानी हॉर्टिकल्चर 777.7 मिलियन टन, दूध 628 मिलियन टन और मछली उत्पादन 40 मिलियन टन तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेके वर्ष बार बांटेंगे कि कितना हमको इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक साल में काम करना है, उसका हम प्रयत्न करेंगे। मैं ICR के 98 स्थापना दिवस पर फिर एक बार अपने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद।
1: इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यही संपन्न होती है। स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, प्रस्तुति सहयोग रहा दिनेश कुमार का, संयोजन था शिवनंदन लाल का और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया तुषार पाराशर ने।
7: तो पायल बहन, अभी हमारे किसान भाई जानकारी ले रहे थे ICAR के 98वां जो स्थापना दिवस आज मनाया गया है उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही थी रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें स्वर था कमल किशोर का और सहयोग था दिनेश कुमार का और इसके संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर। और निश्चित रूप से देखिए हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है पायल बहन, उन्होंने अद्भुत योगदान दिया है हमारी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो उन्नत किस्में तैयार की हो या अभियंत्रिकी के क्षेत्र में जो है हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष योगदान रहा हो।
8: आपने सही कहा अतुल भाई, क्योंकि देखिए नए नए जो आविष्कार हैं, नए नए तकनीकी आविष्कार हैं और किस्मों से संबंधित जो बातें हैं और भाई पशु हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो है वो ICAR जो है कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अच्छे अच्छे अनुसंधान कर रही है, कार्य कर रही है। और भाई सरकार द्वारा भी कुछ ऐसी ही बढ़िया योजनाएं जो लेके आई जाती हैं हमारे किसानों के लिए, जो उस जिससे वो लोग फायदा उठा सकते हैं, ऐसी ही एक योजना है अतुल भाई जिसे कहते हैं गोवर्धन योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत में पशुओं के गोबर और ठोस जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना है। इससे गांवों में स्वच्छता बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित होता है और किसानों का तथा उद्यमियों के लिए आय व रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।
7: बिल्कुल, देखिए इस योजना के तहत जो आपने बताया है कि पशुओं के गोबर, गोमूत्र और खेतों के जो जैविक कचरे का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर लेते हैं पायल बहन, जिससे जो है जो मिट्टी जो खाद बनती है उससे जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो सुधरती है और जो उसकी मिट्टी की जो जलधारण क्षमता जो है वो भी बढ़ती है और फसल की जो उपज होती है उसमें भी जो है सुधार होता है।
8: बिल्कुल, और देखिए इसके लाभ बहुत सारे हैं अतुल भाई, जैसे कि भाई आप कचरे से, वेस्ट से यानी कि कचरे से आप धन बना सकते हैं, गांव स्वच्छ हो सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, ग्रामीण लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं, इस योजना से भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं।
7: देखिए किसानों को गाय के गोबर से ये केचुआ खाद भी हमारे जो किसान भाई वो बना सकते हैं और बहुत सी ऐसे खाद तैयार हमारे किसान भाई कर सकते हैं जो अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। और ये तो रही जानकारी भाई गोवर्धन योजना के बारे में, और एक बात और कहना चाहते हैं कि पायल बहन के बिल्कुल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और भाई अपने पशुओं की विशेष देखभाल करें क्योंकि इसी मौसम में जो है पशुओं का जो है मुंहपक और खुरपका का जो रोग है वो भाई आ जाता है। तो कोशिश करें कि अपने पशुओं का भाई चिकित्सक से जो है टीकाकरण अवश्य कराएं और समय पर ये जानकारी भी लेते रहें कि आपके पशु को कोई अन्य कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है।
8: बिल्कुल, आप इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है, पशु स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाकर जो है बात कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
7: और अब समय भी हो चला है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का, तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
8: राम राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम कृषि जगत का, और अब से कुछ ही देर यानी ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त तलत। गजल हो या कव्वाली हो, ये एक रूहानी कैफियत बयान करने वाली दोनों विधाएं हैं। गजल में महबूब है तो कव्वाली में वो महबूब जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो एक शक्ति जिसे हम सब मानते हैं। और गजल वो शक्ति जो हमें मोहब्बत करने का एहसास दिलाती है, और मोहब्बत जब अपने आखिरी पड़ाव पर आती है तो वो मोहब्बत बन जाती है भक्ति। तो यही कुछ मिला जुला अंदाज है गजल और कव्वाली का। तो आपके लिए ये पहली कव्वाली फिल्म मकबूल से।

भी एहसास हो जाए कि वो आपके रूबरू है, और लेकिन ये गुमान फिर भी रहे कि शायद वो दूर है, तो ऐसी सूरत में खत जो है वो बहुत कीमती शय होती है। खत वो जरिया होता है जब दिल से दिल की बात एक कागज पर उतार दी जाती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपने दिल की बात लिखते हैं और अपने महबूब तक पहुंचा दें। लेकिन जो मजा वो पुरानी रिवायतों में है वो नई में नहीं।

खत का जवाब आए और उस जवाब में वादा हो अगली मुलाकात का, और जब वो वादा वफा ना हो तब दिल और तेजी से धड़कता है और दिमाग जो है वो और मायूस हो जाता है। तो ये अब इस कार्यक्रम की आखिरी गजल मैं कहूंगी, और इस गजल को गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद। और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रखरखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। रेलगाड़ियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका लक्ष्य युवाओं को अपने विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए आवश्यक हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है।
2: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में भी लागू की जाएंगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान भी करेगी। इसके अलावा इन इंक्यूबेशन सेंटरों के संचालन, मेंटरिंग, नेटवर्किंग, नवाचार गतिविधियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए हर वर्ष संचालन संबंधी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नीति के तहत इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों के माइलस्टोन आधारित वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने साल भर चलने वाली हीरक जयंती कार्यक्रमों के कैलेंडर और कॉलेज के डिजिटल आर्काइव्स के QR कोड का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय पिछले 6 दशकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का विकास कर रहा है।
3: कॉलेज में अपनी अपनी फील्ड में इस भावना को जरूर इस दिल के एक कोने में रखना होगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं। आज राष्ट्र देवो भव का मतलब जिसने समझ लिया वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है और इस काम के

0: मिल जाते हैं, एक एक भारतीय जुड़ जाता है। तो जब एक व्यक्ति देश के प्रधान मोदी जी ये करते हैं तो हम 140 करोड़ भारतीयों को उस पे गर्व होता है।
1: श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नए परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास विकसित करने की योजना बनाई गई है। डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कॉलेज की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग में 101वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 39वां स्थान प्राप्त किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल का विस्तार और नवीनीकरण किया है। रीडिंग हॉल में शोधार्थियों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 250 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 150 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल शामिल है। इन सुविधाओं में आरामदायक फर्नीचर, बेहतर लाइटिंग और वेंटिलेशन, आसान एक्सेस और पढ़ाई के लिए आरामदायक माहौल जैसी चीजें शामिल भी की गई हैं। जेएमआई के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर साइमा सईद ने कहा कि यह कदम छात्रों के लिए आधुनिक, समावेशी और छात्र अनुकूल लर्निंग का माहौल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के सातवें चरण के तहत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण करेगी। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके अपने घरों के नजदीक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जहां बीमारियों से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर विशेष बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली का लोक निर्माण विभाग नो योर रोड परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इस पहल के अंतर्गत राजधानी की सभी सड़कों में लगभग 2500 क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके नागरिक सड़क के निर्माण की मरम्मत काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक क्यूआर कोड के जरिए सड़क से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। इस पहल में लोक निर्माण विभाग का लगभग 1400 किलोमीटर का दायरा शामिल है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज त्यागराज स्टेडियम में पुनर्स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली का निरीक्षण किया और शहर में चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में 1000 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों के पुनर्स्थापन और 500 नई वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 400 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों का पुनर्स्थापन पूरा किया जा चुका है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज भलसवा स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आवास परियोजना का निरीक्षण कर मरम्मत और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री सूद ने कमरों के आकार, नई फ्लोरिंग और अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस परियोजना में 7400 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का वादा और गारंटी है उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये आवास योजना के साइज को बड़ा किया गया है, उसी को मैच करने के लिए पुराने बने मकानों में ऑल्टरेशन करने के बारे में हमने चर्चा की। हम प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी थे, उनका सपना दिल्ली के गरीबों को सम्मानजनक आवास देने का था, अवश्य बड़ा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन

0: aar.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें दिल्ली, हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद सहित अन्य स्थान शामिल हैं।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। जांच के दौरान एक मजबूत वित्त नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भारी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसे कई बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच से ये भी पता चला है कि नकद निकासी और कई छोटी छोटी धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से संदिग्ध लाभार्थियों को धनराशि भेजी गई। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्ग वाली 110 कार्टन अवैध शराब और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजौरी गार्डन में अवैध शराब की तस्करी में शामिल था। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के अपने 3 निर्वाचित पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें निर्मला देवी शर्मा, कृष्णा देवी राघव और सुल्ताना आबाद शामिल हैं। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्य योजना को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी में भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में शामिल हुए। त्यागराज नगर में रथ यात्रा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। उपराज्यपाल ने हौसखास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 48वीं वार्षिक रथ यात्रा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में 21वीं वार्षिक रथ यात्रा में भाग लिया। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी रही और मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त

0: कुपोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रख रखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे एक विशेष रेडियो रिपोर्ट। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पूरे शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपने कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरे आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथयात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नवयौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुरा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रंग कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

रीति के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाइया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में स्वर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की

0: पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेड़ा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रजुओं को समुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडिचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथ पुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म गीत मालिका का और आशय कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:40 होने को है। सुनते हैं कार्यक्रम का।

अगला और आखिरी गीत, और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
4: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉ सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
5: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलितपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
6: जगबंधु हे गोसाई, पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
2: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रूपए पर बंद हुआ।
2: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। अब हमारी आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। पेश है इस मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। आज की नशरियात का आगाज प्रोग्राम एक फनकार से होगा। आज के इस पेशकश में मकबूल गजल गायक भूपेंद्र की चंद मुखातिब मुंतखब गैर फिल्मी गजलें समाप्त कराई जाएंगी। उनकी आवाज का नर्म लहजा और गजलों का हुस्न यकीनन आपको पसंद आएगा। इसके बाद 9:45 बजे खबरें नशर होंगी, जिनमें मुल्क और दुनिया की अहम व ताजा सूरत हाल आपसे बाखबर किया जाएगा। खबरों के फौरन बाद प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के मद्देनजर कुछ बातें होंगी सेहत के हवाले से। साढ़े 10 बजे तामिल इरशाद में आपके ईमेल्स की बुनियाद पर आपकी पसंद की फिल्मी नगमे पेश किए जाएंगे। 11:30 बजे बरसगीर से खबरें नशर होंगी, जहां हम साया मुल्क की अहम खबरों से आपको आगाह किया जाएगा। इसके बाद तामिल इरशाद का सिलसिला दोबारा शुरू होगा और आपकी फरमाइशों का सफर आगे बढ़ेगा। 11:30 बजे सुर्खियों में प्रोग्राम में दिन भर की अहम वाकयात और सुर्खियों का मुख्तसर जायजा पेश किया जाएगा। 12:30 बजे बज़्म मौसिकी में मशहूर शास्त्रीय गायिका विदुषी प्रभा आत्रे की आवाज में तलाक देसी पर मबनी ख्याल और तराना पेश किया जाएगा। शास्त्रीय मौसिकी के शौकीन सामीन के लिए खास पेशकश होगी। 12:00 बजे आलमी खबरें नशर होंगी, उसके बाद क्लासिकल साजीने का प्रोग्राम में ब्रह्म स्वरूप सिंह विचित्र वीणा पर राग चंद्रकौस पेश करेंगे। 12:30 बजे आखिरी शब में पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का एक दिलकशन इंतखाब आपकी समाप्त किया जाएगा। 12:50 बजे पर एक बार फिर खबर नशर होगी। ये थी आज की तीसरी मजलिस की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। आज की इस नशिस्त में हम समाप्त कराएंगे मकबूल फनकार भूपेंद्र की गैर फिल्मी गजलों का सिलसिला। अपने नर्म और शाइस्ता गायकी और पुरअसर अंदाज के लिए मशहूर भूपेंद्र ने गजल गायकी को एक अलग पहचान बख्शी है। उम्मीद है उनकी आवाज और इंतखाबे गजल आपको पसंद आएगा। समाप्त फरमाइए प्रोग्राम एक फनकार।

एक फनकार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अभी आपने गजल सुनी भुपेंद्र की आवाज में, कलाम था नक्श लायलपुरी का। अभी की आवाज में सुनिए कासिम कुरैशी का कलाम।

0: एक फनकार प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे हैं भोपालर की कई कुछ गजलें। मेरा सुनिए सरदार अंजुम का लिखा कलाम भोपालर की आवाज में।
1: बिलाखिर भूपेंद्र जो मशहूर प्लेबैक सिंगर भी थे और कंपोजर भी, गजल के सफर में शामिल हुए।

0: इसके साथ ही अब एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। भारत ने समाजी तहफ्फुज़ के फ्रेमवर्क के तहत एक

एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते, जबकि तीन मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे हासिल किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में कार्डिफ में दूसरे एक रोजा बैन अक्वामी मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावज कर गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज की कवरेज जो 2015 में 19% थी, 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी समाजी तहफ्फुज के दायरे कार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियरिंग की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले ही से कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, तहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे जहां वो 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वजीर आजम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत आज सिरे 9 तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स आवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाव अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में खासतौर पर ईएल नैनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया। वजीर मसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन आईसीएआर 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी जिसमें नौजवान साइंसदान मसनू जहानत, एआई, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबला करेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी जो पायदार, जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाले नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़र तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएआर ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं जिनमें 94% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मज़ाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर नफाज को यकीनी बनाया जा सके।
डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट

0: अरे भाई पुदीने की बात हो रही है, बड़ा खुशबूदार, इसको साग कहेंगे या फिर पत्तियां कहेंगे या सब्जी कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन ये हमारे खाने को न सिर्फ लजीज बनाता है, जायका देता है, बल्कि इसकी और भी कुछ फायदियत है। पुदीना गर्मी के मौसम का खास एक तोहफा कह सकते हैं, एक खुशबूदार सब्जी इसे हम कह सकते हैं। ये मौसम सर्मा में पैदा होती है, यानी जब सर्दी जा रही होती है तभी पैदा होने लगती है, और गर्मी आते आते ये बाजारों में आसानी दस्तियाब हो जाती है, और इसकी चटनी का तो जवाब ही नहीं है, मुंह में पानी आ गया। पुदीने की चटनी लाल मिर्च के साथ, थोड़ी सी उसमें खटाई मिलाइए या थोड़ी सी इमली उसमें मिलाइए, क्या जबरदस्त जायकेदार चटनी तैयार हो जाती है। बड़े सगीर में सदियों से इसका चलन है, और ये सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, पुदीना अलग से चटनी के अलावा, मतलब जब आप सलाद काटती हैं तो उसमें पुदीने के पत्ते भी आप उसको सजाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसे बूटी भी कहा जाता है। और ये भी बताएं आपको कि पुदीने की कई किस्में हैं, ये खानों को खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ खुशबूदार या जायकेदार बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जो इसके अज्जा हैं उसमें कई विटामिन पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, और वो सभी कुछ इसमें मिल जाता है जो ऐसे मसालों में होना चाहिए जिनको हम सिर्फ उनके जायके के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपनी सेहत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और पुदीना काफी ताकतवर होता है मैदे के लिए, और काफी हमें फायदा फराहम करता है, और इसके अलावा पेट के लिए काफी फायदेमंद है, पेट के कीड़े मर जाते हैं अगर हम इसका बाकायदा रोज इस्तेमाल करें तो। अगर जिगर की कमजोरी है यानी लीवर कमजोर है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मैदे के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, पेट के दर्द में ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। और जब हम अगर अपने खानों में इसका बाकायदा इस्तेमाल करें तो बदहजमी वाली जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये इंतहाई हाजिम है और खाने को हजम होने में भी मदद करता है, दर्द में परेशानी से निजात दिलाता है। इसके अलावा कई तरह के कुछ मौसमी बुखार भी होते हैं, जैसे मौसम बदलता है तो उसके साथ कुछ वबाएं भी आ जाती हैं, तो इस तरह की जो वबाई बीमारियां होती हैं ये उनका गोया तरियाक है, और ये चूरन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है मौसम में, बरसात में कुछ चीजें इसमें मिलाकर कुछ तरह के चूरन भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे काली मिर्च और या पुदीना मिला के खा लिया, और जीरा या पुदीना इसको बराबर कूट लिया और उसको थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल के चूरन के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। और कुछ और भी इसकी खसूसियात हैं, जैसे अक्सर बरसात के मौसम में छोटे छोटे जहरीले जानवर पैदा हो जाते हैं, अगर उसने किसी इस तरह के जानवर ने डंक मार दिया तो पुदीना काटकर उसका लेप बना लीजिए और उस जगह पर लगाइए, तो ये जहर के असर को खत्म कर देता है। अगर उल्टी होने लगती है कई बार बरसात के और गर्मियों के मौसम में, तो पुदीना जो है वो उल्टियों को रोकता है, बलगम को खत्म करता है, हैजा खुदा नखास्ता अगर हो रहा है तो वहां पर भी ये काफी फायदेमंद होता है। नाक और कान में पुदीने का रस टपकाने से नाक और कान के कीड़े मर जाते हैं, इसे उबालकर इसका पानी भी काफी फायदेमंद हो जाता है। और बस आंतों के लिए अलबत्ता ये थोड़ा सा मुजिर है, इसलिए वो लोग जो आंतों की किसी बीमारी में मुबतला हैं वो पुदीना किसी भी तरीके से खाने से बचें, एहतियात करें, और ना ही इसको सलाद के तौर पर ना ही चटनी के तौर पर किसी भी तरह वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको आंतों की परेशानी है। तो ये थी बातें पुदीने के हवाले से जो बाजार में दस्तियाब है। अच्छा, दो तरह के पुदीने, जैसे हमने कहा कि कई तरह की अकसाम है, तो देसी पुदीना जो होता है उसमें जबरदस्त खुशबू होती है, इसके अलावा एक अंग्रेजी पुदीना भी है जो तासीर तो रखता है लेकिन खुशबू से नदारद है, तो लोग इसी वजह से शायद देसी पुदीना ज्यादा पसंद फरमाते हैं कि उसकी खुशबू वाकई ज़हनो दिल को तरोताजा कर देती है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम हर्फ सुखन। हर्फ सुखन में हम पेश करते हैं शायर का तारुफ और फिर उनकी एक मुंतखब गजल को गुलकार और गुलकारा की आवाज में। हर्फ सुखन में आज के शायर हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, और आखिर में डॉक्टर बशीर बद्र। आइए हम पहले बात करते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की। दुनियाए शायरी में असदुल्ला खान गालिब का नाम नुमाया हैसियत रखता है।

और आज के दूसरे शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र। गजलगोई की दुनिया में बशीर बद्र एक ऐसा नाम है जिसके अशार 70 की दहाई में मशहूर होना शुरू हो गए थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे और शायरी भी कर रहे थे। आले अहमद सरूर, खुर्शीदुल इस्लाम जैसे उस्तादों से दाद भी ले रहे थे। रिसालों में बाकायदा शाया होने की वजह से अदबी दुनिया से उनका तारुफ एक नए और मुनफरिद शायर की हैसियत से बराबर हो रहा था। उनका शेर उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, खवास के साथ साथ अवाम तक पहुंच चुका था। वो दौर नज्म का दौर कहा जा सकता है। फिल्मी दुनिया में साहिर, शकील और अख्तरुल ईमान, निदा फाजली ने बड़े पाये की नज्में पेश की थीं। ऐसे में बशीर बद्र ने गजल का दामन ही थामाए रखा और ऐसे नए और दौरे हाजिर के मजामीन नर्म और दिलकश लहजे में पेश किए कि बहुत जल्द उन्हें मुशायरों में भी दावत सुहन मिलने लगी। चंद मुशायरों की शिरकत के बाद उनका एतमाद बढ़ा और उसमें उन्होंने थोड़ा सा इंकसारी का रंग शामिल किया और कुछ अदाओं की आमेजिश की और फिर खूब खूब वाह लूटी। पर आने वाले वक्त में वो अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क के एक कामयाब शायर कहे जाने लगे। बशीर बद्र के अशार में सादगी और आम फहमी भी है और साथ में गहराई और फिक्र अंगेजी भी। उनके कलाम का एक हिस्सा है, सादगी देखना हो तो ऐसे बहुत से अशार मिल जाएंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, और फिक्र अंगेजी ऐसी कि अपनी ही आरजू, अपनी ही जस्तजू मुझको मुझसे बहुत दूर करती गई और कुछ लोग मंजिल नशीं हो गए मेरे नक्शे कदम देखते देखते। बशीर बद्र ने गजल की मुरवजा हयात और असालीब को अपने अंदाज से थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, मौजूआत में भी जसारत दिखाई।

मगर गजल के गनाई लहजे में इजाफा ही किया। वसीम बरेलवी ने एक जगह कहा है कि फूलों से महवे गुफ्तगू होने, रंगों से उनकी जुबान से बातें करने, खुशबुओं से उड़ने, चांद से पैंग बढ़ाने और चांदनी से खेल खेलने की चाह में उनकी जमालियाती हिस्स ने वो असलूब पा लिया जो तासुर और तासीर नए बाप वाह करता नजर आता है, मगर साथ साथ दर्दमंदी की जेरी लहर भी चलती रही जो बार बार कारी के एहसास तक दस्तक देती है। बशीर बद ने खुद जदीद गजल के मौजू पर मकाला भी लिखा जिससे उनकी शायरी में और निखार पैदा हुआ और फन के पैमाने में उनकी तासीर के जौहर खुलकर सामने आए। बशीर बद की शायरी में एहसास की नजाकत और नुजरत की ऐसी हसीन मिसालें हैं जिनको सुनकर इंसान देर तक सोचता और मुस्कुराता रहता है। जिस पर हमारी आंख ने मोती गिराए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। कैसा नाजुक एहसास है और कैसी खूबसूरती से बयान कर दिया गया है। जमाने की बदलती कदरें, नया मिजाज और तहजीब व आदाब के नए ढंग देखना हो तो बशीर बद का कलाम पढ़कर देखिए, बहुत लुत्फ आता है। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अंदाज़े बयान और लफ्जों की कारीगरी ऐसी कि कोई लफ्ज वजाहत तलब नहीं, जो पढ़े वो समझ ले, और क्या कहने ऐसे शायर के जो खास और आम के समझ में आ जाए। यही वजह है कि बशीर बद के कलाम को इस दौर के तकरीबन हर गुलूकार ने अपने मुंतखब अंदाज से पेश किया है। समाप्त फरमाइए बशीर बद का कलाम चतुर सेन की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हर्फ़े सुखन, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और वक्त है प्रोग्राम तामिल इरशाद का। ज़मीन ख़त की खदमत में ताहिर हसन का पुरखलूस आदाब।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म ताजमहल से गीत। और ये आप सुनिए आवारा फिल्म से मुकेश गायना गाया हुआ एक गीत, फरमाइश आप सबकी है। पारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, महमूद कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से लिखते हैं। और ये मेल हमारे पास आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार का। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश। पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, सरोजना भगत। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खां, फैजी फरहान। सहसपुर लोहारा जिला कबीर छाम से गुणीराम राजपूत, संतोष हेमा पुरपा, पुष्परा। और पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे और यशराज सिंधे।

बांग्ला इरशाद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगला नगमा है फिल्म अनारकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और लिखा है राजेंद्र किशन ने। पसंद आपके सबकी है। पथरिया से निरन नेताम, कुसुम नेताम, शासीनगर बीट शहर से किशन पाल, आशा पाल, सोनिया विशाल सपकाल, ये मेल आया हमारे को गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया,

सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक घंटाघर चौक खंडवा से, संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत।

अगले शत प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है श्री 420 मन्ना डे और लता मंगेशकर गाया ये खूबसूरत गीत आपकी नजर है पसंद किया है आप सबने। राधावत कॉम्प्लेक्स नईसाड़ा कैंपी से शाहजापुर मनमोहन राजावत मधु राजावत और रशद शित ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी रईस दुल्हा अंसारी हिना साबरी आजल इमाम मोहम्मद हसन इमाम ये लिखते हैं इमाम मंजिल बिशनपुरा गिरडी झारखंड से कोका भिलाई से उत्तम सिंह मोरस अनिल अजीत आयुष इम्तियाज इमाम ताहिरा प्रवीण मोहम्मद आसिफ गिरडी झारखंड से मिलम गांव सौराष्ट्र से अजीत भावसर प्रमिला भावसर उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कमला भानु चंडीगढ़ से सितेश अनेजा बिमल अनेजा प्रोफेसर कुरानी खंडवा से आनंद तनुजा ध्रुवी मुलाड बंबई से

आप सबकी पसंद है अगला ड्रामा जो फिल्म है मुकेश, माफ कीजिएगा मधुमति से, और गाया है मुकेश ने, पसंद आप सबकी है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। भवानीगढ़ सगरू पंजाब से परमिंदर सिंह लखनपाल। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़। आर्य क्लब अकोला से रमेश कट्टनकर, वैशाली, धनंजय। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से सर्वाजी सुतार, माफ कीजिएगा सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार, आनंद सुतार।

कसिया कालरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, गणेश डोंडवारा उत्तर प्रदेश से मनोवर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज शहबाज, उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू निम्मी, जमशेदपुर से ही अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह, राकेश कुमार, पानीपत खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लाडो, मारवरा दरवाजा एटा से नवीद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत, कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नवी पोती, तनुश्री गुप्ता, बलराम गेट काजगंज से असलम सैफी, जैबुल निशाद सैफी, सद्दाम सोनिया और कृष्ण कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू और डब्बू।

ना वहां है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। फरमाइश आप सबकी है, कृष्णा कॉलोनी हाथी से सुभाष योगी, राजू मिकलानी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता भगत, किसु तासु, सुकनहा नेपाल से अरुण कुमार, रेणु देवी, राहुल कुमार, भाटापारा छत्तीसगढ़ से गणुलाल रजक, आर के साहू, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश वर्मा,

0: शाद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अब खबर नशर की जाएंगे बर्रे सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बर्रे सगीर की खबरों के साथ मैं अब्दुल हफीज। भारत में समाजी तहफुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करके एक अहम संग मील तय किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बोन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के एक नए दौर का आगाज होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शिमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बाहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफुज की कवरेज जो 2015 में 19% थी, 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी समाजी तहफुज के दायरेकार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियरिंग की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है। ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो 6600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे, जहां वो 5470 करोड़ रूपये से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की मुआशी तरक्की की रफ्तार को उसत फराहम करना है। वज़ीर आज़म अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत असरनो तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के अवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शियल परवाज का आगाज किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और दमन मध्यो और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मस्कुरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में भी इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमू हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद हुई है। बराह रास्त परत फिजाई रास्ते से दमन में सियाहत, तजारत और सरमायाकारी को नुमाया फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा है। पुरी की रथ यात्रा में आज हुई भगदड़ में एक अकीदतमंद की मौत हो गई जबकि कई जख्मी हो गए। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की रस्म के दौरान अकीदतमंदों की गैर मुतवक्क भीड़ जमा हो गई। हंगामे हालात से निपटने वाली टीमों ने जख्मियों को फौरन निकालकर قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا جہاں ان کا علاج جاری ہے. زیر انتظامیہ، پولیس، آگ بجھانے والے عملے کے افراد اور صحت اہلکاروں نے فوری طور پر بچاؤ کارروائی کی اور بھیڑ پر قابو پانے کے اقدامات کیے تاکہ معمول کے حالات بحال کیے جا سکے. اڑیسہ کے وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے جانی اتلاف پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور سینئر افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ زخمیوں کے لیے بہتر سے بہتر علاج کو یقینی بنائے. اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رتھ یاترا کے موقع پر آج ایک مضمون تحریر کیا ہے. اس مضمون میں انہوں نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کیا جب وہ مہا پرب کے بھجن گا کر خوشی محسوس کرتی تھیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ مہا پربھو کائنات کے محافظ ہیں اور بے سہارا لوگوں کے نجات دہندہ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مہا پربھو پوری دنیا کے لوگوں کے دکھوں کا ہمیشہ مداوا کرتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی جیسے چیلنجز کے باوجود بھارت نے اس سال 376 ملین ٹن غذائی اجناس اور 377 ملین ٹن باغبانی فصلوں کی پیداوار کا ریکارڈ قائم کیا ہے. امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے. امریکی فوجوں نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا. ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی. امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے جواب میں ایران نے میزائل

अभी आपने सुना पैसा फिल्म से ये गीत जिसे गाया था रफी ने, लिखा था साहिर ने और मुसकार थे एसजी बर्मन। उसे फरमाइश की थी यावत माला लिंद से अनिल उषा बुरादे अमुश्री फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब बिहारी बाबू मुताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख शायर शेख वजीर सुहेल शेख कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुखनानुद्दीन मंथाल शब्बीर आसिफ इकबाल और बागपत से इलियास मुस्कान खुशी रानी कुरैशी और बाबा जैद। अगला जो नगमा है वो है किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म आराधना से और फरमाइश आप सबकी है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त ज्योति रानी गुरमत कौर रमेश कुमार यादव माया यादव कोमल यादव ये लिखते हैं सिमरा सेजी से। गायत्री नगर यादवतमाल महाराज लक्ष्मण राव लोखंड से

रम्मा है फिल्म काटी पतंग से। मुकेश का गाया हुआ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और मौसिकार थे हैं आंगड़ी बर्मन। पसंद आप सबकी है। आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, निवान शर्मा। मुजफ्फरपुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत, लाडा टुक टुक। और बागपत से इलियास, साहू शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, श्याम किटे, वंदना किटे, भावेगा किटे, ये लिखते हैं रहाड़ गांव कैंप अमरावती से। बुरापारा चौक वेस्ट बंगाल से मुनि जयप्रकाश, वसंतलाल, अभय कुमार। सलाबाद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बटाना। रामरतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर। बंडा सागर से हरवंत सिंह राठौर, कुलदीप सिंह राठौर, जसवंत सिंह राठौर। और ये हैं कापासहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आना नसरीन, आसमा नूर, आयशा अखलाक अहमद।

प्रोग्राम के आखिर में सुनिए फिल्म मेरे सनम से मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत, जिसे पसंद किया है कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज।

Karı. गोपाल राजस्थान से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप सिंह, भरत भूषण, मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन, शहनाज शहनाज यानी कि और नवेद हसन।

0: इसके साथ ही दिलशाद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मुझे पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। अशोक जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल सेमिकॉन 2.0 से जुड़े फैसले के बारे में क्या कहा।
2: सेमिकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत

0: एक बड़ा फैक्टर बनके उभरा है।
1: अशोक जी, अभी हमने केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव को सुना, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मेमोरी चिप की कमी से जूझ रही है, तो भारत की इस अहम सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सेमिकॉन 2.0 की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, मैं कहूंगा बहुत जरूरी मुद्दा है भारत के लिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में अप एंड डाउन जिस लेवल पे है होते रहता है। ये इंडस्ट्री करीबन 60-70 ईयर से चल रही है। ये जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर का, इसको कहते हैं कि लॉन्ग गेस्टेशन, मतलब लॉन्ग हॉल। इसको चिप की इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं, और वो फैक्ट्री बनने के बाद में ये 20-25-40 साल तक चलते रहती है। तो ये जो कमी असर है चिप का, मेमोरी और जीपीयू वगैरह, उसको बाजू में अगर हम रखे तो हर जगह, जैसे मोबाइल फोन, कार, टीवी, इक्विपमेंट, अस्पताल, मेडिकल, डिफेंस, सब में इस चिप की जरूरत है। और आज हम भारत में इस जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 95% से ज्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब विदेशों से हम मंगाते हैं। और अभी जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम फेज 2 जिसे बोला जाएगा, कल लॉन्च हुआ है। ये हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी थी भारत सरकार की, सेमिकॉन फेज 1 और सेमिकॉन 1.0, उसका एक्सटेंशन माना जाएगा। और इस फेज में अभी फेज 1 का फाउंडेशन लेकर के तेजी से आगे बढ़ने का उद्देश्य है, जिससे हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात है, लेकिन चिप बनाने के लिए, निर्माण के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। और इसी दिशा में यह नई पॉलिसी लॉन्च की गई है। हम देख रहे हैं कि इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एड होगी जिसे हम कहते हैं। देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर, तो हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा। और इसी दिशा में इसी साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि हम इसमें आत्मनिर्भर बने।
1: सेमिकॉन 2.0 की जो कल, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जो कल घोषणा की गई है, इसके मुख्य बिंदु क्या है?
2: फेज 1 में हमारा $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था कंट्री में, प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली थी। अब फेज 2 में इसे आगे लेना है, जिसमें पूरा इकोसिस्टम करना है। इसका मुख्य मतलब पूरा इकोसिस्टम रेडी करना है। और दूसरा है पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो मैं कहता हूं कि अगर हम इसको थोड़ा इंग्लिश अल्फाज में बात करूं, तो फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है, और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा, उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, और वो करने के लिए हमें जो गवर्नमेंट का पॉलिसी कंटिन्यूटी है, कमिटमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 3C और 4C बन गए। और इस पॉलिसी में पूरा इंटरवेंट इकोसिस्टम बनेगा, मतलब जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATM भी कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें, और साथ में भी एक मशीनरी जो मुद्दा है, मशीनरी और मटेरियल्स, मशीन्स और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है, जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस पॉलिसी से जो आउटकम होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, डिजाइन हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए, उसका हमें जोड़ना चाहिए। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी है PM। मैं ये कहूंगा कि हमारी जो पॉलिसी है, इसके साथ में हमको इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी देखना होगा एज ए होलिस्टिक व्यू, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ECMS, मैन्युफैक्चरिंग EMC, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना है इंडिया में, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमें वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। तो हमारे जितना भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को फीड करेगा, और इंडिया में वैल्यू एडिशन होगा। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है हमारा सेमिकॉन 2.0 का।
1: और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलिए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन 2.0 के 6 मुख्य स्तंभों के बारे में क्या कहा।
3: सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी IP भारत में रहेगी, और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था ही सेमिकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। कमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब, उनके लिए भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा इसमें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती है उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250

0: ज्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं और 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है और करीब करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन भारत में आए वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: आपने भी बात की कि जो ये मिशन सेमीकॉन 2.2 है, इसका एक बहुत अहम, इसका जो एक पर्याय स्तंभ कह सकते हैं वो है मशीन और मटेरियल से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो मिनरल्स और जो गैस समेत जो कच्चे माल की मैन्युफैक्चरिंग और जो R&D है, जो कंपनियां में शामिल होंगी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसे आप किस तरह देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि उन कंपनियों को जो कि कच्चे माल के मैन्युफैक्चरिंग में और R&D में जो शामिल होंगी उनको इंसेंटिवाइज करना आप कितना अहम मानते हैं?
2: मैं कहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहले तो अगर हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस सेमीकंडक्टर क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा। इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडस्ट्री अच्छी है, थ्रेडिंग जैसे मटेरियल्स हम बनाते हैं, लेकिन वो सब सेमीकंडक्टर ग्रेड में आज नहीं है। और वो करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, कुछ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी और वो टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार करना पड़ेगा। और इसीलिए इस बार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईडी, मतलब भारत सरकार ने ये एक बेनिफिट दिया है, जिससे कि जो इंडिया के बहुत सारे कॉरपोरेट जो आज केमिकल्स गैसेस मटेरियल बना रहे वो अपने प्रोसेस अपग्रेड करेंगे और सेमीकंडक्टर गेट प्योरिटी जिसे हम बोलते हैं 99.9999%, मतलब 6.9 और 7.9% तक लाना है, वो इसको कर पाएंगे। और ग्लोबल कुछ लोग जो कंपनीज है उनको भी इंडिया में हम इस तरीके से ला सकते हैं।
1: आपने क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक सहयोग की बात की, तो ISM के जो दूसरा चरण है उसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट विदेशी सहयोग पर भी फोकस करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को, जो विदेशी मैन्युफैक्चरर हैं उनको भारत में अपने यूनिट्स लगाने के लिए आकर्षित करना और यहाँ कुछ सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाने की कोशिशें शामिल हैं। तो ये जो हम ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर हैं, जो निर्माणकर्ता हैं और जो सप्लायर हैं, इनको भारत में लाने के लिए कोई खास इंसेंटिव देंगे और ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर ISM 2.0 को किस तरह की प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है?
2: मैकेनिकल डिजाइन में हम काफी आगे हैं, क्योंकि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दो पार्ट्स है, दो पहलू है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। तो डिजाइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास में हुआ जो टैलेंटेड पूल है ये विश्व का 20% टैलेंटेड पूल इंडिया में है, डिजाइन हो गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम काफी पीछे है, क्योंकि हमने ये किया नहीं पहले काम। इसलिए अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग नहीं है तो नहीं है, उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्थिर नीतियां है, मतलब स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन टैलेंट और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमीकॉन फेज वन में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। एक कंपनी है जैसे माइक्रोन, उन्होंने तो खुद का प्लांट लगा दिया। टाटा ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया ताइवान कंपनी से। इस तरीके से वो आगे बढ़ा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम इंटरनेशनल कंपनीज को प्रोत्साहित करें और वो काम इससे होगा। और जो ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, ये पॉलिसी सेम है, अगर ग्लोबल लोग आते हैं उनके लिए भी सेम बेनिफिट दिया जाएगा। ये जो कैपेक्स का बोला है सब्सिडी 20% 40% जो भी है वो उन्हें भी मिलेगा, और इंडियन कॉर्पोरेट अगर ज्वाइंट वेंचर करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं, उन्हें भी ये मिलेगा। तो ये इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक मुद्दा इसमें, एक हम इवेंट करते हैं सेमीकॉन इंडिया, जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, 17-19 सितंबर को दिल्ली में होगा। इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमीकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएगी, अपने प्रोडक्ट सॉल्यूशन करेंगे, वो डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है सेमीकॉन इंडिया, इसके तहत भी हम प्रमोशन करते हैं इन पॉलिसीज का।
1: आपने बात की स्किल्ड वर्कफोर्स की, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो डिजाइन है उसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स का होना बहुत जरूरी है। टैलेंट डेवलपमेंट के लिए सेमीकॉन 2.0 में किस तरह के प्रावधान हैं? क्या कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमारे संस्थान है उनसे टाइप किया जाएगा, किस तरह के इसमें प्रावधान है?
2: देखिए, भारत की तो सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास टैलेंटेड पूल है। मैं भी जस्ट जिक्र किया था कि हमारे पास 20% डिजाइन इंजीनियर है। इस

0: पॉलिसी में एक पिलर है हमारा टैलेंट डेवलपमेंट का, इस पॉलिसी में जो सरकार ने अनाउंस किया है, तो इसके साथ में इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब उद्योग और शिक्षण संस्थाओं में सहयोग किया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग बनाई जाएगी और आधुनिक प्रयोगशालाओं को बनाया जाएगा जिसमें कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक प्रोग्राम चल रहा था जैसे C2S टू सिलिकॉन, इसके तहत ऑलरेडी 350 से ज्यादा इंस्टीट्यूट को इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट टूल्स का लाइसेंस दिया गया है, वो भी चिप बना रहे हैं और हमारे कुछ स्टूडेंट चिप बना के अगले चरण में वो चिप का मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ किया जाएगा। तो इस तरीके से टैलेंट डेवलपमेंट किया जाएगा और जो इंडस्ट्री बॉडीज है जैसे सेमी और IESA इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इनके भी टैलेंट डेवलपमेंट के उसके बोलते वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लगे हुए हैं। NIELIT NELET जो कि MITI का एक आर्म है और हमारा जो AICTE है, ये सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं जिसमें कोर्स करिकुलम अपग्रेड हो गए और लैब बनाए जाएंगे, प्रयोगशाला जिसे कहते हैं, और उसमें ट्रेनिंग किया जाए।
1: इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा? दूसरे जो क्षेत्र है विकास में, उन क्षेत्रों में विकास को सपोर्ट करने के लिए इस फैसले का क्या रोल होगा?
0: देखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक सिर्फ सेमीकंडक्टर उद्योग नहीं रहा, इसके साथ में जब सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगती है तो मशीनें लगती है, केमिकल गैसेस है, लॉजिस्टिक्स है, पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज है, ये सब विकसित हो इसके साथ में हो जाते हैं। और जो पॉलिसी भी अनाउंस हुई है इससे हमें लगता है कि करीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर मतलब 4,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कल आदरणीय मंत्री जी ने अपने ब्रीफिंग में ये बताया था और हम भी उसी तरह डायरेक्शन में देख रहे हैं एज ए इंडस्ट्री बॉडी। और जो नए उद्योग लगेंगे तो इसके साथ में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और उसके साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है रूल ऑफ थंब कि फॉर 1 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देयर इज अ 10 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से करीबन 2 से 3 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब उसमें करीबन 20 लाख के करीबन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को इसमें रोजगार का अवसर मिलेगा।
1: जैसे भी हमने बात कर रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से 1.27 लाख करोड़ का जो है एक पैकेज अनाउंस किया है, पर सिलिकॉन 2.0 की सफलता के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना जरूरी है, कितना अहम है?
0: इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम है। सरकार तो एक इनिशियल इनपुट और हेल्प दे रही है जिससे कि ये इंडस्ट्री चल पड़े, तो इसमें मैं कहूंगा सरकार का रोल जो एक कैटलिस्ट है, लेकिन पूरा मेन रोल इसमें प्राइवेट सेक्टर का है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये हमारा एक फाउंडेशन इंडस्ट्री है और इसे हमें विकसित करना होगा, ये एक नेशनल मुद्दा बन गया है ये। तो प्राइवेट सेक्टर को भी उस और देश की सॉवरेनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसी में प्राइवेट सेक्टर का ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कहा जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
1: जी अशोक चांदक जी, आप आकाशवाणी के सुर्खियों कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे सेमीकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मुझे पेश है बज़्म मौसिकी, जिसमें आज आप सुनेंगे विदुषी प्रभा अत्रे का ख्याल राग देसी और तराना में। सलाम फरमाइए।

आप सुन रहे थे क्लासिकल मौसीकी का ये प्रोग्राम जिसमें ब्रह्म स्वरूप सिंह ने विचित्र वीणा पर राग चंद्रकौंस पेश किया। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आखिरी शब, जिसमें पुराने हिंदी फिल्मी नामों का एक खूबसूरत इंतखाब आपकी समात की नजर है।

अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार का गाया फिल्म हाउस नंबर 24, माफ कीजिएगा हाउस नंबर 44 का ये नगमा। और आप सुनिए प्रीत महमूद की आवाज में देवदास फिल्म से ये नगमा।

yapsın, farkı hoş femsi. Kişi var konar gıgaya.

0: साथ ही ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबर नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने समाजी तहफ़ के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करके एक अहम संग मील तय किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अमरीका ने शिमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बाहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के एक नए दौर का आगाज हुआ है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज की कवरेज जो 2015 में 19% थी 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी समाजी तहफ्फुज के दायरेकार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियरिंग की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनरल मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स आवाम, खासतौर पर मुल्क

युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। अमेरिका ने कल ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए। अमेरिकी फौज ने शिमाली इलाकों में भी कई अहदाफ को निशाना बनाया और एक बहरी जहाज पर भी फायरिंग की। अमेरिका ने इस जहाज पर इल्जाम लगाया है कि वो ईरान पर आयद बाहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों को निशाना बनाया और खबरदार किया कि हमलों में मजीद शिद्दत आ सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 35 से जायद अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन बार बार दी जाने वाली धमकियों पर अमल करता है जिनमें ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की बात की गई है तो ईरान खित्ते के अहम बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान अमरीका को अमनए हुरमुज में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देगा। मरकज के जैर इंतजाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर कल नए तामीर शुदा नमू हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शियल परवाज का आगाज किया गया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल पटेल ने मस्कुरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमू हवाई अड्डे के इफ्तताह के बाद हुई है। रास्त फिजाई राबते से दमन में सियाहत तिजारत और सरमायाकारी को नुमाया फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीम में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दहशतगर्दी की मुबैना माली मदद और गैर कानूनी दरअंदाजी के एक मामले में कल मुल्क भर में 13 मकामात पर छापे मारे। ईडी ने मगरबी बंगाल के कोलकाता, शिमाली 24 परगना, जुनूबी 24 परगना, मुर्शिदाबाद, हरियाणा के बल्लभगढ़, उत्तर प्रदेश के देवबंद, दिल्ली और दीगर मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश एटीएस की दर्ज करदा एफआईआर की बुनियाद पर कायम किया गया है जिसमें एक मुनज्जम गिरोह पर इल्जाम है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल कराने, उनके लिए जाली भारतीय शनाख्ती दस्तावेजात तैयार करने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्हें आबाद करने में मुलविस है। ईडी के मुताबिक मगरब बंगाल के कलिकापुर में हरूरा अल जामतुल इस्लामिया दारुलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपये नकद और सोने के सिक्के बरामद किए गए। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में खास तौर पर ईआईमीनो से मुतासरा इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया। वजीर मौसूम ने कहा कि हुकूमत मिशन ICAR 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी जिसमें नौजवान साइंसदान मसनूई जहानत, एआई रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबला करेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी जो पायदार जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल ICAR ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं जिनमें 54% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मज़ाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। उड़ीसा का पवित्र शहर पूरी अकीदत से शरसार है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत के साथ शुरू हो गई है। नामाफिक मौसमी हालात के बावजूद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ग्रैंड रोड पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की आलमी शोहरत याफ्ता रस्म बारिश के बाद दिन भर के लिए मुअत्तल रही। इससे पहले तकरीबात पर उस वक्त असर पड़ा जब मुबैना तौर पर भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई। भारत के रिजर्व बैंक RBI ने मुल्क के मालियाती शुमालियाती इशारे FI इंडेक्स में बेहतरी का इंदराज किया है। इसके मुताबिक यह इशारिया मार्च 2025 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 हो गया है।
یہ متبادل اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک کی سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے۔ کمپوزٹ ایف آئی انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے، جس میں

0: कोई बुनियादी साल नहीं होता, वहीं ये तीन बुनियादी पैमानों पर भारत के मालियाती इकोनॉमिज्म को परखता है। एफआई इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2021 में खत्म होने वाले माली साल के लिए अगस्त 2021 में हुई थी और इसे सालाना बुनियादों पर शाय किया जाता है। ओलंपिक में दो मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु कल टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की पांच नंबर की चीनी खिलाड़ी हां यू को सीधे खेलों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। जकार्ता में कल 19 और 23 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुहिम का इख्तिताम किया। विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम के जुमरे में और गंगा ने 55 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता। 23 साल की उम्र तक के मर्दों के फाइनल में भारत ने सोने के दो तमगे हासिल किए। वंशराज ने फाइनल में 65 किलोग्राम के जुमरे में भरपूर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने समाजी तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करके एक अहम संग मील तय किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अमरीका ने शिमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बाहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि तीन मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे हासिल किए। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इसी के साथ हम आज की हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अपने अख्तिताम को पहुंचती है। कल सुबह 9:30 बजे पहली मजलिस के साथ आप नशरियात के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। शब बख़ैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagach border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel.

0: अगला गीत फिल्म हम दोनों से आपके लिए आ रहा है, और इस गाने को लिखा था साहिर ने, साहिर लुधियानवी। जी हाँ, इस गाने के शब्द इतने आम और गहरे हैं कि ये हर दिल को छू लेते हैं, और जो इस गीत में लाइन है, दिल अभी भरा नहीं, इस लाइन को इन्होंने इतना आम शब्दों में बयां कर दिया कि ये गहरा रोमांटिक रूप इस गीत को मिल गया। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हम दोनों से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

जो अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो कहा जाता है कि इस खूबसूरत गाने के शुरुआती बोल जो हैं, वो गीतकार शैलेंद्र ने एक माचिस की डिब्बी पर लिखे थे। जी हाँ, और साथ ही ये फिल्म फंटोश के लिए गाना लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे देवानंद की काला बाजार फिल्म में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, आप शायद सही अनुमान लगा रहे होंगे कि मैं कौन सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ। खोया खोया चांद, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने।

अगला गीत पुराने हिंदी फिल्मों का जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, फिल्म प्रिंस से, जिसमें शमी कपूर और वैजयंती माला ने काम किया था और इसे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गीत है ये एक पब में लिखा गया था। जी हाँ, गीतकार हसरत जयपुरी जब एक नाइट क्लब में बैठे थे तब एक महिला की चमकती ड्रेस देखकर उनके दिमाग में ये गीत के शब्द आए थे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने हिंदी फिल्मी नगमे ऑफ गोल्डन एरा। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रफी की आवाज है, साथ में सुमन कल्याणपुर और संगीत शंकर जयकिशन का है। और दोस्तों आपको बता दें कि गाने में जो शम्मी कपूर का ताली बजाने वाला अनोखा डांस स्टेप है, उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

गीत आप सुन रहे थे फिल्म ब्रह्मचारी से। अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले वो है 1965 की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुमनाम। जी हाँ, ये बेहद और बेहतरीन रहस्यमय गानों में से एक है। जी हाँ, और आपको बता दें ये फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के प्रसिद्ध उपन्यास एंड देन देयर वर नन पर आधारित थी और ये पहला हिंदी फिल्म गीत था जिसे दशकों बाद 2001 में आई हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड के साउंड ट्रैक में इस्तेमाल किया गया था। आइए सुनवाते हैं लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

आइए अब सुनते हैं 1976 की सुपरहिट फिल्म कभी कभी से ये गीत, जो कि अपनी सदाबहार धुन के लिए खय्याम को उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का। जी हाँ, और आपको बता दें कि इस गीत के दो वर्जन थे, एक जिसे मुकेश ने अकेले गाया था और दूसरा मुकेश और लता मंगेशकर का डुएट। दोनों ही वर्जन फिल्म में अलग अलग मौकों पर बजाए जाते हैं। आइए सुनते हैं ये वर्जन।

बेहद खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसमें कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध है और ये गीत विनोद खन्ना और जीनत अमान पर फिल्माया गया था, फिल्म कुर्बानी से ये गीत। आइए सुनते हैं।

सुनीता भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में इतना खूबसूरत गीत आपके लिए था। अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे आवाज भूपेंद्र सिंह की। और दोस्तों बता दें, ये जो गीत है ये फिल्म एजे क्रोनिन के प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रीन ईयर्स पर आधारित थी ये फिल्म बेसिकली, और इसी फिल्म का ये गीत है जिसका निर्देशन गुलजार साहब ने किया था। और फिल्म मौसम ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब जीता था और शर्मिला टैगोर को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।

अब इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक बेहद भावुक गीत फिल्म मासूम से, जिसे गुलजार साहब ने लिखा है और आरडी बर्मन ने संगीत दिया था। इस सदाबहार गीत में आप आवाज सुनेंगे लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच

0: सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुरम राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said, this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station today, during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in the programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagarh border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF. In the afternoon, he will chair a meeting on border-related issues in West Bengal. Sources added that the Home Minister will also review the implementation of the 3 new criminal laws in the state. Prime Minister Narendra Modi yesterday held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father, Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen this strategic partnership.

0: कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं, और इसी के साथ अब नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार यहीं समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नेट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11,00,000 से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20,00,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव 24x7 चैनल है। रात्रि के 3 बजे हैं, 3:10 हुए हैं। श्रोतो, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलत अजीज द्वारा गाई एक बेहतरीन गजल के साथ।

अभी आपने मिर्जा गालिब की गजल सुनी सोमेश कुमार के स्वर में, आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मासूम से।

आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। श्रोताओं, रात्रि के 4 बज चुके हैं। ये वक्त है कार्यक्रम अर्चना का।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से श्री राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत के अंतर्गत रुद्र वीणा, प्रस्तुति सरस्वती राज गोपालन की है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026, सुबह के 4:54 और ठीक 25 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में बताया जाएगा। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वरंजनी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:30 पर।

हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चिंतन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:40 पर। रामचरितमानस से पाठ बालकांड भाग 119 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे। 7 पुनः आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 का समय संगीती का कार्यक्रम का रहेगा और 7:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित गीतों भरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः के 5 को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी में समाचार।

पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई का कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म न हवे प्रमाण था खसमे का मैल पाए सी कसने पावे सो करे मनो चलिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी।

बलदेवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी के पाते हैं श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पात साही दसवी प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लेते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नाउ सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जैस डिठ सब दुख जाय त्याग बहादुर सिमरिया कर नाम दयावे ताय सब थाई हो सहाय दसवें पात सह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पात साहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारियां सहु साहिब जादियां चालियां।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਫਤਿਹ।